हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की तिथि 19 तदनुसार 10 जुलाई सन 2026 हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा। आज के सभा में आप सभी का स्वागत है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा

0: श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉ जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। और ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया है। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए चिंतन के कुछ पलों को आत्मसात करते हैं, सुनते हैं ये विचार।
3: गुरु का अर्थ होता है अंधकार को दूर करने वाला। अंधकार है मन का अंधकार, अज्ञानता का अंधकार और हृदय का भी अंधकार। सच्चाई जब नहीं दिखाई पड़ती है, विशाल हृदय जब स्वार्थवश संकुचित होकर आत्मा को कैद करता रहता है, तब हम अंधकार में जीते हैं, तभी हम

0: मानव यानी जीवों की सर्वश्रेष्ठ रचना के पद से गिर जाते हैं। इसीलिए तलाश होती है प्रकाश की, रोशनी की। हमारे ऋषियों ने उज्ज्वलता के लिए प्रार्थना की है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। ये ले जाने वाला व्यक्ति कौन है? हाँ, यही है गुरु। गुरु शिक्षा से हमारे जीवन दीप को प्रज्वलित करता है और हम जगमग कर देते हैं जग को। गुरु का एक अर्थ होता है भारी। जो भारी है वही झुककर कुछ दे सकता है। भारी बादल जल की अपार राशि से झुका रहता है और जगत पर सृष्टि वर्षा की बूंदों से नृत्य कर उठती है। गुरु यानी शिक्षक को भी अपने ज्ञान से भारी होना होता है, तभी वो उड़ेल सकता है ज्ञान रोशनी की शुभ्र धारा को। हल्का बादल गर्जन तर्जन करता हुआ व्यर्थ उड़ जाता है। वैसे ही बिना ज्ञान के गुरु गुरु हो ही नहीं पाते। हम वस्तुतः होते क्या हैं, कैसे हैं, क्या होना है हमें, ये हम गुरु के ज्ञान रूपी दर्पण और निर्देशन में ही देख पाते हैं, समझ पाते हैं। गुरु ही हमें जड़ चेतन, शुद्धता विशालता, अंधकार प्रकाश, क्षणभंगुरता अनश्वरता के दर्शन कराता है, हमारे विवेक को जागृत करता है और हम निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, हम समझने लायक होते हैं। बड़ी उहापोह में था अक्खड़ साधु कबीर। उसकी कल्पना उसी को डगमगा रही थी। क्या करे कबीर जब गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए। पर तभी कबीर के गुरु द्वारा प्रकाशित हृदय में उत्तर कौंध गया। अरे कबीर अल्हड़, तू भगवान को क्या जानने लगा? भगवान की महत्ता, शक्ति, भगवान का अस्तित्व, किसी चीज का पता तुझे कहां था पगले? गुरु ने ही तो तुम्हें भगवान के बारे में बताया। और तब कबीर की वाणी निस्सृत हुई, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। गुरु तो ईश्वर से पहले पूजे जाने का अधिकार रखते हैं। गुरु के लिए भी जरूरत बहुत से चीजों की है। महात्मा गांधी ने सच ही कहा था, लंका में बैठा सावधान शिक्षक अपने आचरण से शिष्यों की आत्मा को हिला सकता है। सही शिक्षकों को सावधान होना होगा, ज्ञान प्राप्ति को देने की उदात्त भावना को जगाए रखना होगा। सबसे बड़ा महत्व है गुरु के जीवन और आचरण का। गुरु को अपना आचरण शिक्षा के अनुरूप ढालना होगा, तभी शिक्षा की सार्थकता होगी।
1: श्रोता भी सुन रहे थे आज का चिंतन FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है भक्ति गीतों का हमारा कार्यक्रम वंदना।

प्रातः वंदना के इस अनुपम बेला में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इस संसार में जो चीजें हमें हासिल होती है, संसार का जो सुख है, उसे हम वास्तव में सुख की प्राप्ति नहीं होती है। संसार का वास्तविक सुख समझ में है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बहुत सारी सुविधाएं, लेकिन वो सुखी नहीं है। वास्तव में सुख का संबंध सिर्फ समझ से है। अगर समझ दुरुस्त है तो फकीरी में भी आनंद है, और समझ विपरीत है, उल्टी है, तो सब कुछ हासिल होने के बाद भी इंसान दुखी रहता है।

श्रोताओं, चित्त स्थिर हो, मन सदकार्य में लगा हो, सच्चे कार्य में लगा हो, क्रिएटिव कार्य में लगा हो और बुद्धि सम्यक हो, सकारात्मक हो, सुलटी बुद्धि हो, उल्टी बुद्धि ना हो, फिर इससे जो सुख की प्राप्ति होती है वैसा सुख किसी लोक में प्राप्त नहीं हो सकता है।

कबीर साहब ने बड़ी सुंदर बात कही है, मन का चलता तन चलेता का सर्वस्व जाए। इस संसार में जो मन के अनुसार से चलता है उसका सब कुछ लुट जाता है। इसलिए सदपुरुषों ने, ज्ञानियों ने हमेशा यह बात कही है कि मन के अनुसार नहीं, अपने लक्ष्य और ध्येय के अनुसार होना चलना चाहिए। और लक्ष्य और ध्येय अगर आत्मा की हो तो वो सर्वोत्तम लक्ष्य हैं।

श्रोताओं कहते हैं ना कि मन के ऊपर चित्त है, चित्त के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर अहंकार है और इन सब के ऊपर आत्मा है। इसलिए तो ज्ञानियों और तीर्थंकरों ने हमेशा आत्मा की भजना की बात कही है।

श्रोताओं, बाहर संसार में अगर सारे सुख पड़े हैं और हम मन से अस्थिर हैं तो वो सुख हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कबीर साहब ने तो ये बातें कही हैं, जग में कोई वैरी नहीं जो मन शीतल होए। अगर हमारा अंतःकरण स्थिर है तो फिर हम बाहर के सुख आसानी से ले सकते हैं। हम बाहर के सभी सुख तभी ले सकते हैं जब हमारा अंतःकरण स्थिर हो।

श्रोता, हम सदकार्य में लगे हों, सदग्रंथों का अध्ययन करते हों और सदगुरु की कृपा बरस रही हो, तो फिर भय के लिए जीवन में कोई जगह नहीं है। श्रोताओं, भक्त गीतों के कार्यक्रम में आज बस इतना ही।

0: श्रोता भी सुन रहे थे भक्ति गीतों का हमारा कार्यक्रम वंदना एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं ने पेश है श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी।
1: छब्बीस टू सिक्स

सती ने महादेव से छल तो किया, किंतु उनके समाधि में चले जाने के बाद पश्चाताप की आग में स्वयं जलने लगी। शिव की समाधि का एक एक दिन सती के लिए एक एक युग के समान बीतने लगा। मन में ये सोच कि इस दारुण दुख के अथाह और अनंत सागर को कब पार कर सकेंगी। शंकर के विमुख हो जाने के बाद भी विधाता उन्हें क्यों जिला रहा है। विडंबना यह है कि आत्म

ग्लानी के भेद को किसी पर प्रकट भी नहीं कर सकती। 87,000 वर्ष बीत जाने के बाद शिव की समाधि टूटी। सती ने आकर उनके चरणों में सिर नवाया तो महादेव उन्हें आदर से पास बिठाकर हरि अवतार की कथाएं सुनाने लगे। उन्हीं दिनों सती के पिता दक्ष को ब्रह्मा ने प्रजापतियों का नायक बनाया। ऐसी प्रभुता का पद पाकर अभिमान किसे नहीं होता। दक्ष को भी अभिमान हुआ और उन्होंने एक महायज्ञ करने की ठानी, जिसमें गंधर्व, किन्नर, शेषनाग, सिद्धों सहित सभी देवताओं को निमंत्रित किया।

श्रोता भी सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण आज इसके तहत जानते हैं अपने केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में।

श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर बाद सुबह 7 बजे हम आपको सुनवाएंगे लोक गीतों का हमारा कार्यक्रम लोक रंग। गीत संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे। ये कार्यक्रम होगा सुबह 7:30 पर। काव्य धारा को लेकर हम हाजिर होंगे सुबह 7:20 पर। समाचार प्रभात आप सुन सकेंगे दिल्ली केंद्र से रात्रि 8 बजे और 8:15 पर। मॉर्निंग न्यूज, इसका भी प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा। प्रादेशिक समाचार लेकर हम हाजिर होंगे सुबह 8:30।

मॉर्निंग मेलोडी ये कार्यक्रम होगा सुबह 8:45 पर। सुबह 10 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे हर रोज की तरह आज भी हेलो हजारीबाग। दिन में 11 बजे हम आपको शामिल करेंगे अपने विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों में।

शाम को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें। शाम 5:02 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम इवनिंग मेलोडी। खेती बारी यह कार्यक्रम होगा शाम 5:30 पर। श्रोताओं, आज शुक्रवार और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं महिलाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम अंगना। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 6:02 पर।

मिलेंगे शाम से। श्रोता कार्यक्रम में सुन सकेंगे रात्रि 7:30 पर। शाम को प्रसारित होने वाले फिल्म संगीत के कार्यक्रमों के बारे में भी हम आपको थोड़ी जानकारी दे दें। 6:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत झनकार, ये कार्यक्रम होगा 7:15 पर। और 7:45 पर हम आपको सुनवाएंगे ऑल टाइम हिट्स।

आपकी चाहत फरमाइशी फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम होगा रात्रि 8 बजे। एक फिल्म से ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर, और रजनीगंधा कार्यक्रम को लेकर हम हाजिर होंगे रात्रि 10 बजे, और आज के इस सभा का समापन होगा रात्रि 11:10 पर।

0: कार्यक्रम विवरण श्रोता भी सुन रहे थे अपने केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। 6:55 होने वाले हैं, कुछ ही पलों में हम आपको शामिल करेंगे दिल्ली केंद्र के प्रसारण में, जहां से आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रावोचत् यद् एकविंशति शताब्द्याः भारतम् विकसित भारतम् भवितुम् संकल्पबद्धम् वर्तते। तेनोदीरितम् यत् साम्प्रतम् भारतम् तादृशः देशः यः अधिक विकासे विश्वसिति। विगत द्वादश वर्षेषु स्वस्य तृतीयम् ऑस्ट्रेलिया भ्रमणम् हैट्रिक इति विज्ञापयता तेन प्रतिपादितम् यत् एषः प्रवासः भारत ऑस्ट्रेलिया संबद्धानाम् अपूर्वगमिताम् सूचयति। अत्रावसरे ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज अपि तत्र उपस्थितः आसीत्। तेन तत्रत्यं जनसमूहं वीक्ष्य एषा सहभागिता दृढतरा इत्युक्तम्। अस्मात् पुरा उभयोः देशयोर नेतृभ्यां मेलबर्न नगरे तृतीये भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा शिष्टमंडलस्तरीया द्वीप

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आज के समाज में एक गरीब के बेटी कह रहे है,
2: निर्बल हिया निर्धन हिया, निर्बल हिया निर्धन हिया बेटी गरीब के, निर्बल हिया निर्धन।

0: श्रोता साथियों, अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों का हमारा कार्यक्रम लोक रंग। आज आप सुन रहे थे लाल बिहारी सावर मंटू कुमार दांगी को। FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 7:20 होने वाले हैं। श्रोताओं, बीजेपी से कार्यक्रम काव्य धारा। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं आसिया मुख्तार के कुछ कविताएं।
1: मैं आज अपनी काव्य पाठ की शुरुआत युवाओं को प्रोत्साहित करने वाली कविता से करूंगी, जिसका शीर्षक है अभी शोर पूरे जमाने में करना है, जो इस तरह है। अभी शोर पूरे जमाने में करना है, यूं ही चटक जाने से क्या होगा। अभी शोर पूरे जमाने में करना है, यूं ही चटक जाने से क्या होगा। अभी रास्ता कई को दिखाना है, यूं ही भटक जाने से क्या होगा। अभी रास्ता कई को दिखाना है, यूं ही भटक जाने से क्या होगा। के जिंदगी जंग है, के जिंदगी जंग है, लड़ो मेरे दोस्त। एक जिंदगी खड़ी वहां भी है इम्तिहान के लिए, एक जिंदगी खड़ी वहां भी है इम्तिहान के लिए। यहां से भाग जाने से क्या होगा, यहां से भाग जाने से क्या होगा। मेरी अगली कविता का शीर्षक है कितना अच्छा होता, जो प्रूसों के पीड़ा को व्यक्त करती है, आपके समक्ष है। कितना अच्छा होता दर्द को बराबर समझा जाता, कितना अच्छा होता दर्द को बराबर समझा जाता। एक औरत के जरिए मर्द को लिखा जाता, एक औरत के जरिए मर्द को लिखा जाता। जो पोछते हैं हमारे आंसू, जो पोछते हैं हमारे आंसू, उनके आंसुओं को बिन छलके देखा जाता। एक औरत के जरिए मर्द को लिखा जाता, एक औरत के जरिए मर्द को लिखा जाता। सपने हमारे ही नहीं उनके भी छूटते हैं, सपने हमारे ही नहीं उनके भी छूटते हैं। कच्ची उम्र में जिम्मेदारियों से

पर उनके भी टूटते हैं। कच्ची उम्र में जिम्मेदारियों से पर उनके भी टूटते हैं। कितना अच्छा होता नरम दिल उनका भी देखा जाता, कितना अच्छा होता नरम दिल उनका भी देखा जाता। एक औरत के ज़रिए मर्द को लिखा जाता, एक औरत के ज़रिए मर्द को लिखा जाता। बाप भाई शौहर दोस्त बनकर हम पे बहुत लाड लुटाते हैं, बाप भाई शौहर दोस्त बनकर हम पे बहुत लाड लुटाते हैं। इज्जत पे हमारी आँच आए तो खुद को टूटा पाते हैं, इज्जत पे हमारी आँच आए तो खुद को टूटा पाते हैं। समझने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, हर मर्द नहीं हवस का भरा होता। कितना अच्छा होता उन्हें भी इज्जत से देखा जाता, कितना अच्छा होता उन्हें भी इज्जत से देखा जाता। एक औरत के ज़रिए मर्द को लिखा जाता, एक औरत के ज़रिए मर्द को लिखा जाता। काश पुरुष दिवस पे शहरों में इश्तिहार लगवाते, काश पुरुष दिवस पे शहरों में इश्तिहार लगवाते। सरकारों से कह के नई हिकमत निकलवाते, सरकारों से कह के नई हिकमत निकलवाते। वो जो कमा के खुद पे खर्च ना है कर पाता, वो जो कमा के खुद पे खर्च ना है कर पाता। कितना अच्छा होता उनकी ज़रूरतों को भी समझा जाता, एक औरत के ज़रिए मर्द को लिखा जाता, एक औरत के ज़रिए मर्द को लिखा जाता। वो जो माँ बीवी दोनों के बीच पिसता है, वो जो माँ बीवी दोनों के बीच पिसता है। कभी माँ का पट्टा कभी बीवी का गुलाम कहलाता है, कभी माँ का पट्टा कभी बीवी का गुलाम कहलाता है। हुई चिकचिक से जिंदगी खराब उसकी है, हुई चिकचिक से जिंदगी खराब उसकी है। कितना अच्छा होता उसके भी सुकून का ख्याल रखा जाता, कितना अच्छा होता उसके भी सुकून का ख्याल रखा जाता। एक औरत के ज़रिए मर्द को लिखा जाता, एक औरत के ज़रिए मर्द को लिखा जाता। मेरी अगली कविता का शीर्षक है आओ अपने शिक्षक को याद करें। ये कविता सारे शिक्षकों को समर्पित है जो इस प्रकार है। बहुत हुई धर्म राजनीति नेता अभिनेता बस अब चुपचाप करें, बहुत हुई धर्म राजनीति नेता अभिनेता बस अब चुपचाप करें। जिनको भूले हैं अब तक अब उनकी बात करें, जिनको भूले हैं अब तक अब उनकी बात करें। आओ अपने शिक्षक को याद करें, आओ अपने शिक्षक को याद करें। जिन्होंने सिखाया काखा गाघा एबीसी, जिन्होंने सिखाया काखा गाघा एबीसी। चुटकियों में समझाया विज्ञान गणित को बनाया आसान सी, चुटकियों में समझाया विज्ञान गणित को बनाया आसान सी। जिनको भूले हैं अब तक अब उनकी बात करें, जिनको भूले हैं अब तक अब उनकी बात करें। आओ अपने शिक्षक को याद करें, आओ अपने शिक्षक को याद करें। स्कूल बचपन की बातें हम सब करते, स्कूल बचपन की बातें हम सब करते। कोई ना बात करता पहले शिक्षक की, स्कूल बचपन की बातें हम सब करते। कोई ना बात करता पहले शिक्षक की। तराश कर जिसने हमें दिया एक चमक अलग सी, तराश कर जिसने हमें दिया एक चमक अलग सी। जिनको भूले हैं अब तक अब उनकी बात करें, जिनको भूले हैं अब तक अब उनकी बात करें। आओ अपने शिक्षक को याद करें, आओ अपने शिक्षक को याद करें। वो सर जो खुद की टोपी चश्मा हमें पहनाते थे, वो सर जो खुद की टोपी चश्मा हमें पहनाते थे। कल बनोगे तुम भी सर मैडम पूरी कक्षा को बतलाते थे, कल बनोगे तुम भी सर मैडम पूरी कक्षा को बतलाते थे। वो मैडम भी याद होंगी जो बिस्कुट बांटा करती थी, वो मैडम भी याद होंगी जो बिस्कुट बांटा करती थी। शरारतों पे

0: प्यार से डांटा करती थी, शरारतों पे प्यार से डांटा करती थी। जिनको भूले हैं अब तक उनकी बात करें, जिनको भूले हैं अब तक अब उनकी बात करें। आओ अपने शिक्षक को याद करें, आओ अपने शिक्षक को याद करें। कुछ सर मैडम तो ईद दिवाली में घर भी आया करते थे, कुछ सर मैडम तो ईद दिवाली में घर भी आया करते थे। कभी करते जमकर पिटाई, कभी खूब हंसाया करते थे, कभी करते जमकर पिटाई, कभी खूब हंसाया करते थे। हाँ हमें भी मिलती थी चॉकलेट, हाँ हमें भी मिलती थी चॉकलेट, ऐसे हम रिश्ते निभाया करते थे। हाँ हमें भी मिलती थी चॉकलेट, ऐसे हम रिश्ते निभाया करते थे। जिनको भूले हैं अब तक अब उनकी बात करें, जिनको भूले हैं अब तक अब उनकी बात करें। आओ अपने शिक्षक को याद करें, आओ अपने शिक्षक को याद करें। कुछ सर मैडम थोड़े डराते थे, कुछ सर मैडम थोड़े डराते थे। जिनको बाजारों में देख हम भीड़ में छुप जाते थे, कुछ सर मैडम थोड़े डराते थे। जिनको बाजारों में देख हम भीड़ में छुप जाते थे। कोई पढ़ाते थे, कोई हर बात पे क्लास लगाते थे, कोई पढ़ाते थे, कोई हर बात पे क्लास लगाते थे। कुछ सिखा के सीख दिए, कुछ बिना सिखाए भी अनमोल सबक दिए, कुछ सिखा के सीख दिए, कुछ बिना सिखाए भी अनमोल सबक दिए। जिनको भूले हैं अब तक अब उनकी बात करें, जिनको भूले हैं अब तक अब उनकी बात करें। आओ अपने शिक्षक को याद करें, आओ अपने शिक्षक को याद करें। 1 मिनट तक गुड मॉर्निंग गाने वाले जीएम भी मैसेज ना कर पाते हैं, 1 मिनट तक गुड मॉर्निंग गाने वाले जीएम भी मैसेज ना कर पाते हैं।
1: श्रोता भी सुन रहे थे आशिया मुख्तार की कविताएं। इसी के साथ ही काव्य धारा का आज का हमारा ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 7:30 हुए हैं। श्रोताओं के लिए पेश है कार्यक्रम गीत संगीत।

0: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
1: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

श्रोता साथियों, इसी खूबसूरत सी गजल के साथ ही गीत संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे आशा भोसले, पंकज उदास, गुलाम अली और साथियों को FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं। आइए अब हम आपको शामिल करते हैं अपने दिल्ली केंद्र के प्रसारण में, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज। इसके तुरंत बाद 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। तो समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य

0: परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केंद्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट।
2: यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहां बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का शत प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी शंकाओं को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
5: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना UCC कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
3: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिगबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सईद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के हमलों में आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
6: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का

0: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट, सफल लॉन्चिंग। अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। आसमान बरसा, एनसीआर थमा, तीन साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: their early exit from the T20 World Cup, providing the team with valuable preparation time. This will be the 16th test meeting between England and India women. England have won only once, while India have 3 victories, while the remaining 11 matches ended in draws. The last test between the two sides in England in June 2021 ended in a draw. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Shagun.
1: Thank you, Sunil. Prime Minister Narendra Modi's three-nation tour is the top headline in most dailies. India secures landmark uranium deal with Australia, headlines in the Star Times. Three antiquities from Tamil Nadu dating back to 11th and 12th centuries are to finally come home with Australia, writes the Indian Express. Pakistan-occupied Kashmir is on the boil, with the Joint Awami Action Committee pledging to avenge Pakistani atrocities, reports the Asian Age. India Meteorological Department is extensively quoted in dailies on the latest news on monsoon. Monsoon has covered the entire country a day later than normal, announces IMD, is the headline in the Hindu. Deficit falls to 14%, writes the Times of India. And finally, the Pioneer reports that India may soon get a common police uniform after 77 years. And with that, it's back to you, Sunil.
0: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Australia agree to operationalize their civil nuclear cooperation agreement, paving the way for uranium exports to India. Prime Minister Narendra Modi to arrive in Auckland today on a 2-day visit to New Zealand. Home Minister Amit Shah says, secure border, prosperous border region and vigilant society together can make the country secure. Maharashtra government formed 7-member committee to draft uniform civil code for the state. Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei buried in Mashhad 4 months after US-Israeli strikes killed him. France stormed into semi-finals of FIFA World Cup after defeating Morocco 2-0. And in men's cricket, England beat India by 9 wickets in 4th T20 International to take 3-0 lead in 5-match series. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंट्स में झारखंड सरकार ने किए 14 महत्वपूर्ण एमओयू। राज्य में आएगा करीब 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश। केंद्र सरकार की जीरो कोल लीकेज पहल के तहत सीआईएसएफ ने झारखंड और बंगाल में चलाया विशेष अभियान। 428 मीट्रिक टन अवैध कोयला जब्त। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ मेला की तैयारियों का लिया जायजा। सुरक्षा व्यवस्था के दिए कड़े निर्देश। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्वाति शर्मा ने गुमला जिले का किया दौरा। मनरेगा और आवास योजनाओं की जमीनी प्रगति जांची। और 14वीं राष्ट्रीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने जीते 4 पदक। अनाय खलको और विशाखा थापा ने हासिल किया स्वर्ण। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंट्स ने दूसरे और आखिरी दिन झारखंड सरकार ने नई दिल्ली में 14 महत्वपूर्ण निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसके जरिए राज्य में करीब 99,639 करोड़ रुपए के निवेश का रास्ता साफ हुआ। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इन निवेशों से जिंदल स्टील और गूगल क्लाउड के सहयोग द्वारा राज्य में औद्योगिक विस्तार, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे।
3: इस विषय पर सरकार पूरी तरीके से राजहित के लक्ष्य और जन आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके ही काम करती है और मुझे लगता है ये तो घड़े का एक बूंद जैसा है। और भी बूंद बूंद भरते हुए उस घड़े को भरेंगे और आप देखेंगे कि एक जो राज्य पूरे देश का पेट पालता रहा हो और खुद कई मुसीबत और झंझावतों में रहा हो। मैंने पहले भी कहा था कि कुछ महीने पहले ही ये युवा राज्य बना है और अब ये चलना नहीं बल्कि दौड़ना प्रारंभ कर।
2: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने भी मुलाकात की और राज्य में विश्व स्तरीय स्किल सेंटर, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में दीर्घकालीन साझेदारी और निवेश बढ़ाने की गहरी रुचि व्यक्त की है। केंद्र सरकार की जीरो कोल लीकेज पहल के तहत सीआईएसएफ ने

0: कोयला चोरी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। बल ने झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीसीसीएल, ईसीएल और सीसीएल क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर करीब 428 मीट्रिक टन अवैध कोयला बरामद किया। इस मामले में 4 एफआईआर दर्ज कर कई वाहन जब्त किए गए हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्र ने टेबल्स ग्रुप के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गोड्डा, दुमका, जामताड़ा और देवघर जिले को मिलाकर एक संयुक्त विशेष टीम बनाई गई है। डीजीपी ने अवैध हथियारों की तस्करी रोकने, वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच और लगातार गश्त करने पर जोर दिया है। रांची में ऐतिहासिक रथ मेला की तैयारियां जोरों पर है। इस सिलसिले में कल रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने धुरवा स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर परिसर का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाएं निश्चित करने का निर्देश दिए। यह पारंपरिक रथ यात्रा आगामी 16 जुलाई से शुरू होने जा रही है।
1: लोग साल भर इंतजार करते हैं कि रथ यात्रा आएगी और फिर 10 दिन से यहाँ रथ यात्रा प्रारंभ होगी, फिर घोटी मेला होगा। इन 10 दिनों के अंदर लगभग 15 से 20 लाख लोग यहाँ आते हैं। उनकी सुरक्षा, उनके आवागमन, उनके लिए शौचालय, हर तरह की व्यवस्था खड़ी हो।
0: रांची महिला महाविद्यालय के 76वें स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि डॉक्टर महुआ माझी ने शिक्षा को जागरूक नागरिक और सक्षम नेतृत्व के निर्माण का माध्यम बताया। उन्होंने शिक्षा में डिग्री के साथ साथ नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर दिया, जिसके बाद उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी सुशील प्रसाद और एमडी साहिद अलम ने जमशेदपुर स्थित सीएसआईआर राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला का दौरा किया। मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत पहुंचे इन अधिकारियों ने अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं और अनुसंधान कार्यों का निरीक्षण किया। दोनों राजनयिकों ने संस्थान के विश्व स्तरीय शोध और औद्योगिक नवाचार की सराहना की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्वाति शर्मा ने गुमला जिले में विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने मनरेगा, जेएसएलपीएस और आवास योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन का निरीक्षण किया। बैठक में मानव दिवस सृजन, कूप निर्माण और लंबित भुगतानों के त्वरित निष्पादन पर चर्चा हुई। इस दौरान कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने रांची के ओरमांझी अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। सांसद ने अधिकारियों को म्यूटेशन, प्रमाण पत्र और अन्य राजस्व कार्यों का समय पर निष्पादन करने तथा पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए।
2: जमीन दलाल हैं चाहे माफिया हैं, पदाधिकारियों से मिली भगत करके गलत तरीके से रिपोर्टिंग करा करके वो जमीन को हस्तांतरण करने का काम करते हैं, दाखिल रजिस्ट्री कराने का काम करते हैं, जिसका परिणाम देर से फिर ग्रामीण को बहुत खराब भुगतना पड़ता है। इसलिए आए थे एक अंचल पदाधिकारी से कहने के लिए कि जिनका खर्ता प्लॉट में जो त्रुटियां हैं, उस त्रुटि को जिस किसान का, जिस ग्रामीण का शिकायत है, उसको तुरंत ठीक करने का काम कराए।
0: रांची के शौर्य सभागार में कल 14वां पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डीजीपी तदाशा मिश्रा शामिल हुए। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी मोनिता के ने कहा कि शिक्षा और रोजगार के लिए पासपोर्ट एक जरूरी दस्तावेज है। विभाग का लक्ष्य लोगों को बेहद सहज तरीके से पासपोर्ट उपलब्ध कराना है।
3: 2012 में विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसका मूल एम था डिजिटलाइजेशन तकनीकी कर। तो आज आप देखते हैं कि पासपोर्ट सेवा पूरी तरह डिजिटलाइज्ड है और आज 14वां पासपोर्ट सेवा दिवस सांस्कृतिक संध्या का आयोजन कर।
0: रांची नगर निगम ने राजधानी को जाम मुक्त बनाने के लिए बड़ा अभियान चलाया है। रातू रोड से हरमू चौक तक सड़क और फुटपाथ से अवैध दुकानों और अस्थायी ढांचों को बुलडोजर से हटाया गया। निगम ने अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

मौसम विभाग ने आज और कल रांची सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका है। हालांकि अगले दो दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। 14वीं राष्ट्रीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 पदक जीते। रांची के नेपाल हाउस प्रशिक्षण केंद्र के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया। अनायक हलको और विशाखा थापा ने स्वर्ण, वायु तिर्की ने रजत तथा कृपा राणा ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंट्स में झारखंड सरकार द्वारा 14 महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर करने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, राज्य में 99,639 करोड़ का निवेश होगा, पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट भी लगेगा। प्रभात खबर की सुर्खी है, बिल्डर के यहां लाखों की चोरी करके दूसरे घर में घुसे गार्ड हवाई फायरिंग से भागे। हिंदुस्तान लिखता है, रांची के कारोबारी की 85 करोड़ की संपत्ति ईडी ने अटैच की। दैनिक जागरण के शब्द हैं, जेएससीए स्टेडियम में भगदड़ व तोड़फोड़ मामले में 100 से अधिक 150 अज्ञात पर प्राथमिकी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंट्स में झारखंड सरकार ने किए 14 महत्वपूर्ण एमओयू। राज्य में आएगा करीब 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश। केंद्र सरकार के जीरो कोल लीकेज पहल के तहत सीआईएसएफ ने झारखंड और बंगाल में चलाया विशेष अभियान। 428 मीट्रिक टन अवैध कोयला जब्त। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ मेला की तैयारियों का लिया जायजा। सुरक्षा व्यवस्था के दिए कड़े निर्देश। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्वाति शर्मा ने गुमला जिले का किया दौरा। मनरेगा और आवास योजनाओं की जमीनी प्रगति जांची। और 14वीं राष्ट्रीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने जीते 4 पदक। अनायक हलको और विशाखा थापा ने हासिल किया स्वर्ण। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, मुझे पेश है प्रोग्राम मॉर्निंग मेलोडी।

0: एस जानकी और मोहम्मद अजीज को आप सुन रहे थे। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे थे श्रोताओं, और ये फिल्म थी आखिरी रास्ता। कार्यक्रम में आइए अब हम आपको सुनवाते हैं शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में ये अगला गीत। फिल्म का नाम हम आपको बता दें, इसे हमने लिया है फिल्म बेताब से। लेकिन इससे पहले सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: आज तो पार्टी चाहिए,
3: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
4: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
2: पिज़्ज़ा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार के गाए इसी खूबसूरत से गीत के साथ ही मॉर्निंग मेलोडी का आज का खूबसूरत सा सफर यहीं समाप्त होता है। सूरज को दीजिए अनुमति।

एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 9 बजने वाले कुछ ही पलों में हम आपको शामिल करेंगे अपने विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों में। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से कार्यक्रम चित्रलोक में स्वागत है। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं तेरी मेरी कहानी फिल्म का गीत। वाजिद मीका सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजें हैं। प्रसून जोशी की शब्द रचना, तर्ज बनाई है साजिद वाजिद ने।

विशाल डडलानी और सुनीति चौहान की आवाजों में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं विक्की डोनर फिल्म से। स्वानंद किरकिरे की रचना है, डॉन एंड बैन का संगीत।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आइए अब आपको सुनवाते हैं ऐश किंग और रिजवान अली खान साथियों की आवाजों में ये गीत फिल्म रश से। आशीष पंडित ने

अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज है गीतकार असद भोपाली का जन्मदिन। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा गीतकार असद भोपाली पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर में, यानी 9:30 पर, और ये कार्यक्रम पुनः आप सुन सकते हैं 9:30 पर। और अब कार्यक्रम चित्रलोक का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सरफरोश से। कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजें हैं, समीर के बोल, जतिन ललित का संगीत।

क्या यही प्यार है, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं अरमान मलिक की आवाज में, रश्मि विराग और आनंद बख्शी के बोल हैं, अमाल मलिक और आजी बर्मन का संगीत।

जी, रश्मि विराग की रचना थी, अमाल मलिक का संगीत। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म फना से सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में, प्रसून जोशी की रचना, जतिन ललित की बनाई धुन।

फिल्म फना का गीत आप सुन रहे थे सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में, और ये गीत बना आज के कार्यक्रम चित्रलोक की आखिरी पेशकश। कार्यक्रम चित्रलोक से अब आज्ञा दीजिए पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, को दे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: पेश प्रोग्राम आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है गीतकार असद भोपाली पर।
1: वो जब याद आए

असद भूपाली का जन्म मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 10 जुलाई सन 1921 में हुआ। मुंशी अहमद खान के वो बड़े साहबजादे थे। जब उनका जन्म हुआ तो इनका नाम रखा गया असदुल्ला खान। फारसी, अरबी, उर्दू और अंग्रेजी में उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई। शहर भोपाल एक अदबी शहर, वहाँ की हवा में शायरी की खुशबू होने से कई शायर इस शहर ने दिए हैं। उन्हीं में से एक जगमगाता नाम है असद भोपाली साहब का।

असद भोपाली कोई 28 साल के रहे होंगे जब उन्होंने माया नगरी मुंबई का रुख किया, ताकि वो अपने शायरी का फन फिल्मी गानों की शक्ल में उभार सके। भोपाल से मुंबई आने वाले शायरों की फहरिस्त का अव्वल नाम है असद भोपाली साहब का।

अख्तर, खुमार बाराबंकी, प्रेम धवन, राजेंद्र किशन जैसे दिग्गज गीतकार इस दौरान काम पाने की होड़ में जुटे हुए थे। यही नहीं, साहिर लुधियानवी जैसे पाए के शायर को भी असद भोपाली साहब के साथ ही एक हॉस्टल में रहना पड़ा था। तो ऐसे में काम पाना एक बड़ी चुनौती भरा काम था।

असद भोपाली का मुंबई आना किस तरह हुआ, ये भी एक दिलचस्प किस्सा है। फाजली ब्रदर्स एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था दुनिया। निर्देशक थे SF हसनैन साहब। फिल्म के अभी दो गाने ही लिखे गए थे। लिखने वाले थे आरजू लखनवी साहब, जो तकसीम हिंदुस्तान के पेश नजर पाकिस्तान चले गए थे। अब फाजली ब्रदर्स के सामने मुसीबत मुंह बाय खड़ी थी कि बाकी गाने किससे लिखवाएं। इसी दौरान भोपाल के सुगम चंद कपाड़िया, जिनके भोपाल शहर में दो थिएटर थे, मुंबई आए हुए थे। उन्हें जब इस बात की खबर मिली तो फाजली साहब के सामने उन्होंने मदद की पेशकश करते हुए मशवरा दिया कि भोपाल शहर में शायरों की कमी नहीं है, अगर आप चाहो तो मैं एक मुशायरा भोपाल में करता हूँ, नामी गिरामी शोहरा इसमें भाग लेंगे। आप और आपके निर्देशक साहब जिस किसी शायर से मुतासिर हों उससे बाकी गाने लिखवा लें। तजवीज फाजली ब्रदर्स को पसंद आई, भोपाल में मुशायरा हुआ। फिल्म के प्रोड्यूसर फाजली ब्रदर और SF हसनैन साहब मुशायरे में आए। जो शायर उन्हें सबसे अच्छे लगे वो थे असद भोपाली। फिल्म दुनिया के बाकी गाने फिर उन्हीं से लिखवाए गए। इस तरह से उनकी फिल्मी गीतकारी के रूप में पेश कदमी हुई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं हम सब उस्ताद हैं, इस फिल्म का किशोर कुमार का गाया हुआ ये गाना।

फिल्म दुनिया में असद भोपाली के दो गाने थे, रफी साहब का गाया हुआ रोना है तो चुप चुप के रो, आंसू न बहा आवाज न हो। सुरैया का गाया हुआ गाना था अरमान लुटे दिल टूट गया, दुख दर्द का साथी छूट गया। अगले साल यानी 1950 में फिल्म आधी रात के दो गाने लिखने का उन्हें ऑफर मिला, इधर तो आओ सरकार, किसी की जीत किसी की हार, और दिल ही तो है तड़प गया, दर्द से भर न आए क्यों। ये दोनों गाने लता मंगेशकर ने गाए थे, संगीतकार थे पंडित हुसैन लाल और पंडित भगत राम।

सन 1950 में ही एक और फिल्म के लिए उन्होंने गाने लिखे, वो फिल्म थी निर्दोष। अगर आपको याद हो तो मुकेश साहब ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत इसी फिल्म से की थी। संगीतकार थे श्याम सुंदर।

सन 50-51 के आसपास बीआर चोपड़ा साहब ने एक फिल्म अफसाना का निर्माण किया था। अशोक कुमार और वीणा मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म के संगीतकार थे पंडित हुसन लाल और पंडित भगत राम। कुल 9 गाने थे फिल्म में, इनमें से 6 गाने लिखे थे असद भोपाली साहब ने और काफी मकबूल भी हुए थे।

फिल्म अफसाना एक सफल फिल्म थी और इसका संगीत भी खूब लोकप्रिय हुआ था। असद भोपाली को इसके बदले मिली एक फिल्म राजपूत जो बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। उन दिनों साल में इक्का दुक्का फिल्में बनती थीं। काम पाने के लिए स्ट्रगल और कंपटीशन बहुत कड़ा हुआ करता था। इसी की एक मिसाल 1954 में असद भोपाली को फिल्म गुलबहार में एक गाना लिखने का मौका मिला जिसका संगीत खयाम साहब ने दिया था। इस फिल्म के दो संगीतकार थे, एक खयाम साहब और दूसरे धनी राम। दूसरे गीतकारों में थे जानेसार अख्तर, कैफी आजमी और शिवन रिजवी साहब। असद भोपाली का लिखा हुआ गाना था मुबारक बेगम का गया हुआ, कलियों को चूयूं मैं तारों से खेलूं। दोस्तों 1949 से 1990 तक असद भोपाली ने कुल 100 के आसपास फिल्मों में गाने लिखे, करीब करीब 400 के आसपास गाने हैं। असद भोपाली साहब का लिखा हुआ टावर हाउस फिल्म का ये बड़ा ही मीठा सा गाना है, लता मंगेशकर और मुकेश ने इसे गाया है।

पंडित हुसैन लाल, पंडित भगत राम, सी रामचंद्र, खय्याम, हंसराज बहल, लच्छी राम, धनी राम, दत्ता राम, पंडित शिवराम, श्याम सुंदर, एन दत्ता, नौशाद, ए आर परेशी, चित्रगुप्त, रवि, सी अर्जुन, सोनी कोमी, राजकमल, लाला सत्तार, हेमंत कुमार, मानस मुखर्जी,

कल्याण जी आनंद जी, इतने सारे संगीतकारों के साथ उन्होंने काम किया, सबसे ज्यादा काम उन्होंने गणेश और उषा खन्ना के साथ किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी आनंद बख्शी साहब के साथ साथ असद भोपाली से गाने लिखवाए थे। फिल्म पारसमणि के जो दो गाने हैं, वो जब याद आए बहुत याद आए और हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये काफी मकबूल हुए थे।

अपने जमाने के मशहूर निर्माता निर्देशक के आसिफ साहब का एक अनोखा शाहकार था फिल्म लव एंड गॉड। इस फिल्म के लिए भी असद भोपाली साहब ने अपनी कलम का सही इस्तेमाल किया। नौशाद साहब का संगीत सब कुछ अमर सा लगता है।

सन 1989 में सूरज बड़जात्या ने बड़ी ही खूबसूरत प्रेम कहानी बनाई, मैंने प्यार किया। इस फिल्म का कबूतर जा ये गाना सुपर डुपर हिट रहा, पर अफसोस इस गाने को जो सर्वश्रेष्ठ गाने का पुरस्कार मिला उसे लेने अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहे असद भोपाली साहब भोपाल से मुंबई न आ सके।

9 जून सन 1990 को इस शायर गीतकार असद भोपाली ने बगैर किसी अहलो अयाल के अपने शहर भोपाल से दुनियाए फानी को अलविदा कहा।

0: आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था गीतकार असद भोपाली पर, शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता हमारे स्टूडियो गुड़ी में सुबह के 10 बजे ही लीजिए पेश है हमारा प्रोग्राम हेलो हजारीबाग।
1: नाइन एट सेवन सिक्स

0: हजारीबाग प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।
1: हेलो हजारीबाग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सूरज, कीजिए अभिवादन स्वीकार। नमस्कार श्रोताओं, कहते हैं ना कि जल है तो कल है, जल ही आज है, जल ही भविष्य है। जल के बिना इस संसार की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। किसी कवि ने बातें भी कही भी हैं कि अगर जल ना होता तो ये जग जाता जल, यानी जल की अनिवार्यता हमसे छुपी नहीं है। लेकिन ये एक सच्चाई है कि जल के आज संरक्षण करने की जरूरत है। किस तरह से हम कर सकते हैं, इस पर अक्सर बातें होती है, लेकिन वो बातें सिर्फ बातें बनकर रह जाती है। इसमें जन भागीदारी की भी बहुत जरूरत है। सरकारी योजनाएं तो लगातार निरंतर चलती रहती हैं, लेकिन जन भागीदारी करके भी बहुत सारी चीजों का हम जल संरक्षण कर सकते हैं। पारंपरिक जो तरीके हमारे यहाँ अपनाए जाते थे, उन तरीकों को पुनः अपना कर

करके हम पानी का उपयोग कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, वर्षा जल का संचयन कर सकते हैं, वर्षा जल का उपयोग कर सकते हैं, वर्षा जल को संरक्षित रख करके हम उसे भविष्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, इस पर भी बात करेंगे और कैसे व्यवहार में हमारे आम जीवनचर्या जो है उसमें जल के संरक्षण को किस तरह से बैठा दी जाए कि हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते खूबसूरत से गीत का आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, तो इस खूबसूरत से गीत के साथ आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आनंद उठाते हैं इस गीत का।

सोचो जल संरक्षण की जब बात होती है तो सुनने में बड़ा ही आदर्शवादी शब्द प्रतीत होता है, लेकिन व्यवहार में उस अपेक्षा में हम अभी तक खरे नहीं उतर पाए हैं। खास करके जल संरक्षण में जन भागीदारी की जब बात होती है तो इसका सीधा सा और स्पष्ट मतलब यही निकल कर आता है कि सरकार के साथ साथ आम लोगों की भी अपनी भागीदारी है और उस पर हमें खरा उतरना होगा। अकेले कानून या योजनाओं के क्रियान्वयन में हम पूरी तरह से इस कार्य में सफल नहीं हो सकते हैं और हर एक की अपनी एक भागीदारी होनी चाहिए। जब तक हर घर गली गांव मोहल्ला शहर कस्बा इसमें शामिल न हो जाए तब तक हम इसे सकारात्मक रूप से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो जैसे छोटे छोटे स्तर पर की बात कर लेते हैं, जैसे घर के स्तर पर भी हम बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं और बहुत सारे लोग करते भी हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा। जैसे नल बंद करना, बेवजह पानी का इस्तेमाल न करना, टपकते नल ठीक करा लेना, बर्तन धोते समय बाल्टी का इस्तेमाल करना, आरओ का बचा पानी पौधे में डालना, ये कुछ छोटे छोटे कदम है जिससे बड़ा फर्क पड़ता है। समुदाय स्तर पर बात कर ले, जैसे मोहल्ले की बात कर लेते हैं और कॉलोनियों की बात कर लेते हैं, वहाँ जो तालाब है कुएं हैं पोखर की सफाई करके और उसे पुनर्जीवन दिया जा सकता है। और इसके अलावा जैसे जब हम आसपास में जो चापाकल है उसके आसपास रिचार्ज पीट बनाकर भूजल बचाया जा सकता है। स्कूल और या जो दूसरे शैक्षणिक संस्थान हैं वहाँ पर भी हम ये प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग जल साक्षरता की ट्रेनिंग देना, स्कूल में जल मित्र क्लब बनाकर निगरानी इसकी कराई जा सकती है। कृषि की बात करें तो बहुत ज़्यादा उपयोग खेतों में पानी के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, तो अब धीरे धीरे खेती में भी बहुत सारे ऐसे तकनीक आ गए हैं जिसमें कम जल से हम बेहतर पैदावार कर सकते हैं। जिसे टपक और फव्वारा सिंचाई अपनाया जा रहा है, धान की जगह कम पानी वाले फसलें लगा करके लोग जल की बचत कर रहे हैं, खेत के मेड़ पर पेड़ बनाकर पानी रोकने जैसे कार्य भी होते हैं। तो इन कहें छोटे छोटे स्तर पर हम बहुत सारी अच्छी बातों को लागू कर ले तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वतः होता चला जाएगा। अब देखिए कि जो जैसे नदी तालाब भूजल हमारे तभी बचेंगे जब इसका इस्तेमाल हम सोच समझ कर करेंगे। समस्या है कि जड़ तक हमें पहुंचना पड़ेगा, स्थानीय लोग ही जानते हैं कि कहाँ पानी बर्बाद हो रहा है और कहाँ रिसाव हो रहा है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि कहाँ पानी बर्बाद होता है। और जैसे लागत कम सरकारी प्रोजेक्ट के साथ लोगों का श्रम और निगरानी जुड़ जाए तो रख रखाव आसान हो जाता है। इसे कुछ तकनीकों की बात कर ले या कुछ कहें कि आसान शुरुआत हम कर सकते हैं, जैसे छत का पानी सीधे बोरवेल या सोख्ता गड्ढे में अगर हम भेजें तो बात बन सकती है। कपड़े और रसोई का साफ पानी बगीचों में इस्तेमाल कर सकते, बहुत सारे लोग करते भी हैं। और उसके बाद महीने में एक बार मोहल्ले में 15 मिनट पानी की बचत पर बात करें तो इससे भी बड़ी बात बन सकती है। तो जल संरक्षण जरूरी है, लेकिन जल संरक्षण का आदर्श तभी उतर कर सामने आ सकता है जब हम सभी इसमें अपनी भूमिका निभाएं, हर एक व्यक्ति निभाए, हर एक घर निभाए, हर एक मोहल्ला कॉलोनी निभाए, हर एक शहर निभाए, तो बात बनेगी और अवश्य बनेगी।

और श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मौसम पर थोड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर दें। तापमान आज दिन का अधिकतम 28.5 डिग्री रहने की संभावना है, रात में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना व्यक्त की गई है। और मौसम की बात करें तो बादल छाए रहने की संभावना है और बारिश भी होने की संभावना व्यक्त की गई है। कल शाम को भी हल्की फुल्की बारिश हुई है और आज भी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। और तो ये थी मौसम की जानकारी। और अखबार के पन्नों की तरफ बढ़ते हैं आगे, और एक बहुत ही खूबसूरत खबर हजारीबाग भास्कर पन्ने पर इसे अखबार ने प्रकाशित किया है, और खेती से जुड़ी हुई ये बातें हैं। जिले में 45% ही बिचड़ा रोपाई, धन रोपने का लक्ष्य 84,000 हेक्टेयर। कम बारिश से धान की खेती पर संकट, बड़का गांव और किरडारी प्रखंड में लक्ष्य से काफी पीछे।

का रोपण है। अखबार लिखता है कि जिले में इस वर्ष धान रोपने के लिए 84,000 हेक्टेयर भूमि का लक्ष्य निर्धारित किया गया, लेकिन अब तक मात्र 45% भूमि में ही बिचड़ा डालने का कार्य हो पाया है। कम बारिश के कारण इस बार बिचड़ा डालने का काम काफी देरी से शुरू हुआ। जिले के अधिकांश प्रखंडों की स्थिति लगभग एक जैसी बनी हुई। पिछले 9 जुलाई तक 85% बिचड़ा डालने का कार्य पूरा कर लिया गया था, जबकि इस वर्ष करीब 45% कम प्रगति दर्ज की गई है। वहीं केरेडारी प्रखंड की स्थिति और भी चिंताजनक बनी हुई है। धान की खेती के लिए पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण अब तक मात्र 50% ही बिचड़ा लगाया जा सका है या फिर किसानों की सीधी बुआई का सहारा लिया गया है। विभाग द्वारा प्रखंड के 7,400 हेक्टेयर भूमि में धान रोपने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अब तक मात्र 85.8 मिलीलीटर वर्षा दर्ज की गई है। और वर्षा को लेकर लोग अभी भी आसमान की तरफ देख रहे हैं, बादलों की तरफ देख रहे हैं कि किस तरह से बारिश होगी और वो खेती बाड़ी के अपने कार्य में पूरी तरह से जुट पाएंगे। और एक दूसरी खबर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और त्वरित गति से ध्यान खींचती है, वो ये है कि हजारीबाग में 2 सरकारी कॉलेजों में संस्कृत की पढ़ाई खत्म, 90% सीटें घटी। ये खबर भी हजारीबाग दैनिक भास्कर की है। और अखबार लिखता है कि शहर के सबसे पुराने सरकारी कॉलेजों में संस्कृत विषय के स्नातक की पढ़ाई खत्म किए जाने के विरोध में गुरुवार को सैकड़ों छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर आए। विद्यार्थियों ने उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के सब्जेक्ट मैपिंग के निर्णय को संस्कृत और भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताते हुए शहर में विरोध मार्च निकाला। उनका कहना है कि सेंट कोलम्बस कॉलेज और केबी महिला महाविद्यालय हजारीबाग में नामांकन बंद होने से अब पूरे शहर में संस्कृत स्नातक की पढ़ाई केवल मार्कम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 60 सीटें ही बची है, जबकि पहले 3 सरकारी कॉलेजों में हर वर्ष औसतन 150 विद्यार्थी प्रवेश लेते थे। तो और इससे जुड़ी हुई तस्वीर भी अखबार ने प्रकाशित की है और बॉक्स में दूसरी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसे भी प्रकाशित किया है। तो ये अखबार के पन्नों की पहली 2 खबरें हम आपके साथ साझा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत संगीत हम आपको सुनवाते हैं।

अखबार के पन्नों के कुछ और खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले इतिहास के पन्नों की ओर लौटते हैं। इतिहास के पन्नों में आज के दिन के साथ कौन सी बातें जुड़ी हुई, कौन सी ऐतिहासिक घटनाक्रम आज के तारीख के साथ है, तो उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। और हम आपको बता दें कि 10 जुलाई की जो ऐतिहासिक घटना है उसमें द्वारकाचीम की लड़ाई महत्वपूर्ण थी, जहां जूलियस सीजर ने द्वारकाचीम, जिसे अब अल्बानिया कहा जाता है, के पास पोम्पी से हार से बच निकले थे। और लेडीज जेन ग्रे को इंग्लैंड की रानी घोषित किया गया था 10 जुलाई 1553 ईस्वी को, और डेनमार्क ने ग्रीनलैंड पर अधिकार जमा लिया था आज ही के दिन यानी 10 जुलाई 1924 ईस्वी। सोवियत संघ की आधिकारिक समाचार एजेंसी के रूप में तास की शुरुआत की गई थी आज ही के दिन में 1925 ईस्वी में। और 1931 की बात कर लेते हैं, तो पहली महिला विमानन अमेलिया एयरहार्ट ने पृथ्वी का चक्कर लगाने की उड़ान शुरू की थी। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की शुरुआत 1999 में आज ही के दिन हुई थी। और सिल्वियो बर्लुस्कोनी को इटली के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, और ये 2001 की घटना है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार तुंगा ने संसद को निलंबित कर दिया था आज ही के दिन। और सबसे बड़ी बात, रोम में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य सम्मेलन आयोजित किया गया था 2002 10 जुलाई को। भारत का भू समकालिक उपग्रह इनसेट 4C श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज ही के दिन 10 जुलाई

2006 को लॉन्च किया गया था। और इसके अलावा भी चर्चा कर लेते हैं 10 जुलाई की जो महत्वपूर्ण तारीख है, जो उसकी ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे के रूप में 10 जुलाई को जाना जाता है। वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों और नवीकरणीय ऊर्जा रूपों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये डे आज की तारीख को मनाया जाता है। और तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य, ऐतिहासिक जानकारियां। और वैश्विक स्तर पर बात कर लेते हैं तो थोड़ी, जैसे आज 10 जुलाई को ओवन चैम्बरलेन, एक अमेरिकी भौतिक शास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता थे, और उनकी पुण्यतिथि भी है आज। और इसके अलावा हम बात करें तो गोपीनाथ बारदोलोई, एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और असम के पहले मुख्यमंत्री थे, और इन्होंने, इनका जन्म 10 जुलाई को हुआ था। सुनील गावस्कर 1949 ईस्वी में, आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कहीं के सर्वकालिक महान बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत सरकार में रक्षा मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और जाने माने पॉलिटिशियन, इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। और संगीत से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण शख्सियत, इनका जन्म भी आज 10 जुलाई को हुआ था। 10 जुलाई 1950 ईस्वी को पटियाला घराने में भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका बेगम परवीन सुल्ताना का जन्म हुआ था।

और श्रोताओं, लौटते हैं अखबार के पन्नों की ओर। तो दो तीन खबरें जो इस वक्त हम आपके लिए साझा करने जा रहे हैं, ये दैनिक जागरण का हजारीबाग पन्ना है और ये समाचार सार के रूप में प्रकाशित है, लेकिन ये खबर ध्यान खींचती है। नन्हा सा दिल अभियान से बच्चों को मिलेगा नया जीवन, ये बड़ी डेडलाइन की खबर है। अखबार लिखता है कि जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की पहचान व निःशुल्क उपचार के लिए बरही प्रखंड में कल 11 से आगामी 22 जुलाई तक नन्हा सा दिल अभियान चलाया जाएगा। अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर प्रकाश ज्ञानी ने बताया कि अभियान के तहत सभी पंचायतों में 30 विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां बच्चों के निःशुल्क जांच होगी। संदिग्ध बच्चों को विशेष जांच के बाद जरूरत पड़ने पर उन्हें सत्य साई अस्पताल छत्तीसगढ़ भेजकर ऑपरेशन सहित पूरा इलाज मुफ्त कराया जाएगा। और RBSK के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद एजाज ने बताया कि 2025-26 में 4 तथा 26-27 में अब तक 2 बच्चों का सफल ऑपरेशन कराया जा चुका है। तो ये थी खबर हृदय से जुड़ी हुई, बच्चों से जुड़ी हुई। अब हम आपको बता दें कि ये PM सूर्य घर योजना का कार्यालय शुरू, सोलर लगाने से बिजली बिल होगा 0। अब ये अखबार लिखता है कि हजारीबाग प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत आम लोगों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की दिशा में गुरुवार को बंसीलाल चौक मंगल बाजार के समीप योजना के कार्यालय का उद्घाटन हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और योजना की जानकारी प्राप्त कर सोलर संयंत्र लगाने में रुचि दिखाई। योजना के फ्रेंचाइजी हेमंत कुमार ने सांसद को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। वहीं योजना के पहले लाभार्थी सुनील केसरी को भी सांसद ने सम्मान किया। इस दौरान कई लोगों ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का लाभ लेकर अपने घरों में सोलर संयंत्र लगाने की सहमति जताई है। सांसद मनीष जायसवाल ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना आम लोगों के लिए बेहद लाभकारी है, घरों में सोलर संयंत्र लगाने से बिजली बिल लगभग 0 हो सकता है। यदि आवश्यकता से अधिक बिजली का उत्पादन होता है तो उसे विद्युत विभाग के ग्रिड में भेज करके उपभोक्ता अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात के अहमदाबाद में अधिकांश घरों में सोलर पैनल लगे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में लोग सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। झारखंड में भी इस योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि लोग आत्मनिर्भर बने और स्वच्छ ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग कर सके। तो ये थी कुछ खबरें और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको एक और गीत।

और श्रोताओं, ये दैनिक हिंदुस्तान अखबार है और इसके प्रथम पृष्ठ पर जो महत्वपूर्ण खबर प्रकाशित हुए, ऐतिहासिक खबर के हवाला देकर ये खबर अखबार ने प्रकाशित किया है। और अखबार लिखता है कि भारतवर्ष ऑस्ट्रेलिया में असैन्य परमाणु ऊर्जा करार। अखबार लिखता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को ऐतिहासिक समझौता करते हुए असैन्य परमाणु ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिज जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज ने एक शांतिपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए इस द्विपक्षीय साझेदारी को बेहद महत्वपूर्ण बताया। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच सहमति के लिए मेलबर्न के पहले शिखर वार्ता हुई, जिसके बाद कुल 18 समझौते पर मुहर लगी। अखबार आगे लिखता है कि असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते में ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की व्यावसायिक आपूर्ति का रास्ता साफ हो गया है। इसका इस्तेमाल भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। वहीं लगभग 12 साल पहले दोनों देशों के बीच हुए ऐतिहासिक परमाणु सहयोग समझौते के बाद यह बड़ा कदम है। बातचीत के नतीजे अभूतपूर्ण। इस विषय पर अखबार लिखता है कि समझौते के बाद जारी संयुक्त वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने अल्बनीज के साथ बातचीत के नतीजों को अभूतपूर्व बताया। उन्होंने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई, परमाणु ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, औद्योगिक और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति का उल्लेख किया। और ये प्रथम पृष्ठ पर ये खबर प्रकाशित हुई थी और सभी का ध्यान भी खींचती है। और ये थोड़ा कुछ अलग खबर के नाम से अखबार ने इसे प्रकाशित किया है। ये इसी अखबार दैनिक हिंदुस्तान की खबर है, महिला सिपाही बनी नर्स, स्टेशन पर कराया प्रसव। धनबाद डेडलाइन की खबर है, अखबार लिखता है कि धनबाद स्टेशन में सुरक्षा की कमान संभाल रही आरपीएफ की महिला सिपाही ने गुरुवार को नर्स बनकर प्रसव वेदना से तड़प रही गर्भवती को सुरक्षित प्रसव कराया। वाक्य प्लेटफॉर्म नंबर 8 का है, जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित है। बाद में मंडल रेलवे अस्पताल की चिकित्सा टीम मौके पर पहुंची और जरूरी दवाएं इंजेक्शन देने के बाद अस्पताल ले जाने की सलाह दी और आरपीएफ ने महिला और बच्चों को एम्बुलेंस में सदर अस्पताल भेज दिया। ओडिशा के सुखापुड़िया की रहने वाली गर्भवती फूल सुंदरी अपनी बहन कार्टूनी के साथ सफर कर रही थी और दोनों बहनें ओडिशा के अंगुल स्टेशन पर एलएपी एक्सप्रेस पर चढ़ी थी। कार्टूनी को ससुराल धनबाद के गोविंदपुर में है, वहीं जाने के लिए गुरुवार को दोनों धनबाद स्टेशन पर उतरी। इसी दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 7-8 पर फूल सुंदरी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, तब आरपीएफ को इसकी सूचना दी गई। तो ये एक मानवीय खबर, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जो ध्यान खींचती है। हजारीबाग नगर आयुक्त को अवमानना का नोटिस, ये खबर रांची हेडलाइन से अखबार ने प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। अखबार लिखता है कि हजारीबाग में लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक अव्यवस्था, अतिक्रमण व खराब सीसीटीवी कैमरों के मामले में हाईकोर्ट ने गुरुवार को कड़ा रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने हजारीबाग नगर आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई क्यों शुरू नहीं की जाए। और इसके अलावा दूसरी बातें भी इस खबर में अखबार ने प्रकाशित किया है। और एक दो शीर्षक है जो हम आपके साथ साझा कर दें। कोयला कर्मियों को भविष्य निधि पर 7.6% ब्याज। और जो अंदर की पृष्ठ पर जो खबरें छपी है उसके लिए जो हाईलाइट प्रकाशित की है उसे भी हम आपके साथ साझा कर दें। महिला टीम के नज़र में लॉर्ड्स फतह करने पर कॉलर रेप नियमों के दायरे में आएंगे, मलेरिया के असामान्य लक्षणों से सावधानी जरूरी। तो ये थी दैनिक हिंदुस्तान के कुछ खबरें।

और ये प्रभात खबर का राजपाठ पन्ना है और राजपाठ प्रभात नाम से प्रकाशित होता है। इसकी दो खबरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एआई विजन 2050 पांच वर्षों में 1150 करोड़ रुपए का निवेश, रांची में 100.97 एकड़ में बनेगा आईटी पार्क। अखबार लिखता है कि झारखंड सरकार ने राज्य को एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुशासन और डिजिटल नवाचार का अग्रणी केंद्र बनाने के लिए व्यापक रोडमैप पेश किया है। नई दिल्ली के होटल ताज पैलेस में आयोजित नेशनल स्टॉक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 में सरकार ने एआई आधारित डिजिटल गवर्नेंस, आईटी इकोसिस्टम और निवेश बढ़ाने की अपनी सहमति साझा की है। अखबार आगे लिखता है कि सरकार ने प्रस्तावित झारखंड एआई नीति 2026-31 का भी खाका प्रस्तुत किया, जिसके तहत शासन, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, खनन, पर्यावरण प्रबंधन और आपदा प्रबंधन में एआई का उपयोग बढ़ाया जाएगा और साथ ही डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, पारदर्शिता और जिम्मेदारी तकनीक उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी और सरकार करेगी 1150 करोड़ रुपए का निवेश। अखबार इसी विषय पर लिखता है कि राज्य सरकार ने अगले पांच वर्षों में एआई आधारित आधारभूत संरचना, डिजिटल क्षमता विस्तार, नवाचार व विभिन्न विभागों में एआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1150 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव रखा है। साथ ही रांची में 100.97 एकड़ क्षेत्र में आईटी पार्क विकसित करने की भी योजना प्रस्तुत की गई। यहां ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जीसीसी, आईटी कंपनियां, स्टार्टअप और नवाचार आधारित उद्योग स्थापित किए जाएंगे। विजन 2050 के तहत राज्य का लक्ष्य 10,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश आकर्षित करना और 50 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करना, 1,000 से अधिक स्टार्टअप विकसित करना और तथा 1,00,000 से अधिक एआई आधारित रोजगार सृजित करना है। इसके अलावा एआई शिक्षा, कौशल विकास, शैक्षणिक संस्थानों में साझेदारी और क्षमता निर्माण पर भी विशेष जोर दिया गया और ये सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण पर भी एक, एक, एक परिचर्चा का आयोजन रांची में किया गया था, उससे जुड़ी हुई एक खबर है। कचरा प्रबंधन, सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण की आधारशिला। और अखबार लिखता है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और यूनिसेफ झारखंड की ओर से गुरुवार को होटल चाणक्य में कचरा प्रबंधन नियम 2026 के क्रियान्वयन को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। अध्यक्षता पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने की। कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि कचरा प्रबंधन केवल स्वच्छता का विषय नहीं बल्कि यह सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण की आधारशिला है। कचरा प्रबंधन नियम 2026 का मूल उद्देश्य कचरा से कंचन बनाना है। मंत्री ने कचरे का संसाधन के रूप में उपयोग कर ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और गांवों को स्वच्छ एवं हरित बनाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने सरकारी कार्यालयों में भी कचरा प्रबंधन के अनिवार्य अनुपालन निर्देश दिए। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव अबू इमरान ने ग्राम स्तर पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाने और आदर्श गांवों का निर्माण का आह्वान किया और साथ ही कचरा पृथक्करण पर

जोर दिया गया। कार्यशाला में पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और झारखंड प्रदूषण नियंत्रण सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो ये थी कुछ खबरें अखबारों की और कार्यक्रम का श्रोताओं समय लगभग समाप्त हो रहा है, तो चलते चलते एक और खूबसूरत संगीत हम आपको सुनवाते हैं।

और दूसरों कहते हैं कि संकल्प का जो धनी होता है उसे आगे कभी भी परेशानी नहीं होता है। तो इसी संकल्प के साथ ही आज के कार्यक्रम से सूरज को दीजिए नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग।
0: नमस्कार श्रोताओं, आपका कार्यक्रम रंग तरंग में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं मीरा भजन इस एल्बम से। लता मंगेशकर की आवाज है, मीरा बाई का लिखा गीत, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत।

रंग तरंग कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको सुनवाया हृदयनाथ मंगेशकर के संगीत निर्देशन में संत मीराबाई का ये भक्तिपद, आवाज लता मंगेशकर की थी।

0: चंदन दास की आवाज में अभी आपने निदा फाजली का ये कलाम सुना। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।
2: रात तुझे

हमशी का अय्यर की आवाज थी ये, और अभी आपने इनका गाया ये ओगार फिल्मी गीत सुना। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं शोभा गोल्टू की आवाज में ये शास्त्रीय रचना।

0: शोभा गुर्टू की आवाज में अभी आपने ये शास्त्रीय रचना सुनी।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: रंग तरंग कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं जावेद अली की आवाज। इनका गाया ये अगार फिल्मी गीत सुनिए।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। यह आवाज है विशाल मिश्रा की और गीत और संगीत भी विशाल मिश्रा का ही है।

0: सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
0: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बेगम अख्तर की आवाज में हम आपको जिगर मुरादाबादी का ये कलाम सुनवा रहे हैं।

कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोंसले और हरजोत कौर की आवाजों में है। गीतकार हैं अनजान और ये एक गैर फिल्मी गीत है।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
0: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और लीजिए अब सुनिए पलक मुछाल और उत्कर्ष शर्मा की आवाजों में ये गैर फिल्मी गीत।

और आइए अब सुनते हैं रंग तरंग कार्यक्रम की ये आखिरी पेशकश। कलाकार हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन।

इस रचना के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न कर ली है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। भारत को ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया। यात्रा का सबसे प्रभावशाली जनसंपर्क कार्यक्रम मेलबर्न के मावल स्टेडियम में आयोजित मेलबर्न मीट्स मोदी प्रवासी भारतीय सम्मेलन रहा, जिसमें लगभग 25,000 लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 10 लाख भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई लोगों को दोनों देशों के बीच जीवंत सेतु बताया।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहाँ कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है, आज यहाँ केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है।
0: प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहु सांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। इस अवसर पर गृहमंत्री ने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है।
2: विगत 12 साल में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सीमा सुरक्षा के लिए काम हुआ है। सबसे पहले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजस्व खर्च होना, इसकी प्रायोरिटी चिन्हित करना और चिन्हित प्रायोरिटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2013 का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और आज के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% का परिवर्तन है। बॉर्डर सुरक्षा की पहली जो रिक्वायरमेंट थी, बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इसको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज बढ़त का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 803 अंक बढ़कर 77,545 जबकि निफ्टी 243 अंक की बढ़त के साथ 24,205 पर पहुंच गया। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक एकदिवसीय टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा।

0: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। और आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं दिग्गज गीतकार और शायर असद भोपाली के लिखे कुछ गीत। आपको याद है ना, आज उनका जन्मदिन है। तो आइए यादों की महफिल कार्यक्रम में आज असद भोपाली जी को हम याद करते हैं। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत, लता मंगेशकर, एसपी बालसुब्रमण्यम और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया। गीतकार असद भोपाली और संगीतकार राम लक्ष्मण।

लता मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम और साथियों की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म मैंने प्यार किया का ये गीत। और आइए अब सुनते हैं उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में असद भोपाली की लिखी ये रचना, आवाज मोहम्मद रफी की, और ये फिल्म है एक सपेरा एक लुटेरा।

0: के बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति

0: श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए असद भोपाली का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत निर्देशन में। आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है हम सब उस्ताद हैं।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर और कमल बारूद की आवाजें। फिल्म का नाम है पारसमणि। असद भोपाली के शब्दों को संगीत में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता

0: सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
2: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको फिल्म रूप तेरा मस्ताना का गीत सुनवा रहे हैं, शब्द असद भोपाली के और तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की ही आवाज में, फिल्म का नाम श्रीमान फंटूश, रचना असद भोपाली की है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: उसकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको फिल्म टावर हाउस का गीत सुनवा रहे हैं, रचना असित भोपाली की और संगीत रवि का।

कार्यक्रम का अगला गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में असद भोपाली का ही लिखा हुआ, आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम है आया तूफान।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। कार्यक्रम में अब सुनिए फिल्म नाग मंदिर का गीत, आवाज मोहम्मद रफी की।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
0: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म एक नारी दो रूप का ये गीत।

ग्यावस थी मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम था एक नारी दो रूप, गीतकार थे असद भोपाली। और आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने आपको गीतकार असद भोपाली के लिखे कुछ गीत सुनवाए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर। बस आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

तो प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुरीला सफर के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, निदा फाजली ने कहा है कि सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। तो चलिए निकलते हैं इस आज के सुरीले सफर पर, या यूं कहें कि इस संगीतमय सफर पर। और आज इस सफर में कुछ कालजयी और सदाबहार धुनों पर आधारित कई ऐसे गीत हम आपके लिए चुनकर लाए हैं जो आपको लगभग एक जैसे गाए हुए लगेंगे, है ना? यानी एक ही मीटर में गाए हुए ये गीत हम कई बार सुनकर ठिठक भी जाते हैं या महसूस करने लगते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल एक जैसा ही गाया गया है। यहाँ शास्त्रीय रागों पर बात करना हमारा उद्देश्य नहीं है दोस्तों, क्योंकि कौन सा गीत पूर्ण रूप से किस राग पर आधारित है ये तो कोई शास्त्रीय संगीत का ज्ञाता ही बता सकता है। लेकिन हाँ, जब हम इन गीतों पर अध्ययन कर रहे थे तो हमने जाना कि आज के ये सभी गीत एक ही राग पर आधारित हैं और सुनने में बिल्कुल लगभग यूं कहें एक जैसे लगते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के इस सुरीले सफर पर। हाँ, हमारे बहुत से श्रोताओं ने कभी लिखा है कि आज के गीत राग यमन पर आधारित हैं, राग आसावरी पर, राग शिवरंजनी पर, राग अल्लैया बिलावर पर, राग पीलू पर। बहुत सारे रागों का हमारे श्रोताओं ने जिक्र किया है, लेकिन हमने आपको कहा कि यहाँ राग इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि हम शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता नहीं है। हमारा उद्देश्य इस रूप में आपका मनोरंजन करना है कि ये गीत जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये गीत उस गीत से कितना मेल खाता हुआ है। ये अलग बात है कि ये गीत किसी एक राग पर आधारित है, कोशिश तो हम करेंगे उसे जानने की। तो आज का हमारा टेक्स्ट है कि आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए ऐसे गाने जिसमें भाव या मूड एक जैसा है, ऐसे गीत लेकर आए हैं। ऐसे गीत जो सुनने में एक जैसे लगेंगे, हाँ, और शास्त्रीय दृष्टि से भी वैसे उनका राग एक ही है। ऐसे गीत जो एक ही मधुर धुन से प्रेरित हैं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस मधुर और सदाबहार राग पर कई बेहतरीन गीत बने हैं जो आपको बिल्कुल एक जैसा ही अनुभव करवाएंगे। इन सभी गानों को इस कार्यक्रम में एक मधुर माला की तरह पिरोया गया है। तो बताइए कौन से हैं वो गीत, और आज हमने एक बार फिर आपके लिए कुछ शब्द जोड़े हैं कि इन गानों में ये शब्द आपको सुनने को मिलेंगे, ताकि आपको कुछ आसानी हो जाए उन गानों को ढूंढने की, है ना, उस राग को पहचानने की। अगर आप में से हमारे श्रोता जो शास्त्रीय रागों के ज्ञाता हैं, तो आज के शब्द हैं हवाएं, दिल, कहा था, तमन्ना, महका, जरूरत, नगमा, अगर, किनारे और मजबूर। और यकीनन हमारे श्रोता बहुत बहुत बहुत होशियार हैं, क्योंकि उन्होंने, बहुत सारे ऐसे श्रोताओं ने इस बात का जिक्र किया है कि भाई आज तो ये गाने ये हैं, सारे गाने सही लिख दिए हैं हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, और कई श्रोताओं ने इन्हें जानने की कोशिश की है। एक श्रोता लिखते हैं कि कई बार अलग अलग फिल्मों के गीत सुनते हुए अचानक एहसास होता है कि इनके बोल, गायक, संगीतकार और समय भले ही अलग हों,

पर इनकी मूल धुन या मीटर कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ते हैं। अलग अलग समय, अलग अलग फिल्मों, अलग अलग गीतकारों और संगीतकारों की रचनाएं, लेकिन इन्हें एक अदृश्य संगीत सूत्र जोड़ता है। यही भारतीय फिल्म संगीत की खूबसूरती है। एक कालजयी धुन समय के साथ नए शब्द पहनती है, नए स्वर पाती है, नए भाव ग्रहण करती है, फिर भी अपनी आत्मा को सुरक्षित रखती है। एक सुंदर धुन समय की सीमाओं को पार कर कई पीढ़ियों तक जीवित रहती है। आज के सभी गीत आपने उस राग का जिक्र भी कर दिया है, लेकिन आपने बहुत सुंदर इबारत लिखी है। जो बात हम कहना चाहते थे वो आपने पूरी तरह से कह दी है। तो चलते हैं इस सुरीले सफर पर।

0: यह आवाज लता मंगेशकर की थी फिल्म नौजवान के लिए। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। हमारी श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत के सभी गाने मुख्य रूप से अलग अलग रागों पर आधारित हैं। आपने कुछ रागों का जिक्र किया है। आप लिखते हैं कि कुछ संगीतकारों के अनुसार राग पहाड़ी राग देश के प्रभाव वाली धुनों से प्रेरित हो सकते हैं आज के गीत। और आपने आगे लिखा है कि राग बिहाग भारतीय शास्त्रीय संगीत यानी हिंदुस्तानी संगीत का एक अत्यंत मधुर लोकप्रिय और श्रृंगार रस प्रधान राग है। इस राग की मुख्य विशेषताएं आपने लिखी हैं कि गंभीर और शांत प्रकृति का है और श्रोताओं को एक आध्यात्मिक और कोमल चांदनी जैसी शांति का अनुभव कराते हैं ये राग। जी हाँ, लेकिन आज के गाने तो राग बिहाग पर आधारित नहीं है और न ही हमारा उद्देश्य है।
1: FM 100.3 MHz पर सुनिए प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने रांची के झीरी बायोगैस प्लांट का किया निरीक्षण, समय पर काम पूरा करने के निर्देश। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची एयरपोर्ट पर वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस और नए मेडिकल रूम का किया उद्घाटन, कहा दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा टर्मिनल के चेकिंग क्षेत्र का विस्तार। रांची के इटकी में 50 एकड़ भूमि पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार, आयुष मंत्रालय की टीम ने किया जमीन का निरीक्षण। झारखंड की पकरी बरवाड़ी कोयला खदान लगातार दूसरे साल देश में पहले स्थान पर, कोयला नियंत्रक कार्यालय ने दी 5 स्टार रेटिंग। और बोकारो को मिली नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी, 18 से 27 अगस्त तक जुटेंगे देश के 700 दिग्गज तीरंदाज और ओलंपियन। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने रांची के झिरी स्थित बायोगैस प्लांट और लिगेसी वेस्ट बायोमाइनिंग परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यों की प्रगति पर संतोष जताते हुए अधिकारियों को समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह परियोजना कचरा प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक मेडिकल रूम का उद्घाटन किया। आपात स्थिति के लिए एयरपोर्ट पर वेंटिलेटर से लैस जीवन रक्षक एम्बुलेंस भी तैनाती रहेंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आगामी दिसंबर तक टर्मिनल के चेकिंग क्षेत्र का विस्तार पूरा कर लिया जाएगा।
1: ये मस्ट है, किसी भी यात्री को कहीं हेल्थ इश्यू आता है तो उसको तुरंत ही हम रिलीफ दें। मणिपाल इसके 49 हॉस्पिटल्स हैं पूरे देश भर के। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो रांची एयरपोर्ट है बहुत सुविधाओं से युक्त हो रहा है।
0: रांची के इटकी टीबी सेनेटोरियम परिसर की 50 एकड़ भूमि पर एम्स की तर्ज पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और योग केंद्र विकसित होंगे। आयुष मंत्रालय की टीम ने भूमि का निरीक्षण कर लिया है और जल्द ही प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने राज्य सरकार के दिल्ली स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंट्स को दिखावा करार दिया है। रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 7 वर्षों में राज्य में एक भी बड़ा उद्योग नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जाकर पीठ थपथपाने से झारखंड में कोई वास्तविक निवेश नहीं आने वाला है।
2: इन्वेस्टमेंट के नाम पर राज्य सरकार झारखंड की जनता को बेवकूफ लगातार बनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें महारत हासिल है झारखंड के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का, क्योंकि इसके पहले भी मुख्यमंत्री जी ने राज्य की जनता से कई सारे उद्योग लगाने का वादा तो जरूर किया, लेकिन पिछले 7 वर्ष की सरकार में एक भी बड़ा उद्योग जो है पूरे प्रदेश में लगाने में वो विफल रहे।
0: एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड की झारखंड स्थित पकरी बरवाडीह कोयला खदान को देश में पहला स्थान मिला है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कोयला नियंत्रक कार्यालय ने पकरी बरवाडीह ओडिशा की दुलंगा और छत्तीसगढ़ की तलाईपल्ली खदानों को 5 स्टार रेटिंग दी है। कंपनी ने इसे सुरक्षित खनन और पर्यावरण संरक्षण की बड़ी उपलब्धि बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। धनबाद में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत चिन्हित 3000 बच्चों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। सिविल सर्जन के निर्देश पर आज और 13 जुलाई को जिले के सभी प्रखंडों में प्रथम चरण का उपचार किया जा रहा है। गंभीर बीमारी वाले बच्चों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी

0: समापन वाले दिन पौधारोपण और सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा।
1: कल विद्यार्थी जो शिक्षा के नीति के अनुरूप उनका कला और संस्कृति दीर्घा और फाइन आर्ट्स का प्रदर्शन होगा, और परसों जो हमारा अंतिम दिन होगा जो कि वास्तव में 12 तारीख स्थापना दिवस है, उस दिन हम विद्यार्थियों को पुरस्कृत करेंगे।
0: पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने चक्रधरपुर में ब्राउन शुगर तस्करी सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 अलग अलग छापेमारी में 75 पुड़िया ब्राउन शुगर, मोबाइल और मोटरसाइकिल जब्त की। एसडीपीओ डॉक्टर सैयद मुस्तफा हासमी ने बताया कि पुलिस इस बड़े सिंडिकेट की जांच कर रही है।
2: पुलिस के पूछताछ के क्रम में ये पाया गया है कि ये सभी लोग एक ड्रग पेडलिंग सिंडिकेट का हिस्सा, बाहर से ब्राउन शुगर लेकर आते थे चक्रधरपुर में, छोटी छोटी पुड़िया बना के बेचा करते थे। तो एक बड़े नेटवर्क को इसी तरह 2 बैक टू बैक छापामारी करते हुए ध्वस्त किया गया। इसमें और भी हमारे पास इनपुट्स हैं और लीड्स हैं जिस पर अभी अनुसंधान जारी है।
0: सरायकेला खरसावां में आगामी रथ यात्रा महोत्सव को लेकर पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने नगर क्षेत्र का पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को यातायात प्रबंधन और कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के कड़े निर्देश दिए। इस दौरान रथ यात्रा समिति के सदस्यों ने शांतिपूर्ण आयोजन के लिए प्रशासन को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के मुख्य इंडेक्स लगभग 0.9% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 666 अंक चढ़कर 77,407 पर और निफ्टी 198 अंक बढ़कर 24,161 पर पहुंच गया था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,400 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,32,000 रुपये प्रति किलो है। राज्य में सक्रिय मॉनसून के बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। 12 और 13 जुलाई को रांची, लातेहार, लोहरदगा और गुमला के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों में गोड्डा में सबसे अधिक 44.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। बोकारो में 18 से 27 अगस्त तक एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन होगा। भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में करीब 700 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। तीरंदाजी संघ के जिला अध्यक्ष लंबोदर महतो ने बताया कि इसमें देश के बेहतरीन तीरंदाज, ओलंपियन और राष्ट्रीय कोच शिरकत करेंगे।
3: निश्चित रूप से इस टूर्नामेंट को बहुत ही भव्य, शानदार और ऐतिहासिक बनाने का हम लोग काम करेंगे। ये इतना महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है जिसमें पूरे देश भर के सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भाग लेंगे और सभी ग्रुप का मिलाकर लगभग 1,000 से ज्यादा खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने रांची के झीरी बायोगैस प्लांट का किया निरीक्षण, समय पर काम पूरा करने के निर्देश। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची एयरपोर्ट पर वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस और नए मेडिकल रूम का किया उद्घाटन, कहा दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा टर्मिनल के चेकिंग क्षेत्र का विस्तार। रांची के इटकी में 50 एकड़ भूमि पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार, आयुष मंत्रालय की टीम ने किया जमीन का निरीक्षण। झारखंड की पकरी बरवाड़ी कोयला खदान लगातार दूसरे साल देश में पहले स्थान पर, कोयला नियंत्रक कार्यालय ने दी 5-स्टार रेटिंग। और बोकारो को मिली नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी, 18 से 27 अगस्त तक जुटेंगे देश के 700 दिग्गज तीरंदाज और ओलंपियन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

जी, तो आज फेसबुक पेज पर जब हम नजर दौड़ा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि आज का ये सफर थोड़ा सा कठिन हो गया है हमारे श्रोताओं के लिए, जबकि कठिन नहीं है। भाई बड़ा रुक रुक कर चल रहे हैं आप लोग। तो हमने तो आपसे वादा लिया था कि सुजिला सफर में आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे और दुख तकलीफें जो भी कुछ आएगा उसे महसूस करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन लगता है हमारे श्रोता थोड़ा सा थक गए हैं, है ना? थके नहीं, हमारे साथ चलते रहिए और अंततः हमें मंजिल मिलेगी जरूर। एक श्रोता ने लिखा है कि आज सभी को हमारा नमस्कार। आज आप कुछ अलग ही थीम लेकर आई हैं, राग रागिनी का तो हमें नहीं पता, हमारे जो गाने हमें याद आएंगे उन्हें हम लिख भेजेंगे। हाँ तो लिख भेजिए ना कि आपको ऐसे कौन से गीत याद आ रहे हैं जब आपने इन्हें जब जब सुना तो लगे आपको ऐसा लगा कि अरे ये गीत तो हमने पहले भी सुना था और ये गीत भी वैसा ही लग रहा है। तो इस तरह के भाव कई बार हमें लगता है। हम हालांकि शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता नहीं हो सकते, लेकिन एक श्रोता मात्र होते हुए भी हम ऐसा महसूस तो कर ही सकते हैं ना। तो उन दो गानों का जिक्र आपको करना है और जो शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता हैं हमारे श्रोता वो तो हमें बता सकते हैं कि उन्हें किस राग पर आधारित कौन सा गीत ज्यादा पसंद आता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि हमें राग कभी समझ ही नहीं आए और न ही कभी हमने समझने की कोशिश की, बस हमने गीतों से प्यार किया, फिर राग कोई भी हो, जो गीत हमें अच्छा लगा उसे गाया गुनगुनाया और आज तक गीतों के साथ हैं। कुछ गीतों से बहुत कुछ सीखा है और कुछ गीतों ने हमें सहारा भी दिया है। कुछ गीतों को सुनकर हमने बहुत अच्छे से काम भी किए और हाँ कुछ गीत उदास भी कर गए, पर फिर कुछ गीतों ने जीवन के सच्चे राज भी दिखाए जिनके साथ रहकर हमारा इतना सफर कट गया। बस आगे का सफर भी अच्छा बीते इन गीतों को गुनगुनाते हुए। कितनी बढ़िया बात लिखी है आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। और वही हम भी आपसे चाहते हैं कि एक श्रोता मात्र बनकर आप उन गीतों को याद कीजिए जो कभी आपको लगे होंगे कि ये गीत हमें एक जैसे लगे। बस इतना ही तो सोचना है कि दो गीत कौन से ऐसे दो गीत थे जो हमें एक जैसे महसूस हुए, है ना? वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का जो शब्द है वो एसडी बर्मन साहब की धुनों से प्रेरित होकर लग रहा है ठंडी हवाएं, और फिल्म के गीतों से मिलते जुलते सभी गीतों की धुन भी हम आज सुनने वाले हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हवाएं शब्द पर हिंदी फिल्मों में कई बेहतरीन और सदाबहार गीत बने हैं जो प्यार, उदासी और मौसम के अलग अलग रंगों को दर्शाते हैं। यहाँ हवाएं या हवा से जुड़े कुछ सबसे लोकप्रिय गानों की सूची भी आपने दी है।

और आपने हमारे हर शब्द पर बहुत कुछ लिखा है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हर शब्द पर अपनी राय हमें लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पुराने गीत सिर्फ कानों में नहीं गूंजते, वे यादों में महकते हैं और जब उन्हें सुनने वाले दिल से जुड़े हों तो हर धुन अपनी सी लगने लगती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब हम किसी गाने से दिल से जुड़ जाते हैं तो हर गीत हमें अपना सा लगने लगता है। चलिए, ये जो गीत अब हम आपको सुनवाने वाले हैं वो भी आपको अपना सा ही लगता है। याद आया?

हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज एक बात जरूर कहूंगा कि जब रागों की बात करते हैं, खासकर फिल्म संगीत में, तो शुद्ध राग पूरे गाने में शायद ही बजाया गया होता है, क्योंकि कभी कभी कहानी के भावों को विस्तृत रूप से उभारने के लिए स्वरों में फेरबदल भी की जाती है, यानी मिश्रित रागों की धुनें ज्यादा सुनाई देती हैं ताकि गीत अपने भावों को अच्छी तरह से दर्शकों के दिल तक पहुंचा सके। कहने का मतलब है कि रहे न रहे महका करेंगे गीत की शुरुआत पहाड़ी के स्वर के साथ हुई, लेकिन अंतरे में कहीं यमन राग नजर आ रहा है जो रोशन जी का सबसे मनपसंद राग था। आज रागों की अच्छी व्याख्या सभी मित्रों ने की है, धन्यवाद सभी मित्रों का। बिल्कुल, हम तो आपका भी धन्यवाद करेंगे कि आपने अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से कहा है, जो हमारे वो श्रोता इस बात को समझ पाएंगे जिन्हें शास्त्रीय रागों का ज्ञान नहीं है या उनमें उनका क्या कहना चाहिए, उत्साह नहीं है या शौक नहीं है या नहीं जानते वो उसके बारे में। बिल्कुल आपने सही कहा है कि कोई भी गीत जो है एक ही राग पर आधारित हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रागों को मिलाकर भी कई बार इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने बता भी दिया है कि फिल्म चांदनी चौक के बारे में आपने पूछा था कि गीतकार और संगीतकार कौन है, तो मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं रोशन साहब। बिल्कुल सही लिखा आपने, और ये गाना स्मृति विश्वास पर फिल्माया गया था। और आपने ये नहीं बताया कि आवाज किसकी थी, गायिका का नाम भी हमें बताइए तो आपका जवाब पूरा हो जाएगा। वहीं आप लिखते हैं कि दरअसल आज के सारे गाने एक राग पर नहीं है बल्कि एक मीटर पर आधारित है, और आपने किसी गाने का जिक्र भी इस सूची में शामिल किया है। आप लिखते हैं कि आपका पसंदीदा राग, यानी कि मेरा पसंदीदा राग है कलावती, बागेश्वरी, शंकरा, देस और मालकोस। अच्छा, ये राग आपको बेहद पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत कार्यक्रम सुनने को मिल रहा है, धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया कि आप इस सफर में हमारे साथ हैं, जो जैसा हमारे श्रोता कह रहे हैं कि थोड़ा सा कठिन है आज का ये सफर, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मन की आंखों से जब इस कार्यक्रम को महसूस करेंगे तो शायद आपको भी सफर अच्छा लगेगा। एक श्रोता लिखते हैं कि आज के इस कार्यक्रम का हमें इंतजार था और अब वक्त यूं ही बीत जाएगा। सुहाना मौसम है, शुभ दोपहर है, साथ ही आपका कार्यक्रम चल रहा है उनके साथ, यानी मेरे साथ मंदाकिनी दीदी के साथ। प्रस्तुति सुंदर, कर्ण मधुर, मनमोहक है और हमारे दिल को ठंडक पहुंचा रही है, ऐसा हम मानते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम हम सुनेंगे अंत तक, ऐसा हम वादा करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो हमारे यहाँ सचमुच ठंडी हवाएं चल रही हैं जो बादलों को उड़ाकर ले जा रही हैं। आइए सुनते हैं इसी क्रम में अगला गीत।

तो देखा है आपने संगीत का असर। हमारी एक श्रोता पूछ रही है कि भाई ये किस फिल्म का गीत है जो अभी आप सुनवा रही हैं? बिल्कुल रहे न रहे हम वाली गीत जैसी धुन का है, जैसा गीत है। हमने आपसे यही तो कहा ना कि कई बार जब हम बहुत ही गहराई से किसी गीत को सुनते हैं, हो सकता है हम उस मीटर को ना समझते हों कि ये गीत किस मीटर में गाया गया है, लेकिन जब हम उसे बहुत गहराई से सुनते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये तो उस गाने की धुन जैसा ही है जैसा कि अभी हमारी श्रोता ने पूछा। तो हम आपको बता दें, ये आशा भोसले की आवाज में फिल्म नरम गरम से हमने लिया था ये गीत। गुलजार साहब के बोल थे और राहुल देव बर्मन की धुन थी। हमारे श्रोता ने लिखा है कि दादा बर्मन ने 1951 में फिल्म नौजवान में एक गीत रचा था, ठंडी हवाएं लहरा के आई। लता मंगेशकर की आवाज थी, साहिर साहब के बोलते। इस गीत के माधुर्य से प्रभावित होकर दादा के समकालीन संगीतकार रोशन ने 1954 में फिल्म चांदनी चौक में गीत रचा, तेरा दिल कहाँ है। इसमें आवाज आशा भोसले की है। बिल्कुल सही कहा आपने, वो गायिका आशा भोसले हैं जिनकी आवाज हम सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी और रोशन की धुन तो थे ही, लेकिन दादा का गाना संगीतकार मदन मोहन को इतना भाया था कि उन्होंने 1964 में फिल्म आपकी परछाइयां फिल्म में इसका मुखड़ा इस्तेमाल किया। यही है तमन्ना, जिसका गीत अभी आपने सुनवाया था, तेरे घर के सामने मेरी जान जाए। कहानी यही खत्म नहीं हुई, संगीतकार रोशन साहब ने इसी धुन को फिर इस्तेमाल किया 1966 की फिल्म ममता में और लता मंगेशकर से गवाया मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गाना रहे ना रहे हम महका करेंगे। अब ये गीत इतनी प्रसिद्धि देखने के बाद पिताजी की आरडी बर्मन ने भी इस धुन को आधार बनाकर कुछ गीत बनाए और 1981 में आशा भोसले का गाया फिल्म नरम गरम का गाना हमें रास्तों की जरूरत नहीं, जो कि अभी आपने सुनवाया, इसी धुन का एक बार और इस्तेमाल किया गया। और 1983 में फिल्म अगर तुम न होते में भी इसी को फिर से उन्होंने दोहराया। बात और आगे बढ़ी और आपने इसी तरह से बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी गहराई से इस बात को रखा कि आज जो कार्यक्रम हम लेकर आए हैं वाकई इसी बात पर आधारित है कि किस तरह से गीतों को रचा गया और किस तरह से जब संगीत प्रेमी श्रोता उन्हें सुनते रहे तो उन्हें लगा कि अरे ये उस गाने की जैसा ही गाना है। बस यही आज के कार्यक्रम की असली थीम है। तो आइए बढ़ते हैं आगे।

वही जो हमारे श्रोता भी लिख रहे थे कि आगे अगर तुम न होते इस फिल्म में भी इसी बात को दोहराया गया, इसी मीटर को दोहराया गया। किशोर कुमार की आवाज है, गुलशन बावरा की रचना है और पंचम दा की धुन है।

किशोर कुमार की आवाज थी और फिल्म का नाम था अगर तुम न होते। और मैं हमारे उसी श्रोता की बात को आगे भी रखना चाहूंगी जिन्होंने पूरी तरह से अपनी बात रख दी है इस कार्यक्रम के लिए। यूं समझिए कि ये पूरा कार्यक्रम उनकी लिखी इस इबारत में आ गया है। बिल्कुल, वो लिखते हैं कि अगर तुम न होते 1983 की फिल्म थी और हमें और जीने की चाहत ने होती बात और आगे बढ़ी। और 1985 आर डी बर्मन ने इसी धुन पर बनाए एक और सुपरहिट गाना फिल्म सागर का लिया। और फिर आप लिखते हैं कि आर डी बर्मन के संगीत साम्राज्य के 9 रत्नों में से एक बासु चक्रवर्ती साहब ने भी इस धुन के नोटेशन पे थोड़ा हेर फेर कर 1992 की फिल्म नरगिस में जगजीत सिंह साहब से 2 गाने गवाए थे, कहा था जो तुमने और दूसरा था दोनों के दिल है। और दोनों को ध्यान से सुनने पर पता चलता है कि किस तरह से ये गाने आपस में मेल खाते हैं। मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने इतनी गहराई से अपनी बात हम तक पहुंचा दी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं, अच्छा अब हमारे सवालों के जवाब आप देने लग गए हैं। आप लिखते हैं कि एक प्यार का नगमा है, मेरी तमन्नाओं की तकरीर और तुम अगर मुझको ना चाहो, ये गीत आपको एक जैसे लगते हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, यहाँ पर हमें शास्त्रीय रागों पर आधारित एक जैसे गीत नहीं चुनने हैं, क्योंकि वही बात कि हर श्रोता शास्त्रीय रागों पर आधारित गीतों को समझने के लिए जरूरी नहीं कि उसके पास शास्त्रीय ज्ञान हो। हाँ, वो क्या महसूस करता है एक श्रोता के तौर पर, एक श्रोता के रूप में, वही काफी है। तो आपको कौन से गीत एक से लगते हैं वही हम जानना चाह रहे थे। एक श्रोता लिखते हैं कि ये किस फिल्म का गीत था, बिल्कुल रहे ना रहे हम जैसी धुन, अरे आपने अभी तो सुना था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय थोड़ा कठिन है पर आज गीत बहुत सुंदर बज रहे हैं। तो भाई सफर थोड़ा कठिन भी तो अच्छा लगता है ना, लेकिन आपको मेरे साथ अंत तक, हमारे साथ अंत तक चलना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रागों का ज्ञान हो ऐसा नहीं है, रागों का ज्ञान हमें बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो गाने शास्त्रीय तरीके से गाए जाते हैं वो बहुत पसंद है, जैसे कि झनक झनक तोरी बाजे पाई लिया। अच्छा, ये गीत आपको बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि चांदनी चौक 1954 की फिल्म, ये गाना भी नौजवान वाले मीटर से ही बंदा है, गीत शैलेंद्र, संगीत रोशन, स्वर आशा भोसले का था। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म चांदनी चौक के लिए मजरू सुल्तानपुरी ने गीत लिखा था, संगीतकार रोशन साहब थे, गीतकार शैलेंद्र नहीं थे भाई, मजरू साहब थे और संगीतकार रोशन थे और आवाज आशा भोसले की थी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे राग शिवरंजनी ज्यादा पसंद है। और एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने ऐसे कई गाने विविध भारती पर सुने जो एक जैसे हैं पर अभी याद नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं ना, वही काफी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गिटार के साथ पियानो का प्रिल्यूड राग पहाड़ी है चांदनी चौक, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक श्रोता लिखते हैं कि वाह वाह, एस डी बर्मन के नौजवान के गाने से जबरदस्त शुरुआत हुई और सभी की पसंद का सम्मान किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसा ही एक और गाना राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ सुनते हैं, आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम सागर। अब थोड़ा सफर हल्का हुआ ना, कठिन नहीं है ना।

हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि मैं शास्त्रीय रागों के मामले में अनाड़ी जरूर हूं, कोई बात नहीं, परंतु मैं सच कह रहा हूं कि महकते हुए अच्छे श्रोता की तरह सुरीला सफर प्रोग्राम में आप द्वारा सुनाए जा रहे अनमोल गीतों का मैं आनंद जरूर ले रहा हूं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इतनी समानता सब धुनों में, मजे की बात है, सबकी खुशबू अलग अलग है, कमाल है हमारे भारतीय संगीत को और सभी गाने बहुत ही बेहतरीन हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कुल मिलाकर कार्यक्रम का विषय वस्तु संग ताल मिलाकर श्रोतागण भी सक्रिय हैं और बराबर अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। कुछ श्रोताओं ने अपनी पसंद के गीत लिखे हैं कि वो उन्हें एक जैसा लगता है, आज मौसम की मस्ती में या दो बदन प्यार की आग में, इस तरह के गीत उन्हें पसंद आते हैं और वो एक जैसे उन्हें महसूस होते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीले सफर का विशेष आकर्षण है फिल्म ममता का अमर गीत रहे न रहे हम। संगीतकार रोशन ने इस गीत में राग पहाड़ी के स्वरों का अत्यंत सटीक, संतुलित और सुरुचिपूर्ण प्रयोग किया। यही कारण है कि यह गीत केवल अपनी मधुर धुन के लिए नहीं बल्कि राग पहाड़ी की आत्मा को सहजता से अभिव्यक्त करने के लिए हिंदी फिल्म संगीत की अमूल्य धरोहर बन गया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ए मेरे हमसफर ए मेरी जान ने से मिलता जुलता गाना है हसीना जाने जा जाने मन, ये गाने हमें सिमिलर लगते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज का ये कार्यक्रम हम सुन रहे हैं और गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में गजल तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से, और जॉय मुखर्जी की फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना का की गजल हमको तुम्हारे इश्क ने, ये हमें अच्छे लगते हैं और सिमिलर लगते हैं, एक जैसे लगते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हवाओं पर तो बहुत सारे गीत बने हैं और क्या ही अच्छा हो जब आप हवाओं पर कुछ कार्यक्रम पेश करें। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपने इबारत कुछ अलग तरह की दी है, इसलिए पहले मुझे घर की बनी हुई अदरक इलायची वाली चाय ऑफिस में पीनी होगी ताकि मेरे दिमाग का केमिकल लोचा एक्टिव हो जाए और मैं सही कमेंट्स लिख सकूं, क्योंकि रागों के मामले में मैं अनाड़ी हूं। मैं एक श्रोता ने लिखा है कि सौंदर्य वही है जहां प्रतिक्षण नवीनता हो। वास्तव में चित्रपट संगीत का क्षेत्र बहुत विशाल है क्योंकि इसकी रचना शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, लोक संगीत और पाश्चात्य संगीत के आधार पर होती रही है। संगीत निर्देशकों ने श्रोताओं की रुचि को ऐसे संगीत का सृजन कर छोड़ा है जो कहीं पर पूर्ण शास्त्रीय संगीत में रचे हैं, कुछ उपशास्त्रीय तो कुछ लोक संगीत में, और इनमें कहीं कहीं पर प्रयोग के तौर पर पार्श्व संगीत और गौण धुन का बेहतरीन संयोजन किया गया है। ध्यान रहे कि गौण धुन मुख्य धुन को दबाती नहीं है बल्कि एक नया संगीतमय रंग और गहराई जोड़कर उसे और आकर्षक बना देती है। कितनी सुंदर और शानदार बात आपने लिखी है। और अब इस कार्यक्रम का ये है आखिरी गीत। लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम प्यार का तराना। इस गीत के बारे में आपको मालूम था? हुँ?

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म प्यार का तराना का ये गीत सुना और आज का ये कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक हम पहुंच चुके हैं। आप समझ गए आज के इस कार्यक्रम का मर्म क्या था। जी हाँ, राग पहाड़ी से प्रभावित होकर अलग अलग संगीतकारों ने अपने अपने जो गीत रचे और उसमें अलग अलग शास्त्रीय रागों को पिरोकर एक ही मीटर में जो संगीत हम तक पहुंचाया, उसी को आज आप तक लाना हमारा उद्देश्य था। आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। अब आपको ये कठिन सफर आज का कठिन नहीं लगा होगा, मुझे लगता है कि अब सफर के आखिरी सोपान पर हम मिल रहे हैं और एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं कि हमने एक दूसरे का साथ दिया। और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी चाहती हैं, यानी सफर से इजाजत। फिर मिलूंगी, नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 36वीं कड़ी।

वंदे मातरम, इन शब्दों के प्रचार में तत्कालीन समाचार पत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। बंग भंग विरोधी आंदोलन के कारण पूरे देश में चल रही स्वाधीनता की लड़ाई वंदे मातरम शब्दों पर

रोजमर्रा की इस्तेमाल की वस्तुओं पर भी वंदे मातरम शब्द दिखने लगे। राष्ट्र ध्वज पर भी वंदे मातरम शब्द आ गए और आम लोगों के मन में स्वतंत्रता की ज्योति जलाने वाले समाचार पत्र भी इसमें पीछे

0: भारत की कई भाषाओं में वंदे मातरम नाम से समाचार पत्र या साप्ताहिक या मासिक पत्रिकाएं निकलने लगीं और इसकी शुरुआत स्वाभाविक रूप से बंगाल में हुई। बंगाल के विभाजन के विरोध में जनमत तैयार करने का सबसे महत्वपूर्ण काम स्वदेशी अखबारों ने किया। युगांतर, अमृत बाजार, संध्या जैसे पत्रों ने अत्यंत कड़े और उग्र शब्दों में सरकार की आलोचना करते हुए हो रहे दमन तथा अत्याचारों का विवरण आम जनता तक पहुंचाया। वंदे मातरम में दश प्रहरण धारिणी यानी 10 शस्त्र धारण करने वाली दुर्गा का वर्णन करते हुए भारत माता को वाणी विद्या दायिनी भी कहा गया है। उसी सरस्वती की लेखनी इस लड़ाई में एक शस्त्र की तरह उतरी।
1: अमृत बाजार के मोतीलाल घोष और युगांतर के बारिंद्र कुमार घोष उग्र विचारों वाले राष्ट्रभक्त थे। उनके समाचार पत्रों पर पाबंदी और मुकदमे की तलवार हमेशा लटकी रहती थी, फिर भी उन्होंने अपने शब्दों की धार कम नहीं की। वंदे मातरम शब्दों को उन्होंने लोकप्रिय तो किया ही, साथ ही उसके आशय को लोगों के मन में बसाकर उसे आचरण में लाने के लिए दिल से प्रयास भी किए। अप्रैल 1906 के युगांतर के अंक में संपादक लिखते हैं,
0: रक्त में समा चुके स्वतंत्रता के बीज को कोई भी शक्ति उखाड़ नहीं सकती। आज का धर्म है शहादत, कल का धर्म होगा विजय। शहादत बलिदान आवश्यक है ही, पर वो शेर के सामने बकरी द्वारा किया गया बलिदान ना हो।
1: और उसी 11 नवंबर 1906 के अंक में लिखते हैं,
0: जैसे को तैसा व्यवहार करो, घूसे का प्रहार हो तो लात मारो, तभी तुम्हारा पौरुष दिखेगा। मृत्यु से मत डरो, उस समय होठों पर वंदे मातरम का नारा ही जीवन संगीत बनने दो।
1: अप्रैल के संध्या के अंक में लिखा गया,
0: शांत रहना राष्ट्रीय आत्मा का अपमान है, अपमान का बदला प्रतिशोध लेने से ही होता है।
1: 26 मार्च 1907 को युगांतर के पत्रकार लिखते हैं,
0: धूल में पड़ी फटे चिथड़े पहनी हुई मां को देखो, उसके आंसू कौन पोछेगा? उसके अपमान का बदला लेने सबसे पहले कौन आगे आएगा? कर्तव्य का मार्ग स्पष्ट है, युद्ध निकट आ गया है।

0: है, विजय मिलेगी या स्वर्ग मिलेगा। हे वीरों, जल्दी करो, गति दोगुनी करो, मां के वैभव के लिए दान करने आगे आओ। गीता में कहा है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम।
1: संध्या के 15 मई के अंक में छपा ये लेख बंकिम चंद्र जी के आनंद मठ के एक संवाद से मिलता जुलता है। एक नवंबर के दैनिक हितवादी के अंक में लिखा गया,
0: युद्ध के नगाड़े बजने दो, माँ को रक्त स्नान कराओ, शत्रु का हृदय कांप उठेगा।
1: युगांतर के एक और अंक में प्रखर शब्दों में आह्वान किया गया था,
0: वंदे मातरम की घोषणा ने शत्रु का धैर्य और सामर्थ्य नष्ट कर दिया है। देखो, माँ के मुख पर विजय की मुस्कान है, वो हमें अभय दे रही है, दानवों का नाश करने के लिए वो तैयार हो गई है। देशभक्तों, तैयार हो जाओ।

0: वंदे मातरम ये अखबार तो नाम से ही खुलेआम क्रांतिकारी कार्य का मुखपत्र था। बंग भंग विरोधी आंदोलन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की तरह बिपिन चंद्र पाल भी एक महत्वपूर्ण नेता थे। ब्रह्म बांधव उपाध्याय के आग्रह पर बिपिन चंद्र पाल ने नए शुरू हो रहे वंदे मातरम साप्ताहिक पत्रिका का संपादक पद स्वीकार किया। उस समय अरविंद घोष बड़ौदा में सयाजी राव गायकवाड़ के यहाँ नौकरी कर रहे थे। अगस्त 1906 में वे भी कलकत्ता लौट आए और राजनीति में भाग लेने लगे। वंदे मातरम साप्ताहिक पत्रिका शुरू करने के लिए क्रांतिकारियों के नेता हरिदास हल्दर ने 500 रुपए दिए थे। राजा सुबोध चंद्र मलिक भी नियमित रूप से आर्थिक सहायता करते थे।
1: वंदे मातरम साप्ताहिक पत्रिका का आदर्श वाक्य था भारत भारतीयों के लिए। परंतु दो ही महीनों में बिपिन चंद्र पाल के वंदे मातरम के संचालकों से मतभेद हो गए और उसके बाद श्री अरविंद घोष संपादक बने। संध्या और युगांतर इन दो अखबारों के बाद वंदे मातरम यह पत्र शुरू हुआ और इन दो समाचार पत्रों की तरह ही वंदे मातरम ने भी समाज के मन में बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति पैदा की। श्री अरविंद संपादक बने और वंदे मातरम के लेखन में पैनापन आ गया, एक धार सी आ गई। सरकार की ऐसे अखबारों की सामग्री पर बहुत बारीकी से नजर रहती थी, इसलिए श्री अरविंद इतनी सावधानी से लेख लिखते थे कि कानूनी तौर पर सरकार उन्हें फंसा नहीं सकती थी। फिर भी उस सामग्री में राष्ट्रभक्ति और युवाओं के लिए आवाहन अत्यंत स्पष्ट शब्दों में किया जाता था। वंदे मातरम के इस मिले हुए अस्त्र का सटीक उपयोग कैसे करना है, ये श्री अरविंद ने इस समाचार पत्र के लेखों द्वारा जनता को दिखा दिया था। श्री अरविंद उस समय युवाओं के क्रांतिकारी नेता के रूप में प्रसिद्ध थे। बड़ौदा के समय में एक उत्तम प्रोफेसर के रूप में विख्यात थे। वे उत्तम कवि भी थे। केसरी के लेखों द्वारा समाज के मन पर हुए प्रभाव को वे जानते थे। तिलक की तरह ही अत्यंत विस्फोटक भाषा में उन्होंने वंदे मातरम में लेख लिखना शुरू किया। केसरी में तिलक के अग्र लेखों की तरह ही श्री अरविंद के वंदे मातरम के लेख भारतीय पत्रकारिता साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है। आनंद मठ का पहला अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने शुरू किया था, बाद में उनके भाई बारिंद्र कुमार घोष ने उसे पूरा किया। वंदे मातरम गीत के श्री अरविंद द्वारा किए गए दो अंग्रेजी अनुवाद प्रसिद्ध है। ये अनुवाद वंदे मातरम के सर्वोत्तम अनुवादों में गिने जाते हैं। Mother of mine, I bow to thee, rich with thy hurrying streams, bright with thy orchard gleams, cool with thy winds of delight, dark fields waving, mother of might, mother free.

0: glory of midnight dreams over thy branches and lordly streams. Clad in thy blossoming trees, Mother.
1: आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय मन में नहीं कोई भरम वेदों से भी वंदनीय है जय घोष वंदे मातरम वंदन है वंदे मातरम जय घोष वंदे मातरम
2: वंदे मातरम एक जय घोष इस श्रृंखला की ये थी 36वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
3: वंदे मातरम सुजला।
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
3: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2:00। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा।

0: मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई ये यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
1: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी।
2: And we've always had a good close relationship with India in playing hockey and the early Indian teams that came here 100 years ago.
1: 100 वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीणा, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
3: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा CRSV की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह के हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमरीकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमरीका तथा इसराइल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमरीका के अल अजराक सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमरीकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमेरिका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं

0: ही की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधीय उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण, एकीकरण, एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस, बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
1: Today, Bharat is marching confidently towards the vision set by our Honorable Prime Minister, a Viksit Bharat by 2047. National integration, cooperative federalism and unity in diversity remain as relevant as ever. Sardar Vallabhbhai Patel ji believed for a rich, diverse country like India, a strong center was essential to maintain unity and security.
0: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनावों का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पंजी से महेश सोपड़े।
0: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
3: 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम दर्ज की गई है और आने वाले अगर हम 2 दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल है। कल भी जो है ये पॉकेट्स मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहाँ पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
0: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
4: शिमला, सोलन व सिरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन

0: प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की संभावना जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर, जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की। इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का पहला गीत, लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम आशिक, गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत शंकर जयकिशन का।

और लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी को, फिल्म का नाम है आरती, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और धुन रोशन की।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को

0: के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: कार्यक्रम का अगला गीत हसरत जयपुरी का लिखा हुआ है, शंकर जयकिशन का संगीत है, आवाज मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम असली नकली। एक

फिल्म रंगोली का गीत सुनिए, इसे आवाज लता मंगेशकर ने दी है, शब्दकार शैलेंद्र हैं और संगीतकार शंकर जयकिशन हैं।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम संगीत सम्राट तानसेन, रचना शैलेंद्र की, आर्थुन एस एन त्रिपाठी की।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
3: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
4: जी।
3: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
2: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट।
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने धीमी प्रगति वाले क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाने को कहा। 14 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव पाठशाला तथा बीएलओ और बीएलए 2 की संयुक्त बैठक आयोजित होगी। बैठक में एएसडीडी सूची का सार्वजनिक वाचन भी किया जाएगा। उन्होंने मतदाताओं से इन्यूमरेशन फॉर्म शीघ्र भरकर जमा करने और आवश्यकता पड़ने पर एआई वीडियो ट्यूटोरियल की सहायता लेने की अपील की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि केवल पात्र भारतीय नागरिक ही फॉर्म भर सकते हैं, गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड उच्च न्यायालय ने टीजीटी नियुक्ति परीक्षा 2016 में विलंब से नियुक्त शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने समान वरिष्ठता, अपग्रेड वेतनमान, वार्षिक वेतन वृद्धि तथा अन्य सेवा लाभ देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति

0: दीपक रोशन की एकल पीठ ने अजय कुमार सहित 8 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 12 सप्ताह के भीतर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। उन्होंने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में हो रहे बदलावों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। डॉक्टर अंसारी ने विशेष रूप से रिम्स 2 अस्पताल के निर्माण कार्य की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। रिम्स 2 के शुरू होने से झारखंड के मरीजों को राज्य में ही आधुनिक और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने आज चाईबासा में कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में नक्सल विरोधी अभियान, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई। डीजीपी ने नक्सल प्रभावित और सीमावर्ती क्षेत्रों में अभियान तेज करने तथा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आम लोगों में सुरक्षा के प्रति विश्वास मजबूत करने और सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया। बैठक में कोल्हान प्रमंडल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सीआरपीएफ और एसटीएफ के अधिकारी भी उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची समाहरणालय में आम नागरिकों की सुविधा के लिए जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने 3 नई आधुनिक लिफ्टों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाहरणालय के ब्लॉक ए और ब्लॉक बी में संचालित लिफ्टों की कुल संख्या बढ़कर 8 हो गई है। नई लिफ्टें सेल्फ रेस्क्यू प्रणाली सहित अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं, जिससे बिजली बाधित होने की स्थिति में भी यात्रियों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित होगी। सिमडेगा जिले में ऐतिहासिक रथ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आयोजन समिति के सदस्यों के अनुसार रथ यात्रा शुरू होने के बाद 9 दिनों तक विभिन्न बस्तियों के लोग बारी बारी से भगवान को महाप्रसाद का भोग अर्पित करते हैं।
1: खास बात है कि 9 दिनों तक लगातार रथ यात्रा के बाद महाप्रसाद भोग लगाया जाता है और वितरण कराया जाता है, जिसमें 100 से 150 केजी भोग लगाया जाता है। और यह व्यवस्था गांव के लोग करते हैं, सबका बस्ती बांटा हुआ है, किस दिन किस बस्ती को करना है। किसी दिन ब्राह्मण बस्ती को है, तो राउत बस्ती को है, तो नीचे बस्ती को है।
0: दुमका जिले में मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना के तहत विद्युत आपूर्ति प्रमंडल ने 190 चिन्हित गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है, जिनमें से 133 गांवों का कार्य पूरा हो चुका है। अब तक 1025 घरों में मीटर लगाकर बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। सरायकेला खरसावां के गम्हरिया में सीआईएससीई जोनल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में करीब 800 छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन समिति के अनुसार खिलाड़ियों का चयन उनके प्रदर्शन के आधार पर अगले चरण के लिए किया जाएगा।
2: अभी सीआईएससी सिस्टम में है और दिल्ली का जो सीआईएससी 2 साल से हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं खेल में। खेलो इंडिया एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, उसी हिसाब से इस साल हर एक बच्चे से 100 रुपया करके लोग कलेक्ट किए हैं।
0: और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ವಿವಿತ್ ಭಾರತಿ.
1: ಸಖಿಯೋ ಕೆ ದಿಲ್ ಕಿ ಜುಬಾ. ಹೆಲೋ ಸಹೇಲಿ.

0: सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज होंगी कुछ बारिश से जुड़ी बातें, यादें और किस्से, क्योंकि बारिश का मौसम सबको लुभाता है। बारिश में भीगने का मन और नाचने का मन किसी न किसी का तो होता ही होगा। बारिश में बचपन बहुत याद आ जाता है, जब बचपन में शरारतें मस्ती क्या करते थे और बारिश के पानी के संग खेला करते थे, तो वो कुछ यादें भी आज ताज़ा होंगी। तो आज हम इसी पे करेंगे चर्चा, जिसमें नहीं लगेगा कोई खर्चा, है ना। तो मुझे सुनाई दे रही है फोन की घंटी और देखते हैं कि कौन है हमारी पहली कॉलर। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं बड़ौदा से बोल रही हूँ, सोनिया।
0: सोनिया जी, आप बड़ौदा से बोल रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सहेली, मैं आज आपने फोन लगाया, तो आपको कैसा लग रहा है?
1: अच्छा लग रहा है मेरे को
0: जी। और क्या करती हैं आप?
1: हमारे लॉन्ड्री है, बंगाली में है, हमारी लॉन्ड्री खुद की है
0: जी।
1: और यहाँ पे कोयली गाँव में हमारा मकान है
0: जी। जी जी,
1: अभी हमारे छोटा बाबू आया है, अभी सवा महीने का हुआ है।
0: अच्छा, अरे वाह, तब तो बहुत आप बिजी रहती होंगी इसमें।
1: अच्छा, 7 साल बाद में आया अभी।
0: अच्छा, चलिए, आपको अपने छोटे से बच्चे के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये बताइए सोनिया जी कि बारिश आपको कैसी लगती है, बारिश में आप क्या क्या और चीजें ध्यान रखती हैं, उस पर भी हमें कुछ बताइए।
1: बारिश अच्छी भी लगती है, थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है
0: जी। किस तरह का आप ध्यान रखती हैं बारिश में?
1: ये कि बच्चे गीले ना हो जाए, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, सर्दी जुकाम का, ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। अब बच्चा आ गया छोटा, उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ज्यादा
0: जी। और बारिश की कोई जुड़ी यादें बचपन में हो आपकी?
1: जी, बचपन में तो बहुत नहाते थे हम लोग, बारिश जैसे बारिश होती थी वैसे बहुत नहाते थे बाहर जाके।
0: अच्छा, सुनिए जी, आपको जो गाना पसंद है उसके बोल बताइए।
1: पापा में पापा बन गए, बाबू का नाम राघव है, राघव रखा है।
0: अच्छा जी, राघव जी को तो मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये वाला गीत।
2: पापा!

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं समा दीवान बोल रही हूँ, नर्मदापुरम जिला तहसील सुहागपुर से।
0: जी, आप क्षमा दीवान?
1: जी
0: जी क्षमा दीवान जी, आप बताइए कि आपको बारिश का मौसम कैसा लगता है?
1: मेरे को बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है।
0: बारिश में क्या खास करती हैं आप?
1: मैं वृक्षारोपण वगैरह करती हूँ, बम बीज बनाती हूँ, उनको बिखेरती हूँ जंगलों में जाके, नहरों पे जाके।
0: अच्छा,
1: हमारी एक संस्था है महिलाओं की
0: जी,
1: तो हम लोग सभी इकट्ठे होकर वहाँ पे ये बनाते हैं और जाते हैं ग्रुप में और सभी दूर उनको बिखेरते हैं।
0: अच्छा,
1: हम लोग इसमें करते हैं जैसे स्कूलों में जाके गरीब बच्चों की फीस वगैरह भरते हैं
0: जी,
1: उनको कॉपी पुस्तक दिलाते हैं
0: जी। तो ये तो आप बहुत अच्छा काम करती हैं।
1: हमारी संस्था ने एक स्कूल को गोद लिया है तो उसके बच्चों को हम लोग हर साल 15 अगस्त पर गिफ्ट वगैरह देते हैं
0: जी
1: और कार्यक्रम करवाते हैं हम लोगों से।
0: तो बच्चे तो बहुत खुश हो जाते होंगे कि जब उनको गिफ्ट मिलता है, और
1: बहुत खुशी होती है बच्चों की
0: जी। और बताइए और अपने बारे में कुछ।
1: जैसे महिलाओं के लिए सिलाई मशीन दिलवाते हैं जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं,
0: तो जिनको मान लीजिए सिलाई नहीं आती है तो उनको भी आप देती हैं?
1: नहीं, उनको हम जैसे हमारे ग्रुप में जो महिलाएं को आती है सिलाई उनसे प्रशिक्षण दिलवाते हैं पहले
0: जी जी जी,
1: फिर उसके बाद उनको सिलाई मशीन दिलवाते हैं
0: जी। तो फिर
1: नहीं आता है?
0: हाँ जी,
1: एक खूब गरीब परिवार की बेटी थी
0: जी,
1: उसका माँ बाप नहीं थे तो उसका विवाह हम लोग की संस्था ने करवाया
0: जी। जी बहुत अच्छी बात है ये तो। और बताइए क्या आज आप सुनना चाहेंगी?
1: मैं सुनना चाहती हूँ, मेरा फेवरेट गाना है आँखियों के झरों के से जो देखा एक बार।
0: क्या बात है, ये गाना ही बहुत अपने आप में बहुत सुंदर सा प्यारा सा गीत है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बस इसी तरह हमारे वेद भारती से जुड़ी रहिए। अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये वाला प्यारा सा गाना।

0: हेलो सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत करते हैं। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अनीता राजपूत दिल्ली से बोल रही हूँ।
0: अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए।
1: हमारे परिवार, हमारे पति को बहुत शौक है संगीत का
0: जी,
1: बहुत ज्यादा शौक है। और मेरे बेटे, बहू है और बेटी भी है, हम लोग 5 जन है।
0: क्या बात है। आपको बारिश का मौसम कितना पसंद है?
1: अच्छा लगता है, पानी गिरता है जब
0: जी,
1: टिमटिमा पानी गिरता है तो अच्छा लगता है।
0: क्या मन करता है कि बारिश में भीग ले, नहा ले?
1: जी, घूमने कहीं चले जाएं और क्या।
0: क्या बात है, हरी हरी वादियों के बीच में घूमने जाएं हैं?
1: जी जी।
0: बचपन की कोई आपकी कुछ यादें, दोस्तों के संग हो, सहेलियों के संग हो, कुछ यादें यादें तो साझा कीजिए।
1: जी जी, मैं 4 भाइयों में एक बहन हूँ
0: जी,
1: तो साथ में खेले हैं हम लोग
0: जी,
1: पानी में, बारिश में, वहाँ पर
0: जी
1: जी, तो अच्छा लगता था। पहले बचपन की बहुत यादें आती हैं हम लोगों को।
0: अब ये बताइए कि आपको कौन सा गाना आज सुनवाया जाए, आपकी पसंद का?
1: हमारे लिए विवाह फिल्म का कोई सी भी गाना अच्छा लगता है।
0: जी बिल्कुल, नीता जी आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का विवाह फिल्म का कोई भी गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं स्मिता बेन राजेंद्र कुमार शाह अहमदाबाद साबरमती से बोल रही हूँ।
0: स्मिता जी बोल रही हैं। तो स्मिता जी, बारिश का जो मौसम होता है, तो जब आप बच्ची थी तो आपको कैसा लगता था? क्या क्या आप खेल करती थी?
1: बारिश में भिगना और पानी में छप छप करना बहुत अच्छा लगता था पहले।
0: तो और बताइए अपने बारे में, आपको क्या शौक है, अपने दिन को कैसे बिताती हैं, ये इस बारे में कुछ बताइए।
1: मेरे को सबकी मदद करना अच्छा लगता है। मैं रिटायर्ड पोस्ट वुमेन हूँ
0: जी,
1: गुजरात की फर्स्ट लेडी पोस्ट वुमेन हूँ।
0: क्या बात है, ये तो बड़े गर्व की बात है।
1: अभी रिटायर्ड हो गए 8।

0: साल हो गए, 68 की हो गई मैं
1: जी। तो
0: हेल्प करना अच्छा लगता है मेरे को।
1: जैसे कि आप किस तरह की हेल्प करती हैं लोगों की?
0: कोई बीमार हो गया तो मैं दवा बहुत सत्कार करती हूँ।
1: तो ये बहुत नेक काम है, बहुत कम लोग इस बारे में सोचते हैं। जो सोचते हैं हम तो कहते हैं बहुत पुण्य का काम करते हैं वो। तो और स्मिता जी ये बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
0: मैं जी लखनऊ और पीत पाई का गाना है।
1: जी बहुत सुंदर सा गीत आपने चुना है, दिल अपना और प्रीत पराई। तो चलिए स्मिता जी आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, कौन बोल रही है और कहाँ से बोल रही है, अपना नाम बताइए।
1: हेलो सहेली, मैं सरिता पांडे बोरीवली से बोल रही हूँ।
0: सरिता जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आप क्या करती हैं, घर में क्या क्या शौक हैं आपके?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं घर पे ही रहती हूँ
0: जी।
1: मैं सिलाई बुनाई कढ़ाई सब कुछ करती हूँ थोड़ा बहुत।
0: और सरिता जी, हम आज बात करने वाले हैं बारिश के विषय में कि बारिश आपको कितनी अच्छी लगती है और बारिश में आप क्या क्या सावधानियां रखती हैं।
1: बारिश मुझे बहुत अच्छी लगती है, बारिश में घर गंदा ना हो ये सब साफ सुथरा रखता है।
0: जी बिल्कुल। और बारिश में आपने कभी बचपन में अपनी दोस्तों के साथ मस्ती करी?
1: हाँ, हम लोग बारिश में गाँव में रहते थे, मेरा गाँव सुल्तानपुर है
0: जी।
1: हम लोग गाँव में बारिश में खेलते थे।
0: अच्छा,
1: खो खो खेलते थे।
0: ये बताइए कि जब कभी घर में कुछ खत्म हो जाता है रसोई में, तो फिर अचानक आप क्या सोचती हैं कि मेहमान के लिए हम क्या बना दें फटाफट?
1: जो कुछ रहता है उसको मिक्स करके हम लोग उसका कुछ ना कुछ अच्छा डिश बना के मेहमान को देते हैं।
0: क्या बात है, यानी कुछ ना कुछ तो बनी जाता है ना, गृहिणी
1: बनी जाता है
0: जी।
1: हाँ।
0: जैसे पकौड़ी बना ली, सूजी का हलवा बना
1: हाँ,
0: लिया है ना,
1: कुछ भी बना। हाँ।
0: और मान लीजिए सूजी कम है तब
1: इसमें थोड़ा बेसन या बेसन मिक्स कर देते हैं, वो भी अच्छा बनता है हलवा।
0: बिल्कुल सही बात आपने बताई, ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि अगर सूजी कम है तो उसमें बेसन मिला दिया। और आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: मेरी फैमिली बड़ी है, जेठ जेठानी
0: जी,
1: बहू पोते
0: जी
1: पोती।
0: क्या बात है, भरा पूरा परिवार है, यानी कि बहुत
1: हाँ।
0: अच्छा लगता है आपको, है ना? तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सरिता जी। तो आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: हम आशीर्वाद फिल्म का बारिश का गाना।
0: ठीक है सरिता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल हुआ यूं पल में खत्म और आपकी दोस्त मंजरी वर्मा फिर आपसे बातें करने आ गई है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहां से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली
0: जी, स्वागत
1: है। नमस्ते मंजरी जी।
0: अरे वाह, आपको तो मेरा नाम याद है।
1: अरे आपकी आवाज से पहचान गए मंजरी जी।
0: और बताइए आपने

0: बारे में कुछ बताइए हमें।
1: एक हाउस वाइफ हूँ, साधारण सी गृहिणी।
0: प्रतिमा जी, आप हाउस वाइफ है, साधारण सी गृहिणी आपने कहा है, तो हम ये कहेंगे कि आप साधारण सी नहीं हैं, आप बहुत खास हैं। और हर गृहिणी जो होती है वो पूरे परिवार की एक धुरी होती है, सबको लेकर चलती है, सबके लिए सेवा करती है, सबका ध्यान रखती है, ख्याल रखती है, और सुबह उठती है और रात में ही वो पूरे घर के काम निपटा के सोती है। तो ये बहुत पुण्य का काम है, सेवा भाव है। मेरे दिल में बहुत सम्मान है गृहणियों के लिए, जो भी गृहणियां हैं उनके लिए बहुत सम्मान है। और बताइए कि ये मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे बारिश का मौसम होता है ना, तो वो जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो आपको कैसा लगता है?
1: मेरे को बारिश का मौसम बहुत पसंद है, इतना सुंदर हरियाली चारों तरफ हो जाती है
0: जी।
1: ऐसा लगता है जैसे पेड़ पूरे नहा लिए पानी से,
0: हाँ।
1: भरी हो जाते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है बारिश का मौसम
0: जी। और
1: उसके तो गाने भी इतने अच्छे अच्छे आते हैं उस समय रेडियो में कि वो सुन के भी मन खुश हो जाता है।
0: क्या बात है। और बारिश में बचपन में कोई शरारतें आपने सखियों के साथ या भाई बहनों के साथ करी हो या मस्ती करी हो, कुछ ऐसे किस्से याद है आपको
1: बारिश में? देखिए पहले की तो बात बताएं तो हम लोग को जैसे ही बारिश देखते थे तो स्कूल जाने में छुट्टी मिल जाएगी, इस बात की बड़ी खुशी होती थी। और अब की जो बारिशें हैं उसमें ये खुशी होती है कि चलो अब ये लोग ऑफिस नहीं जाए।
0: सही बात है। और वो अगर
1: घर में पकौड़े और सब्जी ये सब बनेंगे।
0: क्या बात है, यानी कि आप गृहिणी बिल्कुल अच्छी वाली गृहिणी है कि सबका इंतजार कर रही है कि पानी हो और ये लोग नहीं जाए तो हम पकौड़े वगैरह बनाए। बढ़िया बढ़िया है ना। तो बड़ा अच्छा लगा सुनकर के। प्रतिमा जी ये बताइए कि आप रेडियो सुनती हैं?
1: हाँ, तो बस से रात तक।
0: क्या बात है। तो सबसे अच्छे प्रोग्राम आपको विविध भारती के क्या लगते हैं?
1: सबसे अच्छे प्रोग्राम वंदनवार
0: जी जी,
1: उसमें जो चिंतन आता है वो बहुत अच्छा लगता है।
0: क्या बात
1: है। रामचरितमानस में जो पहले उसकी समीक्षा करते हैं, बताते हैं स्टोरी
0: जी,
1: वो मुझे बहुत अच्छी लगती है।
0: क्या बात है।
1: क्योंकि वो सुनो तो उसके बाद वो रामायण सुनने में बड़ा समझ में आ जाता है।
0: सही बात है, उसकी विस्तार व्याख्या सुन के बहुत अच्छा लगता है ना।
1: बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और बाकी प्रोग्राम सभी अच्छे हैं विविध भारती के
0: जी।
1: और मैं सब सुनती रहती हूँ।
0: क्या बात है। तो चलिए बहुत अच्छा लगा। प्रतिमा जी आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: एक्चुअली ये पसंद मेरी मम्मी की है
0: जी।
1: स्वप्न झरे फूल से नीत चुभे शूल से, वो है ना, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे।
0: ठीक ठीक ठीक। तो प्रतिमा जी आपको आज हम सुनवाते हैं आपकी मम्मी की पसंद का ये प्यारा सा गीत।
2: स्वप्न झरे फूल से

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं अंजू श्रीवास्तव बोल रही हूँ भोपाल से।
0: अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे
0: जी,
1: अभी जाके लगा है आपका कॉल।
0: देखिए, कोशिश रंग लाई ना, आपने कॉल लगाने की कोशिश करी और कॉल आपकी लग गई। ये बताइए अंजू जी कि भोपाल का कैसा मौसम है इस समय?
1: भोपाल का मौसम बहुत ही सुहाना है
0: जी,
1: चारों तरफ हरियाली, पानी और मतलब आंखों को बिल्कुल सुकून देने वाला मौसम है।
0: क्या बात है, यानी कि बारिश वहाँ पर भी खूब हो रही है?
1: बहुत हो रही है। हम
0: तो बारिश से जुड़ी हुई कुछ यादें हो तो आप साझा कीजिए।
1: बहुत बहुत यादें हैं बारिश से जुड़ी हुई, स्कूल टाइम की, कॉलेज टाइम की। हम लोग वहाँ पास में, हम एक्चुअली मेरा मायका होशंगाबाद में है
0: जी,
1: तो मैं वहाँ पे हम लोग स्कूल के बाद वहाँ से चले जाते थे, पहाड़ियाँ एक पास में जगह थी
0: जी,
1: तो वहाँ पे अपनी अपनी गाड़ी से हम लोग जाते थे फ्रेंड सर्किल
0: जी
1: पूरा, और वहाँ जाके पिकनिक जैसा बहुत बार मनाए हम लोग। बहुत अच्छा मौसम वहाँ का भी रहता था, पूरी हरियाली और पहाड़ियाँ।
0: दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाना एक अपना ही अलग आनंद का समय होता है, तो कुछ शरारतें भी होती होंगी आपस में दोस्तों में?
1: हाँ जी हाँ, बहुत बातें होती रहती।
0: और ये बताइए कि बारिश के समय में क्या क्या आप सावधानियां रखती हैं, जैसे बाहर जा रही हैं, घर से निकल रही हैं, तो क्या खास बातें ध्यान रखती हैं?
1: बस ये साफ सफाई का और अच्छी जगह खाना, मेन तो साफ सफाई का है बहुत ध्यान रखने का।
0: इस समय आप क्या शौक रखती हैं?
1: मतलब मुझे फ्रेंडशिप बहुत पसंद है और अभी आज भी वो शौक बरकरार है, मतलब बचपन की फ्रेंड अभी तक हम लोग सब ग्रुप है
0: जी,
1: तो हर बार मिलते हैं, 3-4 साल में मिलते हैं, पर मिलते हैं।
0: क्या
1: कभी
0: बात,
1: कभी कुछ लोगों से 1 साल में मिलना हो जाता है।
0: बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आज भी आप अपनी दोस्तों के साथ जुड़ी हुई हैं।
1: मेरा एक तो म्यूजिक का मुझे थोड़ा सा शौक है
0: जी,
1: तो ये म्यूजिक वाले प्रोग्राम में बहुत देखती हूँ
0: जी,
1: मतलब पूरी फैमिली को हमारे म्यूजिक का शौक है। मेरा गेम्स था
0: जी,
1: पहला स्कूल टाइम में, कॉलेज तक मैंने मतलब 5th क्लास से मैंने जो बास्केटबॉल खेला है तो स्टेट लेवल तक खेला हुआ है मेरा, नेशनल में तक पहुंच गई थी मैं
0: जी जी जी,
1: तो बहुत खेला है, मतलब मेरा पैशन था, वो पैशन था कि मुझे बास्केटबॉल ही खेलना है, और वो ही मैंने एक ही गेम चुना और उसको लास्ट तक
0: जी
1: स्कूल पूरा, कॉलेज पूरा वो खेला।
0: क्या बात है, यानी गेम्स के प्रति, वो भी बास्केटबॉल खेलने में तो बड़ा मजा आता है, और कभी जब बारिश होती तो ये गेम तो और भी अच्छा लगता होगा खेलने
1: और
0: में।
1: भी अच्छा लगता।
0: तो अंजू जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आज मैं टिप टिप बरसा पानी सुनना पसंद करूंगी।
0: तो अंजू जी, आज आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना, लीजिए सुनिए ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं सरिता बोल रही हूँ, पुणे से।
0: सरिता जी, आपका हेलो सहेली कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैंने बचपन से आज तक रेडियो ही सुने हैं।
0: क्या बात है, तो रेडियो आप सुबह से लेकर रात तक सुनती हैं, तो आपको कौन से प्रोग्राम रेडियो के अच्छे लगते हैं?
1: सब सारे प्रोग्राम हमको बहुत पसंद है।
0: क्या बात है,
1: माला हुआ, फिर छाया गीत, हेलो फरमाइश, हेलो सहेली
0: जी। तो ये बताइए कि और आपको क्या पसंद है?
1: हमको जितना कला है सब पसंद है, चाहे ड्राइंग हो, गीत संगीत, नृत्य, सिनेमा देखना, ये सब, रेडियो सुनना, सब चीज पसंद है।
0: तो आप ड्राइंग भी
1: कला के फैन है?
0: कला के फैन है, क्या बात है जी। कला तो बहुत अनंत होती है, उसकी कोई सीमा नहीं, हर चीज में कला आपको नजर आती होगी, है ना?
1: हाँ हाँ
0: जी। तो ये बताइए, बारिश जब होती है तो उसमें आपको कैसा लगता है?
1: अरे बारिश का तो पूछो मत। हम तो, मैंने बचपन में बारिश जब होती थी तो उसका बैठ के और फोटो बनाते थे अपने से।
0: अच्छा।
1: बिना सीखे ही बहुत बनाते थे, और बहुत हमको बारिश में भीगना, नहाना, सब बहुत पसंद।
0: क्या बात है,
1: बारिश देखना भी बहुत पसंद है। ऐसे अभी बालकोनी में बैठ के बारिश देखना, अभी तो पुणे में बहुत बारिश हो रही है
0: जी जी
1: तो
0: जी,
1: मेरे बालकोनी से दिखता है।
0: और बताइए, और क्या शौक है आपके?
1: और बस सबको खिलाना, सबसे बातें करना, अच्छी अच्छी बातें करना
0: जी,
1: यही सब मेरा शौक है।
0: क्या चीज खिलाना पसंद करती है? आपको क्या पसंद है, क्या बनाए?
1: नहीं नहीं खाना हम अच्छा बनाते हैं, और तरह तरह जो भी बनाते हैं वो किसी को बुला के खिलाना,
0: क्या बात है,
1: ये सब मेरा शौक है कि भाई आए मेरे यहाँ, खाए, बैठे, गप्पे मारे।
0: जी, आज बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: तिलक मंदिर फिल्म का
0: जी,
1: हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे।
0: ठीक है, तो हम आपको सुनवाते हैं तिलक मंदिर का ये प्यारा संगीत।
1: प्यार में सारा आलम हमको बैठे।
0: क्या बात है, और यही सारा प्यार हमारा भी है आप सभी के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं रतिका तिवारी हूँ, सूरत गुजरात से।
0: रसिका जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है?
1: मुझे फिल्मों के गीत सुनना बहुत पसंद है और सखी सहेली
0: जी
1: और रेडियो सुनना, और उसमें खास तौर पे सखी सहेली मैं रोज सुनती हूँ।
0: क्या बात है। अच्छा ये बताइए रसिका जी कि बारिश का मौसम कैसा लगता है?
1: हाँ, बारिश का मौसम अच्छा लगता है और आजकल तो बहुत बारिश हो ही रही है।
0: अच्छा क्या सावधानियां रखती हैं कि जब बारिश का मौसम होता है तो परिवार में बच्चे हैं, भाई बहन हैं, सबके लिए क्या आप खास ध्यान रखती हैं कि कैसे वो ठीक रहें, स्वस्थ रहें?
1: हाँ, बस ये है कि बारिश में ज्यादा बाहर, जब तक जरूरी नहीं हो तो बाहर ना निकलें
0: जी,
1: घर पे रहें
0: जी। और बारिश में क्या क्या चीजें बनाती हैं?
1: बारिश में हम लोग पकौड़े खाना पसंद करते हैं।
0: क्या बात है, बारिश आती ही सबको पकौड़े याद आ जाते हैं ना। मान लीजिए रसिका जी मेहमान आ गए और रसोई में आप गई और कुछ चीजें कम पड़ गई, तो फिर क्या आप जुगाड़ लगाती हैं कि क्या चीज हम डाल दें और मिला दें जिससे अच्छी चीज बन जाए?
1: वैसे तो मैं ज्यादातर बेसन की बनाती हूँ पकौड़े
0: जी,
1: लेकिन अगर बेसन मान लीजिए कम है तो आटा मिला दिया, उसमें सूजी मिला दी।
0: अच्छा,
1: तो और आलू प्याज ये सब कुछ सब्जी और डाल ली।
0: बहुत अच्छा लगा। और परिवार में आपके कौन कौन हैं?
1: परिवार में मेरी सास
0: जी,
1: नंदे
0: जी,
1: और मेरे पति, एक बेटा।
0: भरा पूरा परिवार है, बहुत अच्छा लगा सुनकर के। और बारिश का मौसम है तो आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आज?
1: बारिश के मौसम में मुझे आज बरखा बहार आई,
0: परख मूवी का आपको ये गीत सुनना है तो बहुत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, तो हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: छलो सहेली में सखियों ने की अपने मन की दिल की बातें, और बातों के साथ साथ उन्होंने अपने पसंद के गाने भी बताए जो सबने सुने और सबको बहुत अच्छा लगा होगा। और अब इस कार्यक्रम से विदा लेने की घड़ी करीब आ गई है, तो जाने से पहले ये आपको जानकारी नोट करा दे, हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक। कॉल करने के लिए नंबर्स जो है वो आप नोट कीजिए, फोन नंबर है 4002466 2, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी हिंदी में 4002466 2, एसटीडी है 022। अब दूसरा नंबर भी नोट कीजिए 2867 0288, एसटीडी कोड है 022, यानी 2867 0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022। अगले मंगलवार हेलो सहेली में कीजिएगा फोन, नई सहेली से दिलों की बातें कीजिएगा, क्योंकि कोशिश करने से ही सफलता मिलती है। प्रत्येक शुक्रवार हेलो सहेली दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है। अपने फोन में लगा लीजिए टाइमर अलार्म, जिसे याद रहेगा। जिन सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो मन मायूस ना करें, वो अगली बार कॉल जरूर लगाएं। जिनकी कॉल आज लगी है वो 2 महीने तक कॉल नहीं करें। सखा भाइयों से विनती है वे कॉल नहीं लगाएं, क्योंकि व्यस्त होंगी टेलीफोन की लाइनें। अपनी बातों को देते हैं विराम, हेलो सहेली कार्यक्रम से लेते हैं विदा। आपने आज का सफर तय किया मंजरी वर्मा के साथ, हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नायक और भावना सिंदल ने, और संपादन सहयोग दिया नम्रता टिकोड़े ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने धीमी प्रगति वाले क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाने को कहा। 14 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव पाठशाला तथा बीएलओ और बीएलए 2 की संयुक्त बैठक आयोजित होगी। बैठक में एएसडीडी सूची का सार्वजनिक वाचन भी किया जाएगा। उन्होंने मतदाताओं से इन्यूमरेशन फॉर्म जल्द भरकर जमा करने और आवश्यकता पड़ने पर एआई वीडियो ट्यूटोरियल की सहायता लेने की भी अपील की। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने रांची के झिरी स्थित बायोगैस प्लांट और लिगेसी वेस्ट बायोमाइनिंग परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यों की प्रगति पर संतोष जताते हुए अधिकारियों को समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह परियोजना कचरा प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रांची समाहरणालय में आम नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए जिला दंडाधिकारी से उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने 3 नई आधुनिक लिफ्टों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाहरणालय के ब्लॉक ए और ब्लॉक बी में संचालित लिफ्टों की कुल संख्या बढ़कर 8 हो गई है। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के गुरतुर गांव में ओझागुड़ी के शक में 65 वर्षीय केशव राम की हत्या कर दी गई। पुलिस ने घटना के बाद मौके से आरोपी महिला सुनीता कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। और सरायकेला खरसावां के गम्हरिया में सीआईएससीई जोनल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में करीब 800 छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

तरह उदास यश रोज वहाँ बैठा करता। एक दिन स्टेशन पर उसकी मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई। वो अपने हाथों से बने अचार और पापड़ बेचने दूसरे शहर जा रही थी। बातचीत में पता चला कि उनके पति का कई वर्ष पहले निधन हो गया था और उन्होंने अकेले ही अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उन्होंने यश को अपने हाथों से बने अचार भी चखाए और ये भी बताया कि किस प्रकार उन्होंने जीवन की हर कठिनाई का सामना करते हुए ये छोटा सा व्यवसाय खड़ा किया था। उनकी बातों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर एक अलग ही संतोष झलक रहा था। यश ये समझ ही नहीं पा रहा था कि जीवन में इतनी परेशानियां झेलने के बाद भी कोई इतना प्रसन्न और उत्साही कैसे रह सकता है। वो इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि तभी ट्रेन प्लेटफार्म पर आने की उद्घोषणा हुई। यश ने सोचा कि उनका भारी सामान होगा, इसलिए उनकी सहायता कर दे। जैसे ही वो सामान उठाने के लिए झुका, महिला ने मुस्कुराते हुए उसे रोक दिया और बोली, बेटा ये तो मेरा रोज का काम है, मैं इसे स्वयं संभाल लूंगी। ये सुनकर यश स्वयं को रोक न सका। उसने संकोच भरे स्वर में पूछा, माताजी, यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं। जीवन में इतनी कठिनाइयां आने के बाद भी आप इतनी प्रसन्न कैसे रहती हैं? क्या कभी आपका मन हार मान लेने का नहीं हुआ? यश के प्रश्न को सुनकर पहले तो महिला मुस्कुराई। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई और चेहरे पर वर्षों के संघर्ष से उपजा आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जीवन में मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं। अगर मैं हार मान जाती तो मेरे बच्चों का भविष्य भी हार मान जाता, इसलिए मैं चलती रही और एक बात मैंने जीवन में

अपनी बात कहकर उन्होंने यश के सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और वो मुस्कुराते हुए अपनी ट्रेन की ओर बढ़ गईं। लेकिन उनके शब्द यश के मन में देर तक गूंजते रहे। जब तक हम चलते रहते हैं, जिंदगी भी चलती रहती है। अगले दिन यश फिर उसी रेलवे स्टेशन की बेंच पर आकर बैठ गया। तभी एक मनमोहक धुन ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वो धुन स्टेशन के प्रथम श्रेणी विश्राम गृह से आ रही थी। सुरों में ऐसी मिठास थी कि कुछ क्षणों के लिए यश अपनी चिंताएं भूल गया और उस संगीत के स्रोत की ओर बढ़ चला। उनकी मधुर आवाज सुनकर अनेक यात्री मंत्रमुग्ध हो गए थे और आसपास खड़े थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कुछ क्षणों के लिए पूरे स्टेशन का वातावरण ही बदल गया हो। यात्रियों की भागदौड़, ट्रेनों का शोर और प्लेटफॉर्म की चहल पहल सब उस संगीत के सामने फीके पड़ गए थे।

जब संगीत थमा तब तक यश उस विश्राम गृह के कमरे के बाहर पहुंच चुका था। वो दरवाजे पर खड़ा होकर उस कलाकार को निहार रहा था। तभी भीतर से आवाज आई, कौन हूँ भाई, क्या मेरा खाना आ गया? अचानक आवाज सुनकर यश थोड़ा घबरा गया और वहाँ से जाने के लिए मुड़ा। तभी उस व्यक्ति ने फिर बड़े स्नेह से कहा, अरे रुकिए, क्या मेरा खाना आ गया है? तभी यश को एहसास हुआ कि वो व्यक्ति दृष्टिहीन था। ये जानकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा और उसे देखता रहा। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए फिर पूछा, खाना आ गया? उसकी खुशबू तो नहीं आ रही। इस बार यश ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं, मैं खाना लेकर नहीं आया हूँ, दरअसल आपके धुन सुनकर यहाँ चला आया था, मैं तो बस एक राहगीर हूँ। ये सुनकर वह व्यक्ति कुछ क्षण शांत रहा, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। अच्छा, तो संगीत तुम्हें यहाँ तक खींच लाया, उसने हंसते हुए कहा। फिर उसने यश को पास बैठने का इशारा किया, हाँ बैठो, मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ, मेरे साथ ही भोजन लेने गए हैं, उनके आने में भी थोड़ा समय लगेगा, तब तक तुम ही मेरा साथ दे दो। यश बिना कुछ कहे उनके पास चुपचाप बैठ गया। उसे पता नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में होने वाली ये बातचीत उसके जीवन को एक नया दृष्टिकोण देने वाली थी। बातचीत के दौरान यश को महसूस हुआ कि सामने बैठा व्यक्ति न केवल एक असाधारण संगीतकार था, बल्कि एक अत्यंत विनम्र और सकारात्मक सोच वाला इंसान भी था। उसकी बातों में आत्मीयता थी और चेहरे पर एक अजीब सा संतोष। यश के मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था कि इतना प्रतिभाशाली और अच्छा इंसान होने के बावजूद भगवान ने इसके साथ ऐसा क्यों किया होगा? ये प्रश्न उसके मन में लगातार उठता रहा। अंततः वो स्वयं को रोक न सका और संकोच भरे स्वर में बोला, यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? संगीतकार हल्के से मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, पूछो बेटा। यश कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आप इतने अच्छे इंसान हैं, इतना सुंदर संगीत रचते हैं, फिर भी भगवान ने आपसे आपकी दृष्टि छीन ली, क्या आपको कभी अपनी किस्मत से शिकायत नहीं हुई? यश के प्रश्न के बाद कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। संगीतकार के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी, मानो उसने ये प्रश्न पहले भी अनेक बार सुना हो। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, पहले बहुत होती थी, मैं हमेशा यही सोचता था कि भगवान ने मुझसे मेरी आँखें क्यों छीन ली, लेकिन एक दिन मेरे गुरु ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपसे क्या छिपा है, आँखों के बिना

पहले ये बताओ कि जिन चीजों को तुम सबसे आवश्यक मानते हो, क्या वे अभी भी तुम्हारे पास हैं? मैंने बिना सोचे उत्तर दिया, हाँ वे सब तो मेरे पास ही हैं गुरुजी। ये सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तो फिर शुरुआत कर दो। कुछ पलों तक तो मैं उनकी बात का अर्थ समझ ही नहीं पाया, लेकिन जब मैंने अपने ही दिए हुए उत्तरों के बारे में सोचना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी दृष्टि चली गई थी, पर मेरे वाद्य यंत्र मेरे पास थे, मेरी आवाज मेरे पास थी और वर्षों की साधना से प्राप्त संगीत की शिक्षा भी मेरे पास थी। मैं उस एक चीज के शोक में डूबा हुआ था जो मुझसे छिन गई थी और उन अनमोल चीजों को भूल चुका था जो अभी भी मेरे पास थी। ये कहते हुए संगीतकार के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। उसने आगे कहा, उसी दिन मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी कमी को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। ये कहकर उसने हारमोनियम पर एक मधुर सुर छेड़ा और कहा, जब मैंने अपनी कमी के बजाय अपनी क्षमता पर ध्यान देना शुरू किया, तभी मेरी जिंदगी बदल गई और वो गाने लगा।

तभी उनके साथी भोजन लेकर कमरे में आ गए। बातचीत का सिलसिला वहीं थम गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मेरा इंतजार अब खत्म हुआ। फिर उन्होंने अपने साथी का परिचय करवाया और कहा, बेटा जीवन में खुश रहने का सबसे आसान तरीका है, जो नहीं है उसकी चिंता कम करो और जो है उसका सदुपयोग अधिक करो। यश जाने लगा तो उनके साथी ने मुस्कुराते हुए बताया, शायद आपको पता नहीं है लेकिन आप जिनसे बात कर रहे हैं वे देश के एक प्रतिष्ठित संगीत महाविद्यालय के प्राचार्य।

चार्य हैं। इनके शिष्यों में कई प्रसिद्ध गायक और संगीतकार शामिल हैं। ये सुनकर यश कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। जिस व्यक्ति ने अपनी दृष्टि खो दी थी, उसने हार मानने की बजाय अपने जीवन को इस तरह संवारा था कि आज वो न जाने कितने लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। यश वहाँ से लौट तो आया, लेकिन उस सज्जन के शब्द और उनकी मुस्कान देर तक उसके मन में गूंजती रही। उसके मन में विचारों का एक नया द्वार खुल चुका था। उसे लगने लगा कि शायद समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उन्हें अपनी सोच में बना लेते हैं। विचार बदल रहे थे, लेकिन निराशा ने अब भी यश का साथ नहीं छोड़ा था। एक सप्ताह बाद स्टेशन की उसी बेंच पर एक सैनिक आकर यश के बगल में बैठ गया। यश के चेहरे पर छाई निराशा को देखकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है जवान, इतने हताश क्यों दिखाई दे रहे हो? यश ने अपनी नौकरी छूटने से लेकर भविष्य की चिंताओं तक सारी बातें उसे बता दी। सैनिक शांत भाव से उसकी बातें सुनता रहा, फिर वो बस मुस्कुरा दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। यश ने जब ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो हाथ असली नहीं बल्कि कृत्रिम था। वो सैनिक लगभग उसी की उम्र का था। सैनिक ने धीमे स्वर में कहा, ये हाथ मैंने सीमा पर एक युद्ध के दौरान खो दिया था। कुछ पल रुककर वो आगे बोला, उस दिन दुश्मन लगातार हमला कर रहा था, मेरे कई साथी घायल हो चुके थे। मैंने अपना एक हाथ खो दिया और असहाय होकर अपने साथियों को संघर्ष करते हुए देख रहा था। उस समय मुझे लग रहा था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी आंखों में उस युद्ध की यादें छलकने लगी थीं। तभी मेरी नज़र अपने एक साथी पर पड़ी। उसने अपनी एक आंख खो दी थी, खून बह रहा था, फिर भी उसने कपड़े से घाव बांधा और अपनी दूसरी आंख से दुश्मन पर नजर टिकाए रखा। वो लगातार जवाबी हमला कर रहा था। सैनिक ने गहरी सांस ली और कहा, उस जांबाज को देखकर मेरे मन में एक विचार आया, यदि वो एक आंख खोने के बाद भी लड़ सकता है तो मेरे पास तो अभी एक हाथ बाकी है। मैंने बिना देर किए दूसरे हाथ से बंदूक उठाई। उसे संभालना आसान नहीं था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। किसी तरह उसे सहारा देकर निशाना साधा और दुश्मन पर हमला शुरू कर दिया।

0: उस पल की बात याद करते हुए सैनिक के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान उभर आई। उस दिन हमने केवल युद्ध नहीं जीता था बल्कि अपनी परिस्थितियों के सामने हार ना मानने का संकल्प भी जीत लिया था। फिर उसने यश की ओर देखते हुए कहा, जवान, इंसान तब नहीं हारता जब वो कुछ खो देता है, वो तब हारता है जब जो बचा है उसकी कीमत भूल जाता है। मैंने एक हाथ खोया था लेकिन दूसरा हाथ अभी भी मेरे साथ था। तुम्हारी नौकरी चली गई है, तुम्हारी योग्यता और हिम्मत नहीं। उस रात यश बहुत देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हो चुका था कि वो अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान बना चुका था। सैनिक ने युद्ध में अपना एक हाथ गवाया था, अपने कई साथियों को खोया था, फिर भी उनके चेहरे पर संतोष था। उन माताजी ने भी जीवन की असंख्य कठिनाइयों का सामना किया था, फिर भी उनके चेहरे की मुस्कान फीकी नहीं पड़ी थी और उस दृष्टिहीन संगीतकार ने अपनी आँखों की रोशनी खो दी थी, फिर भी उसके जीवन में आशा और उसके सुरों में उत्साह का प्रकाश आज भी विद्यमान था। इन तीनों
1: यह आकाशवाणी का सहभाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 और 16 सेकंड हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: माँ पिता भगवान का वो अनमोल उपहार हैं जिनका प्रेम और आशीर्वाद जीवन को हर कठिनाई से पार करा देता है।
0: बहुत बहुत सुंदर विचार, इसके लिए आपका धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 18 तारीख को चिड़िया की बच्ची कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए NCERT उमंग के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
0: और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी।
2: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर।
0: और गांव बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा और वर्मा परिवार के सभी सदस्य।
2: और कुतुबपुर तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा।
0: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों को भेजने के लिए। और आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आपकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में कुछ और नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ों की। जैसा कि हमने इस सप्ताह की पहली कड़ी में सुना था, पेड़ सिर्फ पेड़ ही नहीं, वे इस धरती के सबसे प्राचीन जीव हैं। उनके आने के बाद ही दूसरा जीव जगत शुरू हो सका, क्योंकि वे वर्षा, भोजन, औषधि और श्वसन के मुख्य स्रोत हैं।
0: श्रोताओं, क्या आप जानना चाहेंगे कि पेड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई?

0: तो चलिए आपको बताते हैं।
1: पेड़ों की उत्पत्ति पृथ्वी के इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। कहते हैं लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पेड़ नहीं थे, केवल सूक्ष्म जीव थे। कालांतर में समुद्रों में शैवाल जैसे जीव विकसित हुए जो तैरते थे और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते थे।
0: धीरे धीरे ये शैवाल जैसे जीव समुद्र से निकलकर भूमि पर आए। इन्हीं से प्रथम स्थलीय पौधों का विकास हुआ।
1: प्रश्न ये है कि इन पौधों ने क्यों बढ़ना शुरू किया। इसका कारण ये था कि जीने के लिए वे अधिक सूर्य का प्रकाश पा सकें और दूसरे पौधों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी क्रम में ये पौधे बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गए। ध्यान दें तो इस प्रक्रिया में विकासवाद का सिद्धांत काम करता है, यानी सफलतम ही टिका रहता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी पेड़ों की उत्पत्ति की वैज्ञानिक कथा। अब जरा ध्यान दें, गर्मी का मौसम है, राह चलते चलते जब बहुत गर्मी लगती है तो आप किसी पेड़ की छाया में शरण लेते हैं
1: जी।
0: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ठीक उस समय जब आप उसकी छाया का आनंद ले रहे होते हैं, उस समय वो पेड़ क्या क्या कर रहा होता है?
1: ध्यान से सुनिए मित्रों, उस समय वो हवा को ठंडा कर रहा होता है, क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा एक प्रकार से प्राकृतिक एसी की तरह काम कर रहा होता है।
0: श्रोताओ, ठीक उस समय वो हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित कर रहा होता है जो हमारे लिए हानिकारक है।
1: उस समय वो शोर को कम कर रहा होता है, क्योंकि पत्तियां और शाखाएं प्रदूषित वायु को ही नहीं शोर को भी अवशोषित करती हैं। तभी तो कहते हैं पेड़ों के नीचे या जंगलों में एक शांति का आभास होता है।
0: श्रोताओ, एक बात और, ठीक उस समय वो पेड़ वर्षा और जल संरक्षण में योगदान दे रहा होता है, जिससे भविष्य में हमें भूजल और वर्षा का जल लगातार मिलता रहे।
1: उस समय वो हजारों कीटों, कवकों, पक्षियों और जीवों को आश्रय देकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहा होता है।
0: सचमुच श्रोताओ, एक पेड़ हमारे और दूसरों के लिए मौन रहकर भी इतनी सेवा कर रहा होता है। वह बेशक मौन है, लेकिन मानो कहता है मैं तुम्हारे लिए हवा को शुद्ध कर रहा हूँ, धरती को ठंडा करके जलवायु परिवर्तन की गति को यथासंभव रोक रहा हूँ,
1: स्वयं धूप सहकर तुम्हें छाया दे रहा हूँ, वर्षा लाने में सहायता कर रहा हूँ, मिट्टी के कटाव को रोक रहा हूँ। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे और अन्य पेड़ों को जीवित रहने दो। हम सभी पेड़ धरती के फेफड़े हैं।
0: जी हाँ श्रोताओ, अब जब किसी पेड़ को देखें तो इन बातों को जरूर स्मरण कीजिएगा। पेड़ वास्तव में हमारे लिए प्रकृति के मौन लेकिन सबसे बहुमूल्य उपहार हैं।
1: तो ये थी पेड़ों के बारे में हमारी रोचक जानकारी इस सप्ताह की श्रृंखला में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो उस समय वो क्या क्या कर रहा होता है? कोई 2 या 3 कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो उस समय क्या क्या कर रहा होता है? कोई 2 या 3 कारण बताइए।
0: 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जो एक गीत के रूप में देश को समर्पित है। शीर्षक है प्यारा भारत।
1: ये कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक सितार की एक नज्म पर आधारित है। श्रोताओ, ये खूबसूरत नज्म आपको ले जाएगी भारत के गगनचुम्बी पर्वतों, कलकल करती नदियों, लहलहाती फसलों के मैदानों, घाटियों और फलों के बगीचों में।
0: तो आइए करते हैं भारत भ्रमण इस नज्म के साथ। शीर्षक है भारत प्यारा।

0: भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे गीत भारत प्यारा,
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मौर्य कालीन पाटलिपुत्र।
1: इस कार्यक्रम में मौर्य साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेषकर ये उल्लेख किया गया है कि उनके शासन काल में जनतांत्रिक मूल्य कितने ऊंचे थे, खुफिया व्यवस्था कैसी थी, और चीन के यात्रियों ने उनकी कीर्ति की कैसी प्रशंसा की।

मेरा नाम है पाटलिपुत्र। अब लोग मुझे बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास बहुत पुराना है। इस बात को 2000 वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं जब एक छोटा सा गांव था मैं। नाम था पाटली। यहां वहां कुछ खेत, कुछ झोपड़ियां, पास में कल कल करती गंगा की निर्मल धारा। एक घाट था गंगा पार जाने के लिए। वहां एक दो नौकाएं खड़ी रहती। उसी घाट से महात्मा बुद्ध ने नदी पार की थी वैशाली जाने के लिए।

0: महात्मा बुद्ध का नाम मशहूर हो रहा था।
1: उन दिनों मगध पर मौर्यों का राज्य था, जो बिहार के पटना और गया जिलों में फैला हुआ था। मगध की सीमाओं को बढ़ाया बिंबिसार ने। एक बार वहां भयानक आग लग गई। इसके बाद बिंबिसार ने पास ही में नई राजधानी राजगृह का निर्माण करवाया।

0: राजा बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा अजात शत्रु। महात्मा बुद्ध के सम्मान में अजात शत्रु ने घोषणा करवाई,
1: सुने सुने सुने, सभी ग्रामवासी सुने, सम्राट अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध के सम्मान में ये घोषणा की है।

दुर्ग का मुख्य द्वार गौतम द्वार और गंगा नदी का घाट गौतम घाट कहलाएगा।

महात्मा बुद्ध ने पाटली के विषय में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पाटली एक प्रमुख नगर और व्यापार का बड़ा केंद्र बन जाएगा। जब बुद्ध पाटली ग्राम आए थे तो वे 79 वर्ष के थे। इसके एक वर्ष बाद ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

0: अजात शत्रु ने वैशाली को जीत लिया। उसके बाद पाटली दुर्ग का महत्व और भी बढ़ गया।
1: अजात शत्रु के बाद राजा बना उसका पुत्र उदाई भद्र। उदाई भद्र अपने पिता अजात शत्रु की तरह विजेता तो न था, पर उसे नए नए राजमहल बनवाने का शौक था। उदाई भद्र ने ही मुझे मगध की राजधानी बनाया।

0: वो 16 वर्षों तक मगध का राजा बना रहा।
1: समय बदला, मगध का सिंहासन महापद्म नंद के पास चला गया। इसी ने नंद वंश चलाया था।
0: पर मैं खुश नहीं था। मैं एक बड़ा नगर जरूर बन गया था। मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था, लेकिन मगध की जनता दुखी थी। महापद्म नंद के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे।

0: अरे अरे भागो भागो अरे भाग जाओ अरे भाग अरे अरे सिपाही आ गए अरे अरे भाग जाओ अरे भाग अरे भाग अरे भाग अरे भाग अरे भाग अरे भाग अरे भाग अरे भाग अरे भाग अरे भाग अरे भाग अरे भाग अरे भाग अरे भाग अरे भाग अरे भाग अरे भाग अरे भाग अरे भाग अरे
1: महापद्म नंद के बाद मगध का राजा बना धन नंद। बड़ी सेना, अपार धन संपत्ति थी उसके पास, मगर था वो बहुत ही घमंडी। धन नंद ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी जो उसके पतन का कारण बनी। उसने तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य का भरे दरबार में अपमान कर दिया। अपमानित कौटिल्य ने प्रतिज्ञा की

0: अत्याचारी धननंद, मैं कौटिल्य आज प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सर्वनाश करूंगा, सर्वनाश।
1: और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को चुना। मौर्य कुल का वो वीर युवक अपना देश छोड़कर भटक रहा था। कौटिल्य ने उसे तक्षशिला में शिक्षा दी।

0: और उधर भारत से बहुत दूर मैसिडोनिया में साहसी सिकंदर अपने पिता फिलिप के बाद राजा बना था। समय था ईसा से 336 वर्ष पूर्व। सिकंदर का सपना था विश्व विजेता बनने का। उसकी आंधी सारी दुनिया पर छा जाने के लिए उमड़ने लगी।
1: सिकंदर।

सिकंदर बढ़ता गया, उसकी आंधी बढ़ती गई। 11 वर्षों में हर तरफ अपनी जीत के डंके बजाता हुआ सिकंदर भारत की सीमा पर आ खड़ा हुआ। छोटे छोटे राज्यों में बटा था तब का भारत। लोग वीर थे लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। अभिसार के राजकुमार आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया, लेकिन राजा पुरु ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया।

पोरू की पराजय हुई। सिकंदर जीत तो गया, परंतु अब उसके सैनिक थक गए थे। उनका मनोबल गिरता जा रहा था। उन्हें कदम कदम पर कड़ी टक्कर मिल रही थी। आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो रही थी।

0: गजब हो गया। सेना आगे बढ़ने से मना कर रही है वीर से गद्दार।
1: क्या आगे बढ़ने से मना कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैसिडोनिया का विश्व विजयी बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा?
2: वीर सिकंदर, आप स्वयं सैनिकों से बात क्यों नहीं करते?
1: मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ, सारे सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करो। ये सिकंदर का आदेश है।
3: जी सम्राट, ऐसा ही होगा।
2: ऐसा ही होगा।
3: ऐसा ही होगा।
1: मेरे वीर सैनिकों, क्या मैंने ठीक सुना है कि मैसिडोनिया की बहादुर सेना ने अब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है और वो वापस लौटना चाहती है? मैं पूछता हूं, ऐसा क्यों? जिस काम के लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, जिस काम में हमने अपने बहादुर साथियों की जान की बाजी तक लगा दी, आज उसी काम से तुम सब भागना चाहते हो? याद है तुम्हें, हमारी आंधी के सामने बड़े बड़े सम्राट तक उखड़ गए और आज चारों ओर सिकंदर का डंका बज रहा है। चुप क्यों हो? मुझे जवाब चाहिए। क्या हमारी तलवारों की धार खत्म हो गई है? क्या हमारी भुजाएं खोखली हो गई है? ये व्यास नदी देख रहे हो ना, इस नदी को पार करते ही
3: हम वापस लौटना चाहते हैं।
1: सुनो मेरे वीरों, व्यास नदी को पार करते ही हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा।
3: हमें कुछ नहीं चाहिए, हम
0: मैसिडोनिया चलो, वापस चलो सम्राट।
1: सुनो मेरे वीरों, सुनो मेरे वीरों,
3: करो साथियों। अरे कुछ तो सबर करो साथियों, जब जहां तक आ ही गए हैं तो आगे क्यों ना बढ़ा जाए? अगर मैसिडोनिया वापस चले भी गए तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम सम्राट की बात नहीं डाल सकते।
4: हम

0: पकड़ो दुष्टों को, भाग मेरे भाई, पकड़ो पकड़ो इन्हें।
1: तुम सब सैनिकों के घेरे में हो। इस निर्जन खंडहर में आधी रात को क्या षड्यंत्र हो रहा था हम जान चुके हैं।
2: महाराज चंद्रगुप्त आप?
1: हाँ
3: महाराज, देखिए आचार्य कौटिल्य भी आ रहे हैं।
1: आचार्य प्रणाम, आप इस वक्त यहाँ?
4: आश्चर्य न करो चंद्र, मगध को असंख्य नेत्रों वाली गुप्तचर व्यवस्था चाहिए। मैं सावधान हूँ।
1: धन्य हो आचार्य, मौर्य साम्राज्य को आपकी बहुत आवश्यकता है।
5: धन्य हो आचार्य,
6: धन्य हो आचार्य,
7: धन्य हो
6: आचार्य,
7: धन्य हो।
8: मगध सुखी था। चंद्रगुप्त प्रजा की भलाई करने वाला न्यायप्रिय शासक था, मगर एक बार फिर संकट सिकंदर के सेनापति निकेटर सेल्यूकस के रूप में बढ़ा आ रहा था।

0: सेल्यूकस भारत को जीतने का सपना लेकर आ रहा था, लेकिन अब भारत बदल चुका था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया।
1: बेचारा सेल्यूकस भारत को जीतने आया था, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। वो 4 वर्ष तक दरबार में रहा।

0: समय बदला। चंद्रगुप्त के शासन के 25 वर्ष बाद बिंदुसार राजा बना और फिर बारी आई उसके मझले बेटे अशोक मौर्य की। अशोक बहुत वीर था। उसने उज्जैनी और तक्षशिला के विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत कर दिया और फिर हुआ कलिंग युद्ध।
1: ये क्या कर डाला मैंने, इतना रक्तपात सिर्फ विजय प्राप्त करने के लिए? नहीं नहीं, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अशोक मौर्य प्रतिज्ञा करता हूं, कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, अब कभी युद्ध नहीं करूंगा।
0: कलिंग ने अशोक का जीवन बदल डाला। उसकी रुचि अहिंसा में, बौद्ध धर्म में हो गई।

उसने बौद्ध विहार बनवाए, शिलालेख खुदवाए। अगर अशोक का स्तंभ लेख न होता तो हम कभी न जान पाते कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तभी श्रीलंका के राजा तिस

का मैत्री संदेश आया तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसी तरह बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा एशिया के और हिस्सों में भी हुआ। अशोक के बाद मौर्य वंश सशक्त नेतृत्व के अभाव में बिखरता चला गया। सम्राट आए, सम्राट गए, किसी को ऐश्वर्य मिला, किसी की सत्ता छीनी, पर मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। समय के बहाव को देखते हुए और भारत की गोद में अपना स्थान बनाए हुए,

0: मौर्यकालीन पाटलिपुत्र अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं इसी कार्यक्रम के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय हितधारक परामर्श 2026 के दूसरे दिन औद्योगिक संवर्धन और निवेश पर उच्च स्तरीय मंथन हुआ, जिसमें झारखंड को देश के अग्रणी औद्योगिक निवेश गंतव्य के रूप में विकसित करने की रणनीति पर चर्चा की गई। उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों के अनुकूल वातावरण, विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना और कुशल मानव संसाधन के माध्यम से औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड की पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने आज चाईबासा में कोल्हान क्षेत्र में नक्सली विरोधी अभियान, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रगति पर चिंता जताई है। पार्टी नेताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर मतदाता सूची अद्यतन करने के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त समय देने की मांग की है। बोकारो जिले में नष्ट की जाने वाली करीब 1500 पेटी एक्सपायर्ड बियर को अवैध रूप से बाजार में बेचे जाने के मामले में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि विभाग ने डिपो मैनेजर और क्लर्क को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। और गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र में आज भीखी तालाब में डूबने से 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई, जबकि 3 अन्य महिलाएं घायल हो गईं। खोरी महुआ के एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार ने बताया कि तालाब में डूब रही एक युवती को बचाने के प्रयास में यह हादसा हुआ। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पर। पेश है कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अगला गाना लीजिए, सुनिए, आवाज लता मंगेशकर की है, फिल्म का नाम है बहारों के सपने, संगीत आर डी बर्मन साहब का है।

आप सुन रहे हैं इवनिंग मेलोडी। लीजिए सुनिए, फिल्म का नाम है दिल का रिश्ता। आवाजें हैं अलका याग्निक और साथी की संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

इसी गीत के साथ इवनिंग मेलोडी कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:29 हुए हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम खेती बाड़ी।

कार्यक्रम खेती बारी सुने वाले सभी ग्रामीण श्रोता के ममता के दने से प्रणाम जोहार और स्वागत है नी कार्यक्रम में। तो आज हम ढेर सारा बात करबे कार्यक्रम में। उम्मीद कर रही है कि सभी ग्रामीण श्रोता कार्यक्रम के साथ जुड़ गए होती। तो सबसे पहले हम बता दी कि हम कार्यक्रम में काका लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करबे कि आज 10 जुलाई है, राष्ट्रीय मत्स्य दिवस, एकर बारे में हम बात करबे और ओकर साथे साथे जल संरक्षण में महिला के का भूमिका है एकर बारे में बात करबे। साथ में देखा कि प्लास्टिक के इस्तेमाल हम नींद के लगी कितना नुकसानदेह है, तो एकरा से हम नींद किस तरह से बचिए एकर बारे में भी हम बात करबे। तो सबसे पहले हम बताइए कि आज 10 जुलाई है ग्रामीण श्रोता और इस ई दिन देखा राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के रूप में मनावल जा है। और ई दिन देखा कि मत्स्य किसान, मछुआरा, जलीय कृषि से जे जुड़ल हथी पेशेवर किसान ओकर बहुमूल्य योगदान हो गेलो, कड़ा मेहनत और देश के पोषण और आर्थिक सुरक्षा में जो उनकर भूमिका है एकर में ई दिन सम्मानित करल जा है। और देखा कि 10 जुलाई 1957 के ही दिन पहला बार कृत्रिम प्रजनन तकनीक के माध्यम से करावल गेले हले मछली के सफल प्रजनन। यही ऐतिहासिक उपलब्धि के याद रखे खातिर आज मत्स्य पालन के क्षेत्र में बढ़ावा देवे खातिर और हर साल ई दिवस मनावल जा है। तो देखा हम आगे भी बात करबे ग्रामीण श्रोता। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, तो सुने ही जरूरी संदेश और साथे साथे एगो प्यारा सा गीत।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

तो देखा अभी सुन लिए हमने इतने बेस गीत। उम्मीद करे कि सभी ग्रामीण श्रोता के गीत बहुत पसंद पड़ ले हो और साथ ही साथ जरूरी संदेश भी। और गीत सुनने से पहले हम बात करे ले कि भाई आज 10 जुलाई है और राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के रूप में आज के दिन मनावल जा है, ताकि सभी मत्स्य किसान, मछुआरा और जो भी जलीय कृषि के कार्य कर रहे थे है, वो जो हमेशा से उनका मेहनत योगदान देश के पोषण और आर्थिक सुरक्षा लगी उनकर भूमिका के सम्मानित करल जा है इस दिन में। और देखा कि ये दिन जो है एकरा में मत्स्य पालन के क्षेत्र में बढ़ावा देना एक मुख्य उद्देश्य है और यही लगी ये हर साल मनावल जा है। और एक साथ साथ देखा कि अभी जैसा कि मौसम में बदलाव आ गए है श्रोता अगन, और थोड़ा अभी बारिश हो रहे हैं और जैसन कि भाई ऐसन में हमनी के जल संरक्षण पर भी ध्यान देवे के चाहिए। और जल संरक्षण में देखा कि महिला सबके बहुत बड़ा भूमिका रहो है, और देखा कि जल संरक्षण और प्रबंधन में महिला के एकदम बढ़ चढ़ के भाग ले थी। ओकरा में देखा सबसे पहले परिवार के सबसे ज्यादा परिवार में महिला सभी पानी के उपयोग करे हती, चाहे वो पानी लाना हो, खाना पकाना हो, चाहे साफ सफाई के बात हो। और ओकरे में देखा कि पानी के खपत तो करबे करती, साथ ही ये भी ध्यान दे हती कि भाई की तरह से हम

0: इन पानी के बर्बाद करके न काम करिए। जैसे बर्तन धोना हो, जैसे ब्रश करना हो, तो एक हमने भी देखा कि नल बंद रख कर ही करे के चाहिए, जब जरूरत हो तब नल के खोले के चाहिए। और घर में अगर आरओ है लगल हो तो ओकर से जो जो खारा पानी और वेस्ट पानी निकलो है ओकरा से पौधा के सिंचाई जो किचन गार्डन है ओकरा में और साफ सफाई के उपयोग करो हथी। और लीक जो नल हो जाए है जो टप टप पानी बूंद गिरते रहे ओकरा से भी पानी बहुत बर्बाद हो है, तो इन नल की मरम्मत करा के देखा कि महिला सब हजारों लीटर पानी के बचत कर सको हथी। और देखा जल संचयन करके जैसे वर्षा के पानी के जमा करके मतलब भारत के लाखों महिला देखा कि किसी बागवानी के काम में भी लगल हती। और ई वर्षा जल के संचय मतलब बचा के खेत में नमी बनाए रखे और तालाब और कुआं के जल के साफ रखे में भी बहुत अहम भूमिका निभावो हती। और इस तरह से महिला जो है अपन सूझबूझ से पानी के संरक्षण कर सही जगह पर इस्तेमाल करो हथी। और जैसे कि किसान अभी के जो समय है ग्रामीण श्रोता वो आ गेले है धान के खेती के तैयारी करे में। अब बहुत किसान सब तो देखा मोरी बुन ले ले हथी, कोई कोई बुनना शुरू कर ले हथी। तो अभी जैसा धान के मौसम है खेती धान के खेती के तैयारी में किसान सब जुट गेले होती, तो एक संदर्भ में आज हम एगो भेंटवार्ता लेके आए हैं जो एक सफल किसान है अजीत बिन्हा जो श्री विधि से धान की खेती कर रहल थी है। तो कहे ने बिना कुबेर कहले हम नीन ई जानकारी सुनिए ओकर बाद हम नीन बात करबे। आज हम आए हुए हैं ग्राम जमवारी अजीत जी जो एकदम सफल किसान है और यहाँ श्री विधि से धान की खेती कर रहे हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि किस तरह से ये खेती कर रहे हैं। तो आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है अजीत जी, साथ ही नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: और सबसे पहले भी बताइए कि आप कितने दिनों से खेती का काम कर रहे हैं?
1: मैं ये 25 साल से धान का खेती कर रहा हूँ
0: जी,
1: लेकिन श्री विधि का अभी जो
0: शुरुआत
1: कर 5-6 साल से मैं लगातार करते आ रहा हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है कि श्री विधि से आप कहाँ धान की खेती कर रहे हैं। तो कितने जमीन में आप ये धान की खेती कर रहे हैं?
1: अभी हम 2.5 एकड़ खेत में हाँ। धान का श्री विधि का खेती कर रहा हूँ।
0: हाँ, तो ये श्री विधि का कैसे आपको लगा कि हमको श्री विधि के तरीके से धान की खेती करनी चाहिए?
1: मैं KGBK संस्था में जुड़ा हुआ था, तो सर लोग बताए कि श्री विधि से खेती कीजिएगा तो कम पूंजी कम समय और कम मजदूरी से खेती हो सकता है और उपज अच्छा होगी
0: जी।
1: तो मैं उस ट्रेनिंग में देखा और घूमा सुना, ट्रेनिंग किया, उसके बाद मैं अपना जमीन पर श्री विधि का खेती
0: जी 2.5 एकड़ में धान की खेती कर रहे हैं। तो ये जो धान की जो बीज है जो आप घर में ही रखे हैं कि बाहर से लाते हैं? उपचारित
1: उपचारित बीज बाहर से ही किलो वाला पैकेट वाला खरीदता हूँ
0: जी। तो इससे ये होता है उपचारित में कि आपका पूरा का पूरा निकल जाता
1: जी, 100% धान का जन्म समय जाता है।
0: और ये धान की खेती करने से पहले मिट्टी की जाँच करवाते हैं?
1: जी हाँ करवाते हैं।
0: तो मिट्टी की जाँच के लिए कहाँ लेके जाते हैं मिट्टी की जांच के लिए?
1: हम लोग का ब्लॉक स्तरीय आते हैं रोजगार सेवक लोग, ग्राम सेवक लोग, उन्हीं लोग को मैं दे देता हूँ।
0: तो ये मिट्टी की जांच आप करवाते हैं तो कहाँ लेके जाते हैं?
1: वो ब्लॉक भेज देते हैं।
0: अच्छा, फिर वो जांच करके बता देते हैं?
1: फिर बता देता है कि
0: क्या चीज का कमी,
1: क्या कमी है, पोटास कमी, चूना कमी है या तो नाइट्रोजन का कमी है, वो सब बता देते हैं।
0: ओ, तो उस हिसाब से आप अपना उसका तैयारी कर लेते हैं
1: जी।
0: और उसमें तैयारी करते हैं तो किस तरह से मिट्टी रहती है धान की खेती के लिए? मतलब भुरभुरा करना होता है कि सिर्फ जुताई कर लेते हैं?
1: नहीं, हम लोग तो धान गीला करके ही मतलब उसको तैयार करते हैं।
0: हाँ।
1: पूरा उसमें कंपोस्ट खाद वगैरह दे करके
0: हाँ।
1: पूरा जुताई करते हैं।
0: अच्छा।
1: घास उस पूरा एकदम मिट्टी में मिला देते हैं, पूरा बढ़िया से तेल टाइप से बनता है, तब उसमें धान की रोपाई करते हैं
0: जी। और इसमें

0: में जो धान लगाने से पहले वो जो मौरी तैयार होता है, तो वो कब पहले तैयार करते हैं?
1: हाँ, पहले तैयार कर लेते हैं वो। जैसे हम लोग पौशाला करते हैं,
0: हाँ,
1: तो वो 15 से 20 दिन में हम लोग तैयार कर देते हैं।
0: तो वो 15-20 दिन में तैयार हो जाता है। और फिर वो लगाने लायक कितना बड़ा हो जाना चाहिए धान, वो मौरी?
1: मौरी कम से कम 8 इंच लंबाई होना चाहिए, वो श्री विधि के लिए बहुत उचित होती है।
0: तो फिर उसको आप कितनी दूरी में वो धान को लगाते हैं? और धान की खेती में तो आप देखते हैं कि पानी पूरा भरा रहना चाहिए, जिसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है
1: जी।
0: तो कितनी दूरी में धान लगाते हैं?
1: कतार पे कतार हम लोग 8 इंच की दूरी पर लगाते हैं।
0: ये खुद से लगाते हैं कि वो ट्रैक्टर से लगाते?
1: खुद से, खुद एकदम रस्सी बनाते हैं हम लोग और उसमें एकदम लाइनिंग पर लगाते हैं, 8 इंच की दूरी पर लगाते हैं
0: जी।
1: सब सब तरफ से, चारों तरफ से दूरी 8 इंच का ही हम लोग छोड़ते हैं।
0: तो और ये श्री विधि के द्वारा इसमें और क्या अलग से कुछ करना पड़ता है कि जिससे आपको ज़्यादा समय का बचत और ये भी हो जाता है
1: जी? साधारण खेती में बहुत ज़्यादा लेबर लगता है
0: जी,
1: लेकिन श्री विधि में वो आपका सीमित दूरी पर लगती है, तो बहुत जल्दी बहुत कम मजदूरी में लग जाती है।
0: अच्छा, मतलब कम मजदूरी में श्री विधि में लग जाती है। और इसमें तो सिंचाई का जरूरत है कि इसमें तो पानी तो बहुत रहता ही है, समय कि सिंचाई करना पड़ता है
1: जी। जैसे ऊपरी खेत में अगर पानी कम हो गए तो उसमें हम लोग सिंचाई भी करते हैं
0: जी,
1: और 15-20 दिन के बाद रोपाई के 15-20 दिन के बाद में,
0: हाँ हाँ,
1: उसमें हम लोग एक बार कोड़ाई भी करते हैं
0: जी।
1: जो हम लोग को ब्लॉक से मिला हुआ है बीडर,
0: हाँ,
1: उसी से बीडर से हम लोग कोड़ाई कर देते हैं
0: जी। और मतलब वो कोड़ाई करने से वो दो धान का जो है वो बढ़वा बढ़िया,
1: हाँ, उसका ग्रोथ अच्छा होती है,
0: हाँ,
1: और उसका जो मुआर होती है,
0: हाँ,
1: वो कम से कम 25 से 30 कली निकलती है वहाँ से,
0: जिसमें वो दाना मतलब, हाँ, होता है मतलब
1: जी, एक धान से 20-25 to 30 मतलब कली निकल करके
0: निकलता है
1: जी।
0: और इसमें भी कीट लगने का डर होता है
1: जी? इसमें कीट लगने का बहुत कम चांस है।
0: लगता है तो कौन सा कीट लगता है?
1: लगता है तो इसमें जैसे ये गाभा कीट लगती है
0: जी।
1: जो गाभा को ही जब धान फूलने फलने लगती है,
0: हाँ,
1: उसमें गाभा में ज़्यादा कीट लगता है।
0: हाँ, तो इसके लिए छिड़काव करते होंगे
1: जी? छिड़काव करते हैं हम लोग, इसके लिए कीटनाशक दवाई देते हैं,
0: हाँ,
1: जो हरा सिंपल वाला दवाई हम लोग लेते हैं,
0: हाँ,
1: हरा सिंपल वाला कीटनाशक दवा में,
0: हाँ,
1: उतना जहरीला नहीं होता है
0: जी,
1: उसको हम लोग 1-2 बार छिड़काव कर देते हैं।
0: तो ये पानी में मिला के छिड़काव करते
1: जी,
0: हैं
1: जी, पानी में मिला करके छिड़काव करते हैं।
0: तो इतने 2.5 एकड़ में कितना पानी में आप कीटनाशक डालते हैं?
1: 1 एकड़ का वही 100 ml का दवा लगती है
0: जी, जी,
1: 1 एकड़ के लिए।
0: और खाद की भी जरूरत पड़ती है जी? जी
1: जी, बीच बीच में खाद में हम लोग, जैसे धान का ग्रोथ अच्छा नहीं दिख,
0: हाँ,
1: रहा है, तो हम लोग यूरिया खाद को देते हैं नाइट्रोजन के रूप में।
0: और खाद में जैविक खाद का प्रयोग करते,
1: हाँ,
0: हैं?
1: पहले ही हम लोग जैविक खाद देते हैं रोपाई के समय,
0: रोपाई के समय डाल देते हैं
1: जी,
0: क्योंकि जैविक खाद अभी खेत के लिए ज़्यादा अच्छा होता
1: जी।
0: तो ये धान कब तक तैयार हो जाती है?
1: बस इसका समय रहता है 2.5 महीना।
0: 2.5 महीना
1: जी, 2.5 महीना में एकदम पूरा धान तैयार हो जाती है
0: जी। तो ये जो श्री विधि बताए तो उसमें जो धान लगाए तो इससे मतलब क्या आपको फायदा हुआ?
1: फायदा बहुत कम बीज में, मतलब बहुत कम खर्च में ज़्यादा उपज हम लोग को मिला।
0: ओ, मतलब ज़्यादा उपज कम खर्च में ज़्यादा उपज
1: जी,
0: हो
1: जी,
0: गया जी। तो ये 2.5 एकड़ में ये श्री विधि से जो आप धान लगाए तो कितना उपज हो गया होगा?
1: वैसे तो हम लोग नापे नहीं है, लेकिन अंदाज में,
0: हाँ,
1: कम से कम वही 20-25 क्विंटल हो जाता है।
0: तो ये आप मतलब सेल करते हैं, घर के लिए भी रखते होंगे?
1: नहीं, हम लोग घर खाने के लिए ही रखते हैं।
0: अच्छा, खाने के लिए रखते हैं। हाँ, खाना भी तो जरूरी है,
1: जरूरी है।
0: सब बेच देंगे तो फिर खाएंगे क्या, है ना? और ये 3 महीने में तैयार हो जाता है ना?
1: 2.5 महीने में तैयार होता है।
0: 2.5 महीने में, तो फिर इसी का आप खाने के लिए रखते हो, फिर यही धान को आप रख देते होंगे अगले साल?
1: नहीं, आजकल तो ऐसे हाइब्रिड धान आ गया है कि आप 1 साल लगा लिए,
0: हाँ,
1: उसके बाद उसको दूसरा साल आप नहीं लगा सकते हैं, उसका उपज बहुत कम हो जाती है।
0: ओ, फिर दूसरा
1: नया नया भी पैकेट वाला हम लोग किलो वाला
0: अच्छा फिर से लगाते
1: फिर से लगाते हैं
0: जी। तो बहुत अच्छी बात है, अब श्री विधि से इतने बढ़िया तरीके से धान की खेती कर रहे हैं। और अजीत जी, आप इतनी अच्छे तरीके से श्री विधि से धान की खेती कर रहे हैं और लाभ ले रहे हैं, और तो इससे बताइए कि आप किसान भाई बहन जो भी धान की खेती कर रहे हैं कुछ बताइए कि
1: वो तो यहाँ का किसान लोग को मैं प्रेरित किया हूँ
0: जी,
1: और कुछ किसान लोग अब श्री विधि से धान की खेती कर रहे हैं
0: जी जी।
1: और मैं आशा करता हूँ कि और भी किसान भाई लोग हैं
0: हाँ।
1: वो श्री विधि से धान की खेती करें और कम लागत में ज्यादा उपज को प्राप्त करें और अपना लाभ उठावें।
0: बिल्कुल, तो आपने अपनी कीमती समय दिए अजीत जी इस कार्यक्रम के लिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपको।
0: तो देखा, अभी हमने सुन लिए भेंट वार्ता श्री विधि से धान की खेती, और एकर बारे में बतावे थलती अजीत बिन्हा। तो देखा कितना बढ़िया तरीका से श्री विधि से धान की खेती कर रहल थी है, और उम्मीद करे कि सभी ग्रामीण श्रोता ये जानकारी सुनकर जरूर लाभ ले थी, और वो भी श्री विधि से धान की खेती करके और बहुत बढ़िया से लाभ उठाती। तो जानकारी सुनने से पहले हम बात करें लेकिन की तरीके से महिला जो है जल संरक्षण करके और बहुत सारे जल बचाकर आगे के भविष्य के लिए मतलब बहुत बढ़िया काम कर रही थी। और देखा कि उन लोग तो सारा काम जल से ही हुए है, पानी से ही हुए, घर के काम हो गए लो, खेती बाड़ी के काम हो गए लो, चाहे गोरु डांगर हो गए लो, जितना पालन पोषण हो रहे सबके जल के बिना कोई भी काम नहीं है। देखा जल है तो कल है, जल है ही जीवन है, और तो इस तरह से महिला जल के संरक्षण अपन कर रही थी। एक साथे साथे देखा कि ग्रामीण श्रोता ये जो प्लास्टिक के इस्तेमाल से जो प्रदूषण हो रहे एक भी रोकथाम करना बहुत जरूरी है, और एक रोकथाम में आम नागरिक भी के भी बहुत बड़ा भूमिका रहो है। और देखा कि एक में का हो है कि अभी जैसे कि पहले बहुत प्लास्टिक के इस्तेमाल हो ले जेकरा से देखा कि बहुत प्रदूषण हो ले, और मतलब न सड़े है न गले है, अगर जलाए जला के भी अगर उकरा खत्म करना है तो उकरा से बहुत धुआं ऐसा हो है कि वो और वायु प्रदूषण से वो भी बहुत बड़ा नुकसान करे है। तो एकरा लगी देखा कि हम नींद के चाही कि प्लास्टिक के थैला, प्लास्टिक के पानी के बोतल और डिस्पोजल सामान जेकरा में देखा कि आजकल शादी बिया पार्टी में जो डिस्पोजल के प्लेट गिलास हो गए उस सब के उपयोग नहीं करे के चाहिए। और देखा कि घर से बाहर जाते समय हमेशा कपड़ा या जूट के थैला के प्रयोग करे के चाहिए। अब प्लास्टिक का डब्बा के जगह हम इनके कांच और स्टील के प्रयोग करे के चाहिए। और देखा कि बहुत है कि बहुत लोग है कि बाहर से खाना ऑर्डर करके मंगावा थी खाए लगी, देखा में बहुत सारा प्लास्टिक के कचरा निकलो है, और घर के पकल खाना खाए से उतना कचरा नहीं हुए है। तो और हम इनके चाहिए कि भाई थोक की खरीदारी करिए ताकि बहुत सारा प्लास्टिक के थैला ना आए और कम से कम मतलब प्रयोग हो सके। और इस तरीके से हम प्लास्टिक के उपयोग कर सके ही, खासकर महिला के तो देखो कि वो छोटा से छोटा प्लास्टिक के अगर प्लास्टिक हो गए लो, प्लास्टिक के डब्बा हो गए लो, तो ओकरा धो धा के रख के ओकरा फिर से ओकरा इस्तेमाल करे लगे हती। तो ई चीज कभी नहीं करे के चाहिए, कहे कि प्लास्टिक में अगर खाए के पदार्थ तू रखब तो वो और नुकसान हो रहा है। तो देखे ये सब छोट मोट चीज हमने करके प्लास्टिक के प्रदूषण से और प्लास्टिक के ना उपयोग करके हमने बचाव कर सको ही है। तो इस तरह से हमने महिला सब जल संरक्षण और कर सके ही है, और साथे साथे प्लास्टिक के प्रदूषण की भी रोक सके ही है। तो देखा बातचीत करते करते कार्यक्रम के जैसे हमरा जाए के बेरा भी हो गए सभी ग्रामीण श्रोता। तो कार्यक्रम खेती बाड़ी से ममता के द अनुमति जोहार।

आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम खेती बारी। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी शाम के 6 बजने को है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। विश्व प्रसिद्ध सरायकेला रथ महोत्सव की तैयारियों के तहत झारखंड की पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने श्री जगन्नाथ मंदिर और रथ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं की समीक्षा की। डीजीपी ने अधिकारियों, मंदिर समिति के सदस्यों और श्रद्धालुओं से व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय अनुकंपा एवं स्क्रीनिंग समिति की बैठक हुई। बैठक में अनुकंपा नियुक्ति, उग्रवादी हिंसा से जुड़े मामलों, एमएसीपीएस सेवा संपुष्टि तथा विभिन्न विभागों के प्रोन्नति प्रस्तावों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रामगढ़ के सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में आज वार्षिक आषाढ़ी पूजा श्रद्धा और पारंपरिक विधि विधान के साथ संपन्न हुई। मंदिर न्यास समिति के प्रधान पुजारी सुबोध पंडा ने बताया कि योगिनी एकादशी पर होने वाली इस वार्षिक पूजा का विशेष धार्मिक महत्व है। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के जनबानी गांव में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर एक अवैध महुआ शराब भट्टी ध्वस्त कर दी। कार्रवाई के दौरान 800 किलोग्राम जावा महुआ और 30 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद की गई। और खूंटी थाना क्षेत्र के घाघरा गांव स्थित तजना नदी किनारे आज एक युवती और एक युवक का शव मिला है। मृतकों की पहचान लोहरदगा जिले की नेहा कुमारी और अरुण कुमार राणा के रूप में की गई है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की सहायता से मामले की जांच की जा रही है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। मीडियम में पास
1: क्या आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। विश्व महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम अंगना। अंगना कार्यक्रम सुनने वाली आप तमाम बहनों को रानी का प्यार भरा नमस्कार जुहार। कैसी है बहनों, सब ठीक है ना? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल स्वस्थ और खुश होंगी। जवाब यही है, अच्छी बात है। बहनों हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हम कामना भी यही करते हैं। फिलहाल हम सुनते हैं आपके साथ मिलकर खूबसूरत सा ये गाना।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जरूरी संदेश के बाद एक बार फिर से करते हैं अंगना कार्यक्रम में आप तमाम बहनों का स्वागत। बहनों, इसके पहले हम सुन रहे थे गीत। हम उम्मीद करते हैं गीत पसंद आया होगा। अब थोड़ी चर्चा करते हैं, वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस क्या है इसके बारे में। यह दिन दुनिया के लोगों, समुदायों और देशों को गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे कोयला, तेल, गैस से दूर जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके बजाय यह सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत जैसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों को अपनाने की याद दिलाता है। इस

का इतिहास, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी हम आपको दे दें। यह दिन महान आविष्कारक निकोला टेस्ला के जन्मदिन 10 जुलाई 1856 के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। निकोला टेस्ला ने ही अल्टरनेटिंग करंट और बिजली के क्षेत्र में क्रांतिकारी खोजें की थी। 2005 में इस दिन की शुरुआत हुई थी। उद्देश्य के बारे में भी हम थोड़ी जानकारी दे दें बहनों आपको। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, दुनिया अभी भी 80% से अधिक ऊर्जा के लिए कोयला और तेल पर निर्भर है, जिसे कम करना इसका मुख्य लक्ष्य है। प्रदूषण रोकना, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले वायु और जल प्रदूषण, ग्लोबल और वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन से निपटना है। और हम आपको बता दें भविष्य की सुरक्षा इसके महत्व में आता है। सतत हमेशा चलने वाले विकास को बढ़ावा देना है। आत्मनिर्भरता, लोगों को अपने घरों में सौर ऊर्जा जैसे विकल्पों का उपयोग करने के लिए जागरूक करना, ताकि बिजली के बिल और ग्रिड पर निर्भरता कम हो। और भी हम जानकारी हासिल करेंगे और हम आपको अपने कार्यक्रम में बताएंगे। फिलहाल सुनते खूबसूरत सा गाना।

0: अभी आपने सुना गीत, उम्मीद करती हूँ बहनों की गीत पसंद आया होगा। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनवाती भेंट वार्ता, विषय है महिलाओं का स्वास्थ्य और उनका खान पान। भेंट वार्ता कर रहे हैं राधा मिश्रा और भेंट करता है अंजलि सिन्हा।
1: बहनों, आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं आहार विशेषज्ञ राधा मिश्रा जी, जो महिलाओं के संतुलित आहार के बारे में विस्तार से बताएंगी। तो राधा जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: तो सबसे पहले आप बताइए कि संतुलित आहार किसे कहते हैं?
2: संतुलित आहार, जैसे आजकल के टाइम पे लोग समझते हैं कि जैसे हम लोगों ने खाना खा लिया या फिर सिर्फ एक टाइम का खाना अच्छे से खाया उसके बाद छोड़ दिया, सिर्फ दाल चावल में समझते हैं कि हमारा वो संतुलित आहार है। बट आजकल के टाइम पे संतुलित आहार में आपको अगर सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या सुबह का नाश्ता जो ले रहे हैं उसमें आपको हर सोर्सेस शामिल होने चाहिए। जैसे दाल हो गए आपका, कार्बोहाइड्रेट से चावल, या फिर जैसे सुबह के नाश्ते में रोटी पोहा ऐसा करके ऐड कर सकते, फल होने चाहिए, दूध होने चाहिए। ये सारे स्रोत अगर आप एक खाने में एक टाइम के खाने पे ऐड करते तो इसको हम संतुलित आहार कहेंगे।
1: अच्छा, एक चीज और पूछना चाहेंगे कि ये जो संतुलित आहार है वो महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग होती है?
2: नहीं, वैसे तो ये संतुलित आहार महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग नहीं होते, सबके लिए सेम ही होता है। बट जैसे महिलाओं के हर स्टेजेस में या हर स्तर पे कहेंगे हम काफी बदलाव आते हैं, तो वहां जाके थोड़ा महिलाओं का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए उनको अपने खान पान पे पुरुषों के मुताबिक। ऐसे तो जनरली सबको, या फिर हम कहेंगे कि सामान्य तौर पे सबके लिए एक ही होते हैं। जैसे लोगों को अच्छी मात्रा में सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन या डेयरी के स्रोत अपने दैनिक आहार में शामिल करना चाहिए। संतृप्त वसा या ट्रांस वसा, अत्यधिक सोडियम या अत्यधिक चीनी के उपयोग से बचना चाहिए हमें।
1: और जैसे होता क्या है कि महिलाओं के जीवन में कुछ बदलाव भी आते हैं समय समय पे, तो उस समय खान पान पर क्या ध्यान देना चाहिए?
2: समय समय पे बदलाव आते हैं, जैसे मासिक धर्म हो गया, गर्भावस्था हो गई, या फिर मासिक धर्म की समाप्ति पे। अगर हम मासिक धर्म की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि आयरन का बहुत ज्यादा लॉस होता है, तो उस टाइम उनको आयरन के स्रोत पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब जब गर्भावस्था की बात आती है तो बच्चे को पोषण माँ के खान पान से ही मिलता है, तो माँ को ऐसा करना चाहिए कि वो अपना खाना जो है एकदम संतुलित आहार, जैसे हर तरह के फल सब्जियां, साबुत अनाज, उनको अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। बच्चों को कैल्शियम चाहिए, उनके दांतों और हड्डियों के लिए जरूरी है। विटामिन डी चाहिए होता है जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, या फिर बच्चों को जब वो माँ के गर्भ में रहते हैं तो उस समय उनको एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नाम की डेफिशिएंसी हो सकती है, उससे भी वो बचाव करता है।
1: तो अभी जैसे आपने कहा कि मासिक धर्म शुरू होने पर किशोरियों को अपने खान पान पे ध्यान देना चाहिए, आयरन लेनी चाहिए, तो आयरन के क्या क्या स्रोत हैं वो हमारी बहनों को बताइए।
2: आयरन के स्रोत में आप हरी सब्जियां जैसे अमरंथ वगैरह, पालक हो गए या खजूर हो गया, या फिर जैसे आप तिल के जो बीज होते हैं उनको अपने खान पान में शामिल कर सकते, गुड़ ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, और अंडे, खजूर, आजकल तो ब्रेड वगैरह भी काफी आयरन से फोर्टिफाइड होकर

0: हमको मिलते हैं।
1: और ये जो हम लोग खान पान लेते हैं इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत फायदेमंद है, बहुत अच्छा है, तो उसे भी हम उचित मात्रा में लेंगे तो ही फायदा होगा। तो उसकी मात्रा के बारे में आप बताइए।
0: मात्रा की अगर बात करें तो अगर हम अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, अलग अलग पोषक तत्वों की अलग अलग मात्राएं होती हैं। तो अगर हम जैसे कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम हमारे बॉडी में बहुत हाई कंसंट्रेशन, बहुत अधिक तौर पे पाया जाता है और उनका काम भी बहुत ज्यादा ही होता है हमारे बॉडी में। जैसे कैल्शियम जो है वो मस्कुलर फंक्शन मेंटेन करता है, दांतों एवं हड्डियों को मजबूत बनाता है और तो उनके फॉर्मेशन पे भी मदद करता है। और साथ ही साथ जब महिलाओं का जो जब मासिक धर्म की समाप्ति होती है उसके 50% जो है कैल्शियम लॉस शुरू हो जाता है। तो हमको क्या चाहिए होता है कि वो महिलाएं अपने 30 वर्ष की आयु से ही कैल्शियम इंटेक को बढ़ा लेना चाहिए। कैल्शियम इंटेक आपका जो रहना चाहिए वो अगर आप नॉर्मल हैं तो आपको 850 mg कैल्शियम पर डे लेना चाहिए। अगर कोई महिला अगर गर्भावस्था में है या बच्चे को फीड करवा रही है तो उनको 1000 से 1200 mg कैल्शियम हर दिन लेना चाहिए। अच्छा। अगर इनके स्रोतों की अगर हम बात करेंगे तो ये हमें दूध, चीज, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे हो गई भिंडी, पालक और ड्रमस्टिक जो हमें सहजन कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, आमंड्स वगैरह से मिलता है। फिर अगर हम विटामिन डी की बात करेंगे तो ये क्या करता है कि हमारे वैसे ही सेम कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, बोन के फॉर्मेशन में मदद करता है, क्योंकि एक टाइम के आते आते बोन जो होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, काफ़ी टेंडर हो जाते हैं। तो इस वजह से विटामिन डी भी हमको लेना चाहिए, अपने डाइट में ऐड करना चाहिए। वैसे तो विटामिन डी हमको सूरज से मिल जाता है, सूरज की किरणों से मिल जाता है, बट उतना, और आजकल तो काफ़ी पॉल्यूशन वगैरह है जिसकी वजह से हम हमेशा नहीं रह सकते, या फिर तो इसी के लिए हमको अपने खाने में कम से कम 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे विटामिन डी लेना चाहिए, जिसके स्रोत है जो ऑयली फिश हो गए और अंडा और फोर्टिफाइड मिल्क, फिश लिवर ऑयल और मछलियों में जैसे ट्यूना, सार्डिन्स, ये सब मछलियां हम अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है महिलाओं के लिए आयरन, क्योंकि महिलाएं ना अपने खाने पे ध्यान नहीं देती और ऐसे कुछ भी खा लेती हैं खाना। तो हमको चाहिए कि महिलाएं का आयरन देख भी नहीं पाती, उनको पता भी नहीं चलता उनके खाने से आयरन कब चला जाता है। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है हमको कि आयरन अच्छी मात्रा में ले, और आयरन को अच्छी मात्रा में ले और साथ ही हमको विटामिन सी के सोर्सेज भी अपने डाइट में ऐड करने चाहिए, ताकि आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाए। जिसके लिए हम लोग तिल के सीड्स, जागरी, हरी पत्तेदार सब्जियां, मीट, खजूर, अंडा, और पहले मैंने बताया आजकल सब कुछ फोर्टिफाइड होके भी मिलता है तो बाजार से हम वो भी ले सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: हाँ। फिर हम बात कर सकते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी आजकल ऐसे तो कोरोना टाइम है तो विटामिन सी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए इसको हमको डाइट में ऐड करना ही चाहिए, ताकि ये जो इन्फेक्शंस हमको बीमार करते उनसे मदद करने में ये हेल्प करता है। साथ ही एक प्रोटीन होता है कॉलेजन होता है, उसको भी विटामिन सी बनाने में मदद करता है। नॉर्मली लोगों को अगर कोई नॉर्मल है तो उनको 57 mg पर डे विटामिन सी लेना चाहिए। अगर कोई महिला गर्भावस्था में है या फिर कोई नर्सिंग मदर है तो उसको 60-80 mg विटामिन सी हर दिन अपने डाइट में लेना चाहिए। उसके सोर्सेज होते हैं जैसे आंवला हो गया, अमरूद हो गया, संतरा हो गया, टमाटर हो गया। और जैसे अगर हम प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन का फिर बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, वो हमारे स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, सेल्स के निर्माण में मदद करता है, क्योंकि हमारे बॉडी में हर सेल्स बनते हैं और उनका रिपेयर होता है और वो स्क्रीप भी हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें जरूरी है कि हम अच्छे से अच्छे मात्रा में प्रोटीन का अपने डाइट में शामिल करें।
1: बिल्कुल।
0: तो हमको 55 mg प्रोटीन हर दिन लेना चाहिए, और 55 g प्रोटीन अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको 50-80 mg हर दिन लेना चाहिए।
1: बिल्कुल सही है। और उसके बाद है, कभी कभी होता क्या है कि कुपोषित हो जाते हैं महिलाएं, है ना, तो उस कुपोषण से बचने के लिए हाँ। वो क्या करें कि वो अच्छे रहे, स्वस्थ रहें?
0: अगर महिला जैसे कुपोषित हो जाती हैं क्योंकि वो जस्ट बिकॉज खाना पे ध्यान नहीं दे पाती हैं, तो उनको चाहिए कि पहले तो जो मैंने न्यूट्रिएंट्स के जितना बताया उनको उनके डाइट में शामिल करना चाहिए, और उनको कम से कम अपना अगर अगर पूरे दिनचर्या की बात करेंगे हम उनकी, तो उनको कम से कम 47% हरी सब्जियां अपने डाइट में लेनी चाहिए, 45% दाल अपने खाने में ऐड करना चाहिए, 46% फलों को शामिल करना चाहिए, और 36% जो भी प्रोटीन के सोर्सेज हो गए जैसे मीट, मछली, अंडा, इन सब चीजों से अपना डाइट को मेंटेन करना चाहिए। फिर एक न्यूट्रिएंट और रह जाता है जो कि फॉलिक एसिड होता है, जो कि बच्चों के लिए और साथ ही साथ माँ के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर जैसे कुछ लोगों में इनफर्टिलिटी भी काउज होती है, ये को भी लेवल मेंटेन करने में मदद करता है। तो इसके लिए हम हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियां, ड्राई बीन, साबुत अनाज या फिर जैसे ब्रोकली हो गया, इन सबको अपने खान पान में ऐड कर सकते हैं और इसका नॉर्मल मात्रा में लेना चाहिए। अगर कोई नॉर्मल महिला है तो इनको 300 लेना चाहिए और अगर प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर है तो इनको 500 mg पर डे लेना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो आप तो सभी के बारे में बता दें कि कैसे शारीरिक बदलाव आते हैं, उस समय क्या खाना चाहिए, गर्भावस्था में क्या खाना चाहिए, मासिक धर्म जब समाप्त होती है उस समय क्या खाना चाहिए। शुरू के बारे में तो बताएं, लेकिन जब मासिक धर्म समाप्त होने लगता है तो उस समय माने महिलाओं को क्या ध्यान देना चाहिए?
0: महिलाओं को देखना चाहिए क्योंकि वहाँ पे बोन डेंसिटी भी घटने लगती है और ऑस्टियोपोरोसिस के भी चांसेस घट जाते हैं। तो महिलाओं को चाहिए कि फोलिक एसिड, कैल्शियम और प्रोटीन वगैरह, बेसिकली कैल्शियम का रिसाव होने लग जाता है हड्डियों से, तो उनको चाहिए कि कैल्शियम के स्रोत अच्छे से अच्छे मात्रा में अपने डाइट में शामिल करें।
1: बिल्कुल, तो आप तो सभी चीज बता दी, लेकिन इसके बाद भी आप हमारी महिलाओं को क्या बताना चाहेंगी?
0: मैं ये बताना चाहूंगी कि महिलाएं घर की धरोहर होती है, उनके स्वास्थ्य पे जो है पूरे घर का स्वास्थ्य निर्भर करता है। फिर अगर वो खुद ही बीमार रहेंगी तो पूरे घर को फिर वो कैसे देखभाल करेंगी, तो इस वजह से चाहिए कि वो अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखे और पूरे घर के स्वास्थ्य का ध्यान रखे।
1: तो राधा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और संतुलित आहार को लेकर कि महिलाएं संतुलित आहार कैसे लें और हर स्थिति में, हर स्टेज में वो स्वस्थ रहें, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: बहनों, आप सुन रही थी भेंट वार्ता, महिलाओं का स्वास्थ्य और उनका खान पान, इस विषय पर जानकारी दे रही थी राधा मिश्रा और इनसे बातचीत करी थी अंजलि सिन्हा। इसी के साथ अंगना कार्यक्रम से रानी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत। निजी कार्यक्रम के आरंभ में सुनवा रहे हैं आराधना फिल्म का ये गाना।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय।

आप सुन रहे लता मंगेशकर की आवाज में इस गीत को। इसी गीत के साथ ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर।

इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:54 हुए हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल हमारी रांची केंद्र से।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में राष्ट्रीय हितधारक परामर्श 2026 के दौरान झारखंड को औद्योगिक निवेश और पर्यटन का अग्रणी केंद्र बनाने की रणनीतियों पर हुआ मंथन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने के दिए निर्देश। कांग्रेस ने अभियान के लिए 15 दिन का मांगा अतिरिक्त समय। कोल्हान दौरे पर डीजीपी तदाशा मिश्रा ने कानून और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अपराध नियंत्रण के लिए अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रांची में एसीबी ने म्यूटेशन की एवज में रिश्वत लेने के आरोप में बुढ़मू के अंचल अधिकारी, राजस्व उप निरीक्षक सहित 3 को किया गिरफ्तार। और जूनियर नेशनल रग्बी 7A साइड चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए झारखंड की अंडर 18 बालक टीम पहुंची हैदराबाद। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय हितधारक परामर्श 2026 के दूसरे दिन झारखंड को औद्योगिक निवेश और पर्यटन का अग्रणी केंद्र बनाने की रणनीतियों पर व्यापक चर्चा हुई। उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य सरकार निवेशक अनुकूल वातावरण, विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना और कुशल मानव संसाधन के माध्यम से औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने पर्यटन नीति 2026 और होमस्टे नीति के माध्यम से धार्मिक, इको, साहसिक और जनजातीय पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना प्रस्तुत की। उन्होंने निवेशकों से झारखंड के पर्यटन क्षेत्र में निवेश का आह्वान करते हुए राज्य को पूर्वी भारत का प्रमुख पर्यटन और रोजगार सृजन केंद्र बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा कर मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 14 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव पाठशाला तथा बीएलओ और बीएलए2 की संयुक्त बैठक आयोजित करने को कहा। उन्होंने मतदाताओं से इन्यूमरेशन फॉर्म जल्द भरकर जमा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई होगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रगति पर चिंता जताई है। पार्टी नेताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर मतदाता सूची अद्यतन करने के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त समय देने की मांग की है। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजरों के विरुद्ध निलंबन सहित कानूनी और विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म के वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन में तेजी लाने तथा 14 जुलाई को सभी बूथों पर बीएलओ बीएलए2 बैठक और चुनाव पाठशाला आयोजित करने के निर्देश दिए। झारखंड की पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने आज चाईबासा में कोल्हान क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि समीक्षा के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अभियान तेज करने, सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ाने और अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
1: मैडम की अध्यक्षता में आज सभी जिले का

0: जो परफॉर्मेंस है क्राइम और नक्सल सिनारियों पे उस पर वृहद रूप से चर्चा की गई, और जो नक्सल अभियान तथा आने वाले फेस्टिवल्स और क्राइम रिलेटेड जो सिनारियों है उसको लेकर के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं। और विगत कुछ महीनों में काफी सारे ऑपरेशन उन लोगों ने यहाँ पे किया है, जिसकी वजह से नक्सल का स्ट्रेंथ अभी काफी कम हो गया है, और आने वाले समय में वो बचे हुए ग्रुप्स के ऊपर हम लोगों की तरफ से प्रभावी कार्रवाई की जाए।
1: बोकारो जिले में नष्ट की जाने वाली करीब 1500 पेटी एक्सपायर्ड बियर को अवैध रूप से बाजार में बेचे जाने के मामले में उत्पाद विभाग ने कार्रवाई की है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि विभाग ने डिपो मैनेजर और क्लर्क को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
2: जितने संबंधित पदाधिकारी या कर्मी हैं उन सबको शोकॉज पूछा गया है, और शोकॉज पूछने के उपरांत अगर उनका संतोषजनक जवाब नहीं पाया गया तो उस पर अग्रतर कार्रवाई होगी। अभी देखते चल रहे आगे आगे और भी कार्रवाई होगी। आप आश्वस्त रहें, विभाग गंभीर है और गंभीरता के साथ दोषियों पर कार्रवाई करेगी।
1: धनबाद के चर्चित मटकुरिया गोलीकांड मामले में 15 वर्ष बाद अदालत ने पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक सहित 30 आरोपियों को दोषी करार दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सभी दोषियों को 3-3 वर्ष के कारावास और 10-10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2011 में बीसीसीएल आवासों से अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसक झड़प से जुड़ा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी रांची की टीम ने बुढ़मो अंचल कार्यालय के अंचल अधिकारी सच्चिदानंद कुमार वर्मा, राजस्व उप निरीक्षक राजेश किशोर रवि और उनके भाई गौतम किशोर रवि को म्यूटेशन की एवज में 10,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। परिवादी सुबोध कुमार ने एसीबी से रिश्वत लिए जाने की शिकायत की थी। जांच में यह मामला सही पाया गया। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ताराटांड थाना क्षेत्र से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉ. विमल कुमार ने बताया कि आरोपी कस्टमर सपोर्ट के नाम पर और एपीके फाइल भेजकर लोगों से ठगी करते थे।
3: साइबर क्रिमिनल सेटिंग है और इसको लेकर के टीम बनाया गया था और उस टीम ने छापामारी की और उसमें 5 लोग थे। लोग के पास से 10 मोबाइल, 13 सिम कार्ड, 1 लैपटॉप और 4 मोटरसाइकिल बरामद किया गया। कई एपीके फाइल भेज करके इनके द्वारा लोगों से साइबर ठगी किया जा रहा था।
1: जमशेदपुर के हिमांशु सिंह हत्याकांड में एक और आरोपी राहुल दुबे ने आज बिष्टुपुर थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है।
4: पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका, इनका जो एक मिलजुल के सहयोगपूर्ण कार्य करना, स्पीडी ट्रायल करना और उनके माध्यम से उन लोगों पर इतना दबाव बन गया है कि वो अब ये प्रयास करते हैं कि वो या तो यहाँ से चले जाना चाहते हैं। आप लोगों के माध्यम से संदेश है सभी लोगों को कि अपराध से दूर रहें। अभी तक जो घटनाएं हो गई हैं उनमें तो हम जरूर पकड़ेंगे लोगों को और सजा दिलवाएंगे।
1: गिरिडीह की विशेष एनडीपीएस अदालत ने वर्ष 2010 में दर्ज अवैध अफीम की खेती और तस्करी से जुड़े मामले में 27 अभियुक्तों को बरी कर दिया है। यह मामला लुकैया नयनपुर थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था, जिसमें 29 लोगों पर अवैध रूप से अफीम की खेती और कारोबार करने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध नहीं कर सका। रामगढ़ के सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित मां चन्नमस्तिका मंदिर में आज वार्षिक आषाढ़ी पूजा श्रद्धा और पारंपरिक विधि विधान के साथ संपन्न हुई। इस अवसर पर मां को 56 प्रकार के व्यंजन और ऋतु फल अर्पित कर राज्य तथा देश की सुख समृद्धि और अच्छी फसल की कामना की गई। मंदिर न्यास समिति के प्रधान पुजारी सुबोध पंडा ने बताया।

0: कि योगिनी एकादशी पर होने वाले इस वार्षिक पूजा का विशेष धार्मिक महत्व है।
1: आज आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी है, बहुत ही तिथि महत्वपूर्ण है और गर्मी का समय खत्म हो गया, बरसात ऋतु चालू हो चुका है, ताकि आसपास क्षेत्र में अच्छे से फसल हो, खेती हो, भरपूर रहे, आनंद रहे। और ये तो जागृत देवी है कि माँ हर मनोकामना भक्त को पूरा करती है।
0: झारखंड की अंडर 18 बालक रग्बी टीम जूनियर नेशनल रग्बी 7A साइड चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए हैदराबाद पहुंच गई है। यह प्रतियोगिता गच्ची बावली स्टेडियम में आयोजित हो रही है। टीम की कप्तानी अजीत नाग कर रहे हैं, जबकि सलमान भेंगरा कोच और किशन उराव टीम मैनेजर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। नई दिल्ली में राष्ट्रीय हितधारक परामर्श 2026 के दौरान झारखंड को औद्योगिक निवेश और पर्यटन का अग्रणी केंद्र बनाने की रणनीतियों पर हुआ मंथन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने के दिए निर्देश। कांग्रेस ने अभियान के लिए 15 दिनों का मांगा अतिरिक्त समय। कोल्हान दौरे पर डीजीपी तदाशा मिश्रा ने कानून और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अपराध नियंत्रण के लिए अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रांची में एसीबी ने म्यूटेशन की एवज में रिश्वत लेने के आरोप में बुढ़मो के अंचल अधिकारी राजस्व उप निरीक्षक सहित 3 को किया गिरफ्तार। और जूनियर नेशनल रग्बी 7A साइड चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए झारखंड की अंडर 18 बालक टीम पहुंची हैदराबाद। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गिरिडीह संवाददाता।
1: गिरिडीह जिले में SIR का काम तेजी से चल रहा है। गिरिडीह DC रामनिवास यादव ने अधिकारियों के साथ समीक्षा के बाद बताया कि 60% फॉर्म वितरित कर दिया गया है और BLO घर घर जाकर लोगों को फॉर्म पहुंचा रहे हैं। DC ने गांडे क्षेत्र के कई बूथों पर जाकर लोगों की समस्याएं सुनी और उसका निदान किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ धरातल पर दिखने लगा है। गरीब लोग पक्का मकान पाकर बेहद खुश हैं।
2: मेरा नाम रजिया खातून है, दाड़ी घूम रहे घर कट्टर सर मिट्टी का घर, तो परेशानी था, अब अपने बाल बच्चों के साथ में अभी हम बहुत खुश हैं। ये सरकार का धन्यवाद करते हैं, अब हमको पक्का का घर मिल गया है।
1: गिरिडीह जिले के पंचायतों के रख रखाव के लिए मिली राशि को मुखिया द्वारा खर्च नहीं किए जाने पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी तेज कुमार हस्सा ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष का 3,14,00,000 रुपया खर्च नहीं हुआ है और इस वित्तीय वर्ष में भी 1,55,00,000 रुपये का आवंटन प्राप्त हो गया है।
3: गिरिडीह जिला के 344 पंचायतों के 6 पंचायत सचिवों को खर्च करने के लिए सुदृढ़ीकरण की राशि पिछले वित्तीय वर्ष में दी गई थी, लेकिन मुखियाओं के द्वारा अभी तक 3,14,00,000 रुपया अभी तक खर्च नहीं किए हैं, जबकि इस वित्तीय वर्ष में भी उनके लिए सुदृढ़ीकरण मद में राशि आ गई है। उनको उपयोगिता प्रमाण पत्र देना था, हम लोगों ने मांग की थी, अभी तक उपयोगिता प्रमाण पत्र उनके द्वारा जमा नहीं की गई है। वर्तमान में जो राशि आई है इस वित्तीय वर्ष की, उस राशि को हम लोग तभी उन मुखियाओं को देंगे जो मुखिया पिछले वित्तीय वर्ष की सुदृढ़ीकरण मद में जो राशि आई थी उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र देंगे, और साथ ही जो मुखिया खर्च नहीं किए हैं उनके विरुद्ध कारण पीछा भी करेंगे, स्पष्टीकरण देंगे कि किस कारण से किस परिस्थिति में उस राशि को उन्होंने खर्च नहीं की।
1: मनरेगा योजना से किसानों ने आम बागवानी लगाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की है।

0: गिरिडीह जिले के पीरटाड़ के किसान कहते हैं कि उन्हें आम बेचकर अच्छा फायदा हुआ है।
1: शेखर महतो है, पीरटाड़ प्रखंड ग्राम बांध का ये हमारा गांव है। प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग को पता चला कि नरेगा से सरकार मुफ्त में आपको 3 से 4 लाख रुपया पैसा भी एक एकड़ में देती है, और मैंने आपका मैंने एक स्वामित्व भी हो जाता है बागवानी में, आप खुद उसका ओनर भी हो गए बागवानी का। तो इस जानकारी मिला और किसी माध्यम से हमको 2 एकड़ 2.5 एकड़ में मैंने को बागवानी करने का मौका मिला, और मैंने जो एकदम बंजर भूमि था, जो कृषि योग्य बिल्कुल नहीं था, उस सब भूमि में हम बागवानी शुरू किए, और बागवानी मेरा मैंने इतना शानदार रहा कि हम लोग तो लगभग 50,000 का अभी तक आम बेच चुके हैं, और कम से कम 2 लाख 2.5 लाख तक और आम बेचेंगे।
0: जिला कृषि पदाधिकारी आशुतोष कुमार ने किसानों से आग्रह किया है कि वर्षापात के अभाव में मोटे अनाज के साथ साथ दलहन एवं तेलहन की खेती करें। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह।
2: अभी आप सुन रहे थे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। पेश है कार्यक्रम झनकार। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गाना कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में।

0: मुझे कुछ कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है।
2: इस कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और साथी की आवाज में फिल्म का नाम बॉबी।
0: पहले तुम।
3: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
0: अच्छा मैं कहती हूँ।

आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम झनकार। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। हमारा अगला कार्यक्रम बस अब से कुछ ही क्षणों में।

यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेलेंगे शान से। वाचन स्वर है वंदना श्रीवास्तव का। प्रस्तुत करता है राजीव कुमार और संयोजक हैं विक्रम कुमार रंजन।

स्पोर्ट्स बैक्सिंग का हमारा वीकली प्रोग्राम खेलेंगे शान से। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं अपनी कार्यक्रम के पहले सेगमेंट की ओर, जो है ग्राउंड रिपोर्ट। अभी हम खड़े हैं कर्जन ग्राउंड स्टेडियम में और ये है समापन समारोह 65वें सुब्रत मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट का।

0: तो आइए ऐसे में मिलते हैं हमारे इस सुब्रत मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट के नोडल टीचर मधुसूदन कुमार सिंह जी से और जानते हैं कि तीन दिनों तक क्या हलचल चलती रहा इस स्टेडियम में, फुटबॉल के क्षेत्र में कौन जीता कौन हारा और कौन फाइनली सेलेक्ट होकर मंडल स्तरीय खेल प्रतियोगिता में अपना स्थान बना पाया है। बहुत बहुत स्वागत खेलेंगे शांति में मधुसूदन जी आपका।
1: धन्यवाद, नमस्कार। 68वीं सुब्रत मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का यह भव्य आयोजन जिला स्तर पर ये करजन ग्राउंड और ये हजारीबाग न्यू स्टेडियम में हुआ था। आज समापन समारोह है और बहुत हर्ष के साथ ये बताना चाहेंगे कि आज समापन समारोह में हमारे तीसरे दिन में बालक अंडर 15 के बालक वर्ग के बच्चे खेल रहे हैं। इसके पूर्व 3 तारीख को हमारा अंडर 17 बालिका वर्ग के बच्चे खेले, जिसमें KB हाई स्कूल सदर और RN पद्मा हाई स्कूल पद्मा की टीम खेली और उसमें शानदार विजय हासिल किए सदर प्रखंड की टीम KB हाई स्कूल की। अब अंडर 17 बालिका वर्ग के तरफ से वो विजेता हुई हैं तो निश्चित तौर पर वो परमंडल में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।
0: क्या बात है। और अंडर 17 बॉयज में कौन जीता है जिला स्तरीय प्रतियोगिता में?
1: उसमें भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला रहा। एक सुदूर प्रखंड हमारा केरेडारी, जहां SS+2 हाई स्कूल के बच्चे थे और हमारा सदर प्रखंड आश्रम आवासीय विद्यालय भिलवाड़ा सदर के बच्चे थे। दोनों प्रखंडों में बहुत शानदार मुकाबला हुआ, बहुत उत्साह पूर्वक सभी ने देखा, मतलब जितने दर्शक गण थे बहुत उत्साहित हो रहे थे, लेकिन उसमें अपना विजय हासिल किया आश्रम विद्यालय।
0: बराबर के टक्कर के टीम जूझते हैं तो उत्साह और उमंग भर जाता है। ऐसे भी हमारी बात फुटबॉल का क्षेत्र रहा है और फाइनल में कौन आए हमारे अंडर 15 में फाइनलिस्ट बन के ये बताए।
1: बहुत ही शानदार तरीके से KN+2 हाई स्कूल के बच्चों ने अपना रक्षा घेरा बना करके पास पास खेल करके अच्छी टेक्निक अपना करके और भुरकुंडा दाढ़ी प्रखंड के अपग्रेडेड हाई स्कूल भुरकुंडा के खिलाड़ियों को 5 गोल से हराया। और इसमें एक और बहुत दिलचस्प बात है कि एक हमारा गोलकीपर भुरकुंडा का है, शर्मा जी नाम है उनका, उन्होंने बहुत सारे गोल सेव किए, नहीं तो इचाक प्रखंड लगभग 12 गोल दे उनको।
0: क्या बात है, मतलब लास्ट डे की समापन समारोह में खेल का पूरा रोमांच हमारे दर्शकों तक पहुंचता रहा और फुटबॉल बिल्कुल सबको आनंदित कर उठा।
1: देखिए, परमंडल स्तरीय सुब्रत मुखर्जी प्रतियोगिता का हर एक साल हम लोग का ये हजारीबाग जिला को ही मेजबानी मिलता है और इस बार भी मिला है। विगत वंश एक ईयर के लिए वो रामगढ़ जिला को मिला था कुछ कारणों से, लेकिन इस बार पुनः हजारीबाग जिला को मिला है और इसकी मेजबानी हजारीबाग जिला शानदार तरीके से कर रही है। ये इसका खेल का हम लोग शुरुआत बस 11 तारीख से करने वाले हैं। वैसे इसके जूल में 8 तारीख से ही था, लेकिन विभिन्न जिलों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि अभी हमारे जिला में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता संपन्न नहीं हो पाई है, तो उसके आधार पर हम लोगों ने सभी जिला से संपर्क बनाया अपने 7 जिलों से और बनाने के बाद 11 तारीख से हम लोगों ने इसको करने का पूरा प्लान कर लिया है।
0: बहुत अच्छी खबर है कि उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के मुख्यालय हजारीबाग में होगा प्रमंडल स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ और पूरे 7 जिले हमारे उत्तरी छोटानागपुर के सब भागीदारी ले पाएंगे। मधुसूदन जी, आप अभी बताए कि पिछले कई वर्षों से ये सुब्रत मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है, तो बच्चों का परफॉर्मेंस, खासकर हजारीबाग के बच्चों का परफॉर्मेंस, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों का परफॉर्मेंस फुटबॉल में हजारीबाग से लेकर स्टेट और नेशनल लेवल पर कैसा रहा है?
1: देखिए, विगत वर्ष एक आपको उपलब्धि बता दूं कि विगत वर्ष हम लोगों ने अपने जिला स्तर पर जो आयोजन किया वो शानदार तो रहा है, लेकिन यह बच्चे हमारे राज्य स्तर पर इतने शानदार प्रदर्शन किए, पूरे राज्य में मेरा जिला तृतीय स्थान
0: पर। क्या बात है, 34 जिले में तीसरे स्थान पे होना अपने आप एक बड़ी बात है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमने मात्र 2 मेडल से पीछे रह गया, नहीं तो ये खूंटी जिला द्वितीय स्थान पर चले गई, मैं रहता और मेरा जिला रहता, मात्र 2 गोल्ड मेडल के चलते हम लोग तृतीय स्थान पर हैं।
0: मधुसूदन जी, आप खुद इतने ऊर्जावान हैं, आपकी पूरी टीम जो है फिजिकल टीचर्स की इतनी ऊर्जावान है, आप आने वाले टैलेंट्स के लिए जो बच्चे अभी भी बैठे घरों में फुटबॉल के क्षेत्र में आना तो चाहते हैं लेकिन अब

खिलाड़ियों, अब हमारे कार्यक्रम का है अगला सेगमेंट जो है खेल मंत्र। हार को भूल जाओ, सिर्फ जीत पर नजर रखो। हमारा लक्ष्य साफ है, मैदान अपना और जीत भी अपनी। मैदान में अपनी भावना पर आप सभी कंट्रोल रखो, संयम रखो, कभी भी किसी को चोटिल ना करो और खुद को भी चोटिल ना होने दो। तो ये था साथियों आज का हमारा खेल मंत्र। बाला से जो गुड्डे और गुड़ियों का खेल नहीं खेलती, कौन सा खेल वो लड़की खेलती है, चलिए जानते हैं अपने कार्यक्रम खेलेगी शांति के अगले सेगमेंट में जो है हर जीत की कहानी।

0: हर जीत की कहानी हम आपको सुनवा रहे हैं, कि ऐसी छोटी सी बच्ची की कहानी जिसने शतरंज जैसे मानसिक खेल में बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपने लिए एक नया राह चुना है और दूसरी लड़कियों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन गई है। जी हाँ, हमारे बीच है स्टीविया मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत स्टीविया आपका खेलेंगे शान से में।
1: थैंक यू
0: स्टीविया। आप बताए कि आपकी ये जर्नी जो थी शतरंज की, शतरंज कहते हैं बहुत ही दिमाग का खेल होता है, बहुत साजिशें होती है इसके पीछे, तो आपने इस खेल में आने के लिए कब सोचा, कौन थे आपके मोटिवेशन?
1: जब हम फोर्थ क्लास में थे तब स्कूल ने डिस्ट्रिक्ट चेस टूर्नामेंट के लिए मेरा नाम दर्ज किया। तब मुझे चेस के बारे में ज्यादा पता नहीं था, बट हम खेलते थे। बट वहाँ पर जाने के बाद मुझे चेस में बहुत इंटरेस्ट आने लगा, फिर मैंने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट खेलना स्टार्ट किया। मेरे पेरेंट्स चेस के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे और ऐसे भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया चेस और खेलने के लिए, और मुझे अलग अलग जगह रांची देखे गए चेस खेलने के।
0: कौन कौन से अचीवमेंट आपके रहे हैं शतरंज में अब तक?
1: मैंने डिस्ट्रिक्ट में एक बार ट्रॉफी जीता था और स्टेट में भी एक बार जीता था और एक और बार डिस्ट्रिक्ट में और एक और जो एक नेशनल हो रहा था जिसमें गर्ल्स में मुझे हजारीबाग फोर्थ रैंक आया था।
0: कम ही देखा जाता है कि लड़कियां शतरंज में आगे आती हैं। क्या कहना है आज उन लड़कियों के लिए जो इंटरेस्ट रखती हैं शतरंज में लेकिन आगे बढ़ने से डरती हैं?
1: जैसे अभी हमारे झारखंड स्टेट में लड़कियां बहुत कमी चेस खेलती, यहाँ पर कॉम्पिटिशन चेस में लड़कियों के लिए कमी है, तो अगर वो अभी खेलना स्टार्ट करेंगी तो उनका आगे बढ़ने का चांसेस बहुत ज्यादा है। उन्हें चेस जैसे गेम में अपना टाइम देना चाहिए और खेलना चाहिए।
0: नेशनल और स्टेट आपने कब खेला?
1: 2024 और 2025 में बहुत ज्यादा टूर्नामेंट खेले थे, उन्हीं दोनों साल में मेरे प्राइजेस स्टार्ट हुए मिलना।
0: तो चेस खेलने से क्या फायदा आपको दिखता है अपनी जिंदगी में?
1: चेस खेलने से कामनेस माइंड में आया, पीस ऑफ माइंड मिला, धीरे धीरे पेशेंस बढ़ने लगा भी और रियल लाइफ।
0: तो आप क्या कहना चाहिए?

0: आएंगे हमारी लड़कियों को।
1: ये उन्हें नहीं खेलना चाहिए क्योंकि ये आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाता है। एक गेम के अलावा आपकी लाइफ में भी बहुत ज्यादा ज्यादा हेल्प करता है रियल प्रॉब्लम से डील करना।
0: स्टेविया, आप हमारी कार्यक्रम खेल के शान से में अपनी स्टोरी जीत की शेयर की है कि किस तरह से शतरंज के खेल में क्लास फोर्थ से लेकर आज तक डटी रही और अच्छा मुकाम आपने हासिल किया है जिला से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक। और दूसरे बच्चियों को भी कहती है कि अगर वो भी चाहे तो इस फील्ड में आ सकती है, शतरंज के क्षेत्र में आगे आ सकती है और अपने पेसेस के साथ साथ अपने मेंटल एबिलिटी को भी बढ़ा सकती है। आपका हमारे कार्यक्रम खेले के शान से में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: खेलेंगे शान से, जीतेंगे शान से।

0: खिलाड़ियों, अब आ गए हम अपने कार्यक्रम के अगले सेगमेंट में जो है खेल टिप्स। खेल के मैदान में खिलाड़ियों पसीना बहाने से मत डरो, क्योंकि चमकने का यही एकमात्र रास्ता है। खेल के मैदान में जितना मेहनत करोगे, जितना पसीना बहाओगे, खेल के आसमान के उतने खूबसूरत सितारे बनकर चमकोगे। तो ये था आज का हमारा खेल टिप्स, याद रखिएगा और खेल के मैदान में निरंतर आगे बढ़ती रहिएगा।
1: हार के बैठना नहीं, जीत के दिखाना है तुझे, भाग तू ऐसे, तुझको रोक कोई भी ना सके।
0: और अब खेलने के शान से में वक्त हो गया है खेल अपडेट्स का। दोस्तों, खेल अपडेट्स में सबसे पहले जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2026 जिला खेल कार्यालय हजारीबाग की ओर से आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, जिला बैडमिंटन प्रतियोगिता 2026 दिनांक 12 और 13 जुलाई 2026 को स्थानीय बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम हजारीबाग में, जिसकी सूचना दी है हमारे माननीय उपायुक्त हजारीबाग श्री हेमंत सती जी ने। और कुछ हलचल आप क्रिकेट की दुनिया से, T20 सीरीज में भारत को झटका, इंग्लैंड दौरे के तीसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों की विशाल अंतर से हरा दिया। और अब हलचल फुटबॉल की दुनिया से, फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल मैच जारी है। हॉलैंड के शानदार प्रदर्शन की बदौलत नॉर्वे ने ब्राजील को हराया और अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इजिप्ट को मात दी। और अब एक छोटी सी खबर टेनिस की दुनिया से। दोस्तों, क्वार्टर फाइनल की ओर विंबलडन के मुकाबले अपने अंतिम चरण में है, जहां नाओमी ओकासा ने अरीना सवालेका को हराकर टूर्नामेंट में अपनी धाक जमा ली है। तो ये थे दोस्तों हमारे खेल अपडेट्स। तो खिलाड़ियों, हमारे आज का ये सेगमेंट आपको कैसा लगा, इसके लिए अपनी प्रतिक्रिया हम तक भेजना ना भूले। नोट कर लीजिए हमारा पता, कार्यक्रम खेलेंगे शान से द्वारा केंद्रीय निदेशक आकाशवाणी हजारीबाग, पिन कोड 825301। तो खिलाड़ियों, अब वक्त हो गया अपने आज के इस अंक से अलविदा कहने का। तो दीजिए वंदना श्रीवास्तव को इजाजत इन चंद शब्दों के साथ। हवाओं में नहीं, इरादों में उड़ान होनी चाहिए। खिलाड़ी वो है जिसकी जीत की हर पल गूंज होनी चाहिए। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेलेंगे शान से। वाचन स्वर था वंदना श्रीवास्तव का, प्रस्तुतकर्ता थे राजीव कुमार और संयोजक थे विक्रम कुमार रंजन। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पर। हमारा अगला कार्यक्रम बस अब से कुछ ही क्षणों में।

क्या आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। पेश है सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स। इस कार्यक्रम की आरंभ में लीजिए सुनिए, फिल्म का नाम है आप मुझे अच्छे लगने लगे, आवाज़ें हैं अलका याग्निक और अभिजीत की।

आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत।

आपकी चाहत कार्यक्रम सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं को रानी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हैं हम कुछ चुनिंदा हिट सुपर हिट फिल्मी नगमों के साथ इस कार्यक्रम में। सबसे पहले लीजिए सुनिए चेपा कला बड़का गांव से इस गीत को सुनना चाहा है श्री बाबूलाल ठाकुर, श्रीमती साबिया ठाकुर, तिलेश्वरी श्री भरत ठाकुर, मंजू संतोष ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर, प्रभात कुमार ठाकुर, जितेश आदर्श, अनुराधा रुक्मणी और प्रियंका दीपिका। आप हैं झुमरी दिलैया से जगन्नाथ प्रसाद साहू, इसी गीत को सुनना चाहा है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, श्रीमती बबीता कांगड़ा, निखिल कांगड़ा, बबीता बोध, अंकित कांगड़ा, मोनिक कांगड़ा और एस आर कांगड़ा।

0: अब लीजिए सुनिए नमक हलाल फिल्म का ये गाना। इस गीत को सुनना चाहा है पचपंदी रोड से कलाम अहमद आरजू, नीलोफर परवीन आरजू, एहसान अहमद आरजू, हबीबा खातून आरजू, इरफान अहमद आरजू, सवाना परवीन आरजू, फिरोज अहमद आरजू, समा परवीन आरजू और इनके तमाम साथी। रेलवे स्टेशन हजारीबाग से शमीम अहमद, शगुफ्ता परवीन, नूरजहां बेगम, तहसीन बानो, खलील अहमद और एहसान अहमद। जादवगढ़ चौक से हैं कृष्ण कुमार सिन्हा, श्याम कुमार सिन्हा, मुकेश कुमार सिन्हा, संतोष कुमार सिन्हा, अरविंद कुमार सिन्हा, राजीव कुमार सिन्हा, डॉक्टर भारती नयन, नीलम सिन्हा, आयुषी कुशाग्र, भास्कर, आदिति और देवांश।
1: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना ना

फिल्म का नाम नसीब, आवाज लता मंगेशकर की है। इस गीत को सुनना चाहे जामा मस्जिद रोड हजारीबाग से मुबारक हुसैन, तबारक हुसैन, अमानत हुसैन, सराफत हुसैन, बिलकिस फातमा, कनीश फातमा, यास्मीन फातमा और सहनाज फातमा। इसी गीत को सुनना चाहा है करबला चौक रामगढ़ से समीम अहमद, अजमेरी खातून, एहसान अहमद, आरजू परवीन, सहजादा सलीम, निगार सुल्ताना, सवाना परवीन, मुहर्रम हुसैन और इनके तमाम साथी।

आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। अगला गाना लीजिए, सुनिए फिल्म का नाम लम्हे। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और साथी की। इस गीत को सुनना चाहा है हसारीबाग पतरातू से बेसिल खलको, मधुरितु, रचना, मितु, श्वेता, पल्वी, रोहित, प्रवीण, नदीम, मनीषा, सोरेन एवं समस्त परिवार के लोग। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, लिवई से गुलाबदास, मानकीपुरी दतरिंगी से भागवत वर्मा। सुनते हैं गाना।

0: तेरा मन पर सारे पानी क्यों भर सारे, तूने किसको याद किया।
1: लीजिए सुनिए, फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए। आवाजें हैं SP बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की। इस गीत को सुनना चाहा है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा सालिया, सोएब खान, मुश्ताबा खान, राउफ भाई, साहिद भाई, गांधीबाग अकोला से, रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, उनके तमाम साथी, छत्तीसगढ़ भाटापाड़ा दतरिंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, छाविंद कुमार वर्मा, महादेव घाट अमरेश्वर से, डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर। सुनते हैं ये गाना।

अगला गाना लीजिए, सुनिए। इस गीत को सुनना चाहा है शिवाजी चौक से अनिल कुमार, अंजू लता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा से है दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवली श्रीवास्तव। गोविंदपुर धनबाद से शराफत हुसैन अंसारी, बेगम रिहाना, परवेज अशरफ, हसन इमाम और इनके तमाम साथी।

आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में रांची के 8:44 हुए हैं। आपसे कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार संध्या और अंग्रेजी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं, तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
3: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान की विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे।

0: रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी

0: के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
1: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
2: Pineapple Festival का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से सकेंगे।
1: ऑफ आर ऑर्गेनिक फार्मर्स टू बी एबल टू ग्रो बियॉन्ड द शोर्स ऑफ इंडिया टू फार रीचिंग इंटरनेशनल सोर्स।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 रुपए पर बंद हुआ।
0: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया की नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. प्राइम

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी का यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार

0: रवि।
1: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम डोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
2: आप खाए थाली में, हमने पोते प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है गीतकार असद भोपाली पर।
1: वो जब याद आ

सियासत भूपाली का जन्म मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 10 जुलाई सन 1921 में हुआ। मुंशी अहमद खान के वो बड़े साहबजादे थे। जब उनका जन्म हुआ तो इनका नाम रखा गया असदुल्ला खान। फारसी, अरबी, उर्दू और अंग्रेजी में उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई। शहर भोपाल एक अदबी शहर, वहाँ की हवा में शायरी की खुशबू होने से कई शायर इस शहर ने दिए हैं। उन्हीं में से एक जगमगाता नाम है असद भोपाली साहब का।

असद भोपाली कोई 28 साल के रहे होंगे जब उन्होंने माया नगरी मुंबई का रुख किया ताकि वो अपने शायरी का फन फिल्मी गानों की शक्ल में उभार सके। भोपाल से मुंबई आने वाले शायरों की फहरिस्त का अव्वल नाम है असद भोपाली साहब का।

असद भोपाली का मुंबई आना किस तरह हुआ ये भी एक दिलचस्प किस्सा है। फाजली ब्रदर्स एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था दुनिया। निर्देशक थे SF हसनैन साहब। फिल्म के अभी दो गाने ही लिखे गए थे। लिखने वाले थे आरजू लखनवी साहब जो तकसीम हिंदुस्तान के पेश नजर पाकिस्तान चले गए थे। अब फाजली ब्रदर्स के सामने मुसीबत मुंह बाय खड़ी थी कि बाकी गाने किससे लिखवाएं। इसी दौरान भोपाल के सुगम चंद कपाड़िया जिनके भोपाल शहर में दो थिएटर थे मुंबई आए हुए थे। उन्हें जब इस बात की खबर मिली तो फाजली साहब के सामने उन्होंने मदद की पेशकश करते हुए मशवरा दिया कि भोपाल शहर में शायरों की कमी नहीं है, अगर आप चाहो तो मैं एक मुशायरा भोपाल में करता हूँ, नामी गिरामी शोहरा इसमें भाग लेंगे। आप और आपके निर्देशक साहब जिस किसी शायर से मुतासिर हों उससे बाकी गाने लिखवा लें। तजवीज फाजली ब्रदर्स को पसंद आई, भोपाल में मुशायरा हुआ। फिल्म के प्रोड्यूसर फाजली ब्रदर और SF हसनैन साहब मुशायरे में आए। जो शायर उन्हें सबसे अच्छे लगे वो थे असद भोपाली। फिल्म दुनिया के बाकी गाने फिर उन्हीं से लिखवाए गए। इस तरह से उनकी फिल्मी गीतकारी के रूप में पेश कदमी हुई। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं हम सब उस्ताद हैं इस फिल्म का किशोर कुमार का गाया हुआ ये।

फिल्म दुनिया में असद भोपाली के दो गाने थे, रफी साहब का गाया हुआ रोना है तो चुप चुप के रो, आंसू न बहा आवाज न हो। सुरैया का गाया हुआ गाना था अरमान लुटे दिल टूट गया, दुख दर्द का साथी छूट गया। अगले साल यानी 1950 में फिल्म आधी रात के दो गाने लिखने का उन्हें ऑफर मिला, इधर तो आओ सरकार, किसी की जीत किसी की हार, और दिल ही तो है तड़प गया, दर्द से भर न आए क्यों। ये दोनों गाने लता मंगेशकर ने गाए थे, संगीतकार थे पंडित हुसन लाल और पंडित भगत राम। अब आपको सुना रहे हैं आगे बढ़ने से पहले ठाकुर जरनैल सिंह फिल्म का ये बड़ा ही मीठा सा गाना जिसे गाया है आशा भोसले ने।

सन 1950 में ही एक और फिल्म के लिए उन्होंने गाने लिखे। वो फिल्म थी निर्दोष। अगर आपको याद हो तो मुकेश साहब ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत इसी फिल्म से की थी। संगीतकार थे श्याम।

सन 50-51 के आसपास बीआर चोपड़ा साहब ने एक फिल्म अफसाना का निर्माण किया था। अशोक कुमार और वीणा मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म के संगीतकार थे पंडित होसन लाल और पंडित भगत राम। कुल 9 गाने थे फिल्म में, इनमें से 6 गाने लिखे थे असद भोपाली साहब ने और काफी मकबूल भी हुए थे।

फिल्म अफसाना एक सफल फिल्म थी और इसका संगीत भी खूब लोकप्रिय हुआ था। असद भोपाली को इसके बदले मिली एक फिल्म राजपूत, जो बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। उन दिनों साल में इक्का दुक्का फिल्में बनती थीं। काम पाने के लिए स्ट्रगल और कंपटीशन बहुत कड़ा हुआ करता था। इसी की एक मिसाल 1954 में असद भोपाली को फिल्म गुलबहार में एक गाना लिखने का मौका मिला, जिसका संगीत खयाम साहब ने दिया था। इस फिल्म के दो संगीतकार थे, एक खयाम साहब और दूसरे धनी राम। दूसरे गीतकारों में थे जानेसार अख्तर, कैफी आजमी और शिवन रिजवी साहब। असद भोपाली का लिखा हुआ गाना था मुबारक बेगम का गया हुआ, कलियों को चूमूं मैं तारों से खेलूं। दोस्तों, आसपास फिल्मों में गाने लिखे करीब करीब 400 के आसपास गाने हैं। असद भोपाली साहब का लिखा हुआ टावर हाउस फिल्म का ये बड़ा ही मीठा सा गाना है, लता मंगेशकर और मुकेश ने इसे गाया है।

पंडित हुसैन लाल, पंडित भगत राम, श्री रामचंद्र, खय्याम, हंसराज बहल, लच्छी राम, धनी राम, दत्ता राम, पंडित शिवराम, श्याम सुंदर, एम दत्ता, नौशाद, ए आर परेशी, चित्रगुप्त, रवि, सी अर्जुन, सोनी कोमी, राजकमल, लाला सत्तार, हेमंत कुमार, मानस मुखर्जी, कल्याण जी आनंद जी, इतने सारे संगीतकारों के साथ उन्होंने काम किया। सबसे ज्यादा काम उन्होंने गणेश और उषा खन्ना के साथ किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी आनंद बख्शी साहब के साथ साथ असद भोपाली से गाने लिखवाए थे। फिल्म पारसमणि के जो दो गाने हैं, वो जब याद आए बहुत याद आए और हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये काफी मकबूल हुए थे।

अपने जमाने के मशहूर निर्माता निर्देशक के आसिफ साहब का एक अनोखा शाहकार था फिल्म लव एंड गॉड। इस फिल्म के लिए भी असद भोपाली साहब ने अपनी कलम का सही इस्तेमाल किया। नौशाद साहब का संगीत सब कुछ अमर सा लगता है।

सन 1989 में सूरज बड़जात्या ने बड़ी ही खूबसूरत प्रेम कहानी बनाई मैंने प्यार किया। इस फिल्म का कबूतर जा ये गाना सुपर डुपर हिट रहा, पर अफसोस इस गाने को जो सर्वश्रेष्ठ गाने का पुरस्कार मिला उसे लेने अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहे असद भोपाली साहब भोपाल से मुंबई ना आ सके।

9 जून सन 1990 को इस शायर गीतकार असद भोपाली ने बगैर किसी अहलो अयाल के अपने शहर भोपाल से दुनियाए फानी को अलविदा कहा।

0: आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था गीतकार असद भोपाली पर, शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 10 बजे है। कार्यक्रम की आरंभ में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में इस गीत को।

आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि की 10:30 और 28 सेकेंड हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम बस अब से कुछ ही क्षणों में है।

0: मुझे कुछ कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है,
0: मुझे कुछ कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है।
2: पहले तुम, आप सुन रहे बॉबी फिल्म का कुछ गाना।
0: पहले
3: तुम।
4: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
0: अच्छा मैं कहती हूँ।

आप सुन रहे थे एक ही फिल्म बॉबी की कुछ गीत, ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआन पुई साईवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी

0: और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं, तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुँचा सकेंगे।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने आज विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के 90% से अधिक व्यापार का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। कोयला मंत्रालय ने आज वाणिज्य कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण और 13वें और 14वें चरण के दूसरे प्रयास की बोलियां बोली। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए कुल 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस नीलामी में 16 कंपनियों ने भाग लिया, जो देश के वाणिज्य कोयला खनन में उद्योग जगत की मजबूती भागीदारी दर्शाती। विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव्ड अ वार्म एंड एंथुजियास्टिक वेलकम अपॉन हिज अराइवल इन ऑकलैंड, मार्किंग द स्टार्ट ऑफ हिज हिस्टोरिक 2-day विजिट टू न्यूजीलैंड। दिस इज द फर्स्ट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन नियरली 4 decades। आफ्टर अराइविंग इन ऑकलैंड टुडे, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. The atmosphere was filled with excitement as people waved the Indian tricolour and chanted Kia ora Modi to welcome him. Mr. Modi witnessed a vibrant celebration of India's rich cultural heritage during the community welcome in Auckland this evening. During his visit, Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart are expected to discuss ways to further strengthen cooperation in trade, investment, education, technology and people-to-people ties, reflecting the growing partnership between the two countries. Indian High Commissioner to New Zealand, Muan Poi Sayuri, expressed hope that the visit will provide fresh momentum to bilateral ties. She also pointed to the India-New Zealand Free Trade Agreement signed in April this year, saying it would further expand cooperation in trade and commerce, maritime security, people-to-people ties, culture, tourism and counter-terrorism.
3: We will be building on the things that we've already worked on. So free trade agreement is signed, but it has to be ratified, and we have to push it towards the unlocking the full potential of the free trade agreement. So there are some things about trade and commerce. There will be some things about tourism, culture, sports diplomacy, and also under the economy piece, there will be more on horticulture, agriculture, and education as well. So there are many, many aspects of it, including maritime security as well.
2: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today met his Oman counterpart Badr bin Hamad al-Busaidi in Muscat and held discussions on various facets of the cooperation between the two countries. In a social media post, Dr. Jaishankar said the talks focused on trade, investments, connectivity, maritime, technology, defense, and cyber and AI domains. The two leaders also held a comprehensive exchange of views on developments in the Gulf and efforts to ensure peace and stability in the region. Dr. Jaishankar highlighted that the discussions reflected the trust and strength of strategic partnership between India and Oman. Meanwhile, the Omani foreign minister said that the long-standing maritime ties between India and Oman have connected their people for centuries and continue to provide a strong foundation for the partnership between the two countries. Minister of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L. Murugan today reviewed preparations for the upcoming monsoon session in the Parliament House complex. The session of the Parliament the 20th. In a social media post, Mr. Meghwal said, a comprehensive review of the legislative business scheduled for the upcoming session was conducted and necessary guidelines were issued. Indian Railways has approved 206 crore rupees for coverage deployment on 680 route kilometers of Northern Railway to enhance safety and operational efficiency. The project aimed at expanding the indigenous safety system across high density and strategically important routes. The Railway Ministry said the provision of coverage version 4.0 will be implemented on the Rewari Delhi and Shakur Basti Bathinda sections of Delhi Division. The system has been designed to significantly enhance railway safety by preventing signal pass, danger incidents and train collisions. The ministry said the system continuously monitors train movements, automatically applies brakes whenever necessary, permits trains to operate safely at maximum permissible speeds. It also supports reliable train operations even during adverse weather conditions such as dense fog. In football, Spain will face Belgium in the second quarter-final of FIFA World Cup at Los Angeles Stadium in Inglewood tonight. France has already stormed into the semi-finals after defeating Morocco 2-0 in the first quarter-final in Boston. In Wimbledon tennis, Germany's Alexander Zverev stormed into men's singles final beating British wildcard Arthur Ferry in the semi-final this evening. The second-seeded Zverev produced a clinical performance to defeat Ferry in straight sets 7-6, 6-2, 6-4. And that is the end of this news bulletin.
4: यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात की 11:10 हुए हैं. यह संपन्न होती है हमारी आज की सभा. श्रोताओं, कल प्रातः 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे अपने दैनिक कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में. तब तक के लिए अनुमति दीजिए. शुभ रात्रि. जय हिंद.